सुप्रभात, आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। आज दिन सोमवार है। शक संवत 1948 के वैशाख माह की तिथि 28, तदनुसार 18 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 हो चुके हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः की 6 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी उसके बाद अंग्रेजी में। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी जिक्र किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्ले ऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई 6ठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Nina Arkel. Prime Minister Narendra Modi held talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg last night. Prime Minister Modi was awarded Sweden's highest honour, the Royal Order of the Polar Star, Degree Commander Grand Cross, in recognition of his exceptional contributions to bilateral ties and his visionary leadership. The award is the highest distinction that can be given to a head of government. This is Prime Minister Modi's 31st international honour. During the delegation-level talks, the two leaders reviewed the full spectrum of India-Sweden relations and agreed to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership, marking a major milestone in the relationship. The two leaders also agreed to identify new opportunities to the spirit of the India-EU strategic partnership and recently concluded the India-EU FTA for the benefit of the people. Earlier, the Prime Minister's aircraft was escorted by Swedish Air Force jets as it entered the European country's airspace. He was given a warm welcome at the airport by his Swedish counterpart in a special gesture. In the fourth leg of his visit, the Prime Minister will reach Norway today for the third India-Nordic summit and bilateral engagements. This will mark the first Prime Ministerial visit from India to Norway in 43 years. Mr. Modi will call on King Harald V and Queen Sonja and hold bilateral talks with Prime Minister Jonas Gahr Støre. Mr. Modi will also address the India-Norway Business and Research Summit along with the Norwegian Prime Minister. The visit will provide an opportunity to review the progress made in India-Norway relations and explore avenues to further strengthen them. In the fourth leg of his visit, the Prime Minister will reach Norway today for the third India-Nordic summit and bilateral engagements. This will mark the first Prime Ministerial visit from India to Norway in 43 years. Mr. Modi will call on King Harald V and Queen Sonja and hold bilateral talks with Prime Minister

खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं प्रवीण सेठी। तो चलिए आज हम बात करते हैं रबी की फसलों की कटाई के उपरांत भंडारण एवं प्रबंधन के संबंध में। जी हां श्रोता मित्रों, खेती किसानी में फसलों की कटाई एवं गहाई एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आजकल श्रमिकों की उपलब्धता एवं बहुत अधिक श्रमिकी किसानों के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है। परंपरागत रूप से कटाई व गहाई का एक महीने तक चलने वाला यह कार्य मशीनों के उपयोग से कुछ दिनों में ही संपन्न हो जाता है। समय पर कटाई एवं गहाई न होने से फसल की क्षति की आशंका रहती है। इससे अगली फसल की बुआई में देरी होती है, जिससे उसकी उपज में कमी आती है। आज के समय में कटाई एवं गहाई के लिए बहुत सी मशीनों का विकास हो चुका है। किसान भाई बहन फसलों की कटाई के लिए उन्नत हंसिया, स्वचालित वर्टिकल कन्वेयर रीपर का प्रयोग कर सकते हैं, पावर टीलर चालित रीपर का भी प्रयोग कर सकते हैं। दांतेदार हंसिया से श्रम कम करना पड़ता है तथा व्यक्ति की उत्पादकता अधिक हो जाती है। कटाई के बाद किसान भाई बहनों गहाई यंत्रों का प्रयोग कर फसलों की गहाई कर सकते हैं। छोटे किसान 10 अश्व शक्ति वाली गहाई मशीनों का उपयोग कर सकते हैं। बैठकर चलाने वाला स्वचालित तथा ट्रैक्टर से चलने वाला वर्टिकल कन्वेयर रीपर मध्यम और बड़े किसानों के लिए उपयोगी है। गहाई के लिए 25 से 35 अश्व शक्ति से चलने वाले एक्सियल फ्लो अथवा बहुफसली गहाई मशीनों का उपयोग बड़े किसान कर सकते हैं। बड़े किसानों के लिए सबसे उपयुक्त यंत्र कंबाइन हार्वेस्टर है, जिससे वे कटाई एवं गहाई एक साथ कर सकते हैं। इसमें समय की बहुत ज्यादा बचत होती है। इससे अगली फसल की बुआई के लिए खेत की तैयारी करने का पर्याप्त समय मिलता है। श्रोता मित्रों, अगर हम बात करें अवशेष प्रबंधन का, तो कभी भी खेत में बचे हुए फसल अवशेषों को जलाना नहीं चाहिए। खेतों में आग लगाने से किसान मित्र जैसे कि गिरगिट, केंचुए तथा कई प्रकार के लाभकारी जीवाणु इत्यादि मर जाते हैं। अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट भी खत्म हो जाते हैं, जो कि मृदा में होने वाली माइक्रोबियल प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। इससे उपज में भी कमी आती है। लगातार खेतों में आग लगने से खेत बंजर होने की आशंका बनी रहती है। श्रोता मित्रों, पहले किसान भाई बहन अनाज का भंडारण बखरी, कोठार और मढ़ई में करते थे। आजकल भंडारण की आधुनिक तकनीकों का विकास हो गया है। घर के अंदर किए जाने वाले भंडारण में कनाजा, कोठी, संदूक और मिट्टी से बने कुंड आदि के आकार से बने ढांचों का प्रयोग किया जाता है। घर के बाहर भंडारण करने के लिए बांस तथा मिट्टी से बने ढांचों का प्रयोग किया जाता है। कचेरी अनाज भंडारण की एक पुरानी विधि है। हजेऊ जमीन के नीचे अनाज भंडारण की विधि को कहते हैं। बहुत लंबे समय तक के लिए भंडारण करने के लिए विधियां उपयुक्त नहीं है। पारंपरिक विधियों में आने वाली समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आधुनिक अनाज भंडारण विधियों का उपयोग करना उचित होगा। छोटे स्तर के भंडारण के लिए आप विकसित डब्बे के आकार की संरचना, पूसा में विकसित हापुड़ टेक्का प्रकार की संरचना का प्रयोग करते हैं। बड़े स्तर पर अनाज भंडारण के लिए ढक्कन और साइलोस प्रकार के ढांचे का उपयोग भी किया जाता है। साइलोस धातु या सीमेंट के बने होते हैं। भंडारित अनाज का कीटों, चूहों और नमी से बचाव करना चाहिए। सामान्यतः खपरा बेटल, रेड फ्लोर बेटल, लेसर ग्रेन बोरर मुख्य कीट है जो अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं। गहाई मशीन से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित परनाला तथा हडम्बा थ्रेसर खरीदने वाले किसान फसल वापिस खींचने वाला यंत्र जरूर लगाएं।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम की 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। प्रातः की 6:15 हुए हैं, लीजिए सुनिए चिंतन। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अनुसार विद्या सबसे अनमोल धन है। इसके आने मात्र से ही सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरे समाज का कल्याण होता है। संसार में सफल और सुखी वही लोग हैं जिनके अंदर विनय हो, और विनय विद्या से ही आती है। जो व्यक्ति दूसरों की कामनाएं वास्तव में वो मनुष्य नहीं है। समस्त जीवों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बताया गया है क्योंकि उसके पास आत्मविवेक और आत्मज्ञान है। कोई मनुष्य अगर बड़ा बनना चाहता है तो वो छोटी से छोटा काम करें क्योंकि स्वावलंबी ही श्रेष्ठ होते हैं। ये था आज का चिंतन।

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। पहले सुनिए संवेद स्वर में देश वंदना।

संवित स्वर में अभी आप सुन रहे थे देशगान। आइए अब सुनते हैं भजन। कलाकार हैं अनुराधा पौड़वाल, नरेंद्र चंचल, हरिहरन, सोनू निगम, लखविंदर सिंह, लखवीर सिंह लखा, विनोद राठौर, देवाशीष और बावला मेहता।

भक्ति रचनाएं अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थे अनुराधा पौड़वाल, नरेंद्र चंचल, हरिहरन, सोनू निगम, लखवीर सिंह लखा, विनोद राठौर, देवाशीष और बाबला मेहता। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न हुआ।

माया नगरी के राजा शीलनिधि की कन्या अनिंद्य सुंदरी विश्वमोहिनी के रूप पर आसक्त होकर देवर्षि नारद के मन में उसे प्राप्त करने का घोर मोह उत्पन्न हो गया था। अपनी कार्य सिद्धि के लिए उन्होंने श्रीहरि का अनुपम रूप मांगा और जो रूप प्राप्त हुआ उसे लेकर बड़े अभिमान और विश्वास के साथ स्वयंवर में जा विराजे। वहां शिवजी के दो मनमोची गण भी थे जिन्हें सब भेद मालूम था। ब्राह्मण का रूप धारण करके वे दोनों भी नारद जी की पंक्ति में बैठ गए। मुनिवर को अपने कल्पित रूप पर जितना गर्व हो रहा था शिवजी के गण उतना ही प्रसन्न होकर हंस रहे थे। देवर्षि नारद का बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर राजकुमारी विश्वमोहिनी के अतिरिक्त और किसी ने नहीं देखा। भय के साथ उसे क्रोध भी हो आया। हाथों में जयमाल लिए उधर से दृष्टि फेर कर वो सभा में घूमने लगी। नारद जी की ओर फिर उसने भूलकर भी नहीं देखा। ये सारी माया रचाने वाले भगवान भी राजा के वेश में वहां उपस्थित थे। विश्वमोहिनी ने जाकर जयमाल उनके गले में डाल दी। नारद जी की घोर निराशा और पराजय देखकर शिव जी के गणों ने कहा, जाकर दर्पण में अपना रूप तो देखिए। मुनि ने जल में झांककर जो अपना बंदर सा रूप देखा तो उनके क्रोध की सीमा न रही और उपहास करने वाले शिवजी के गणों को उन्होंने शाप दिया, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने मेरी हंसी उड़ाई, उसका फल भोगो। फिर किसी मुनि की हंसी न उड़ाना।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है, एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रातः के 7 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, आप सुनेंगे समाचार। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी उल्लेख किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें और मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं।

0: भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सरगेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए उन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे जलपोत गुजरने की अनुमति दी गई थी, जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 7:05 हुए हैं।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

श्रोताओं, आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से अब लीजिए सुनिए हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। हमारे आज की सभा में प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम जरा सुनिए। लोकगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे भोजपुरी लोकगीत, कलाकार होंगे शंभुराम और साथी। समय होगा 7:20।

बंगला गीतों के कार्यक्रम सुरांजलि का प्रसारण समय होगा प्रातः के 7:35। आज इस कार्यक्रम में हमारी श्रोता सुनेंगे आधुनिक गान, कलाकार होंगी आशा भोसले। दैनिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा का प्रसारण समय है प्रातः के 7:50। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे हृदय रोग जागरूकता ही बचाव, इसी विषय पर भेंट वार्ता कार होंगे डॉक्टर पार्थ प्रोतिम चौधरी और भेंट करता होंगे राजेश कुमार। समय होगा प्रातः के 7:20। स्वास्थ्य चर्चा का प्रसारण समय है प्रातः के 7:50। प्रातः 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। अपने रांची केंद्र से रिले कर प्रादेशिक समाचार हम आपको सुनवाएंगे प्रातः के 8:30 पर। सुबह 8:45 का समय होगा फिल्म संगीत कार्यक्रम का। 9:00 हिंदी में समाचार प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 9:05 पर हमारे श्रोता सुनेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरंजना। आज हम आपको सुनवाएंगे संगीतकार जोड़ी सचिन जिगर के संगीतबद्ध किए।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हमारे श्रोता सुनेंगे पंडित वीजी जोग का वायलिन वादन सुबह के 9:30 पर और दिन के 12:30 पर। सुबह 10:00 हिंदी में समाचार, 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 10:10 पर आप सुनेंगे समाचार विश्व दर्पण। प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सुबह के 10:20 पर हमारे श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आप सुन रहे थे हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

0: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। प्रातः के 7:10 हुआ जाते हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम जरा सुनिए।
1: जरा सुनिए,
2: जरा सुनिए,
1: जरा सुनिए।
2: समस्या है तो समाधान भी, जहाँ चाह वहाँ राह, बात बन जाएगी।
1: जरा सुनिए,
3: सुप्रभात, नमस्कार। कार्यक्रम जरा सुनिए में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, कार्यक्रम के आज के अंक में हम आपके समक्ष आए हैं एक ज्वलंत लेकिन जागरूकता भरे विषय के साथ। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी आजकल खबरों में सुनते होंगे या फिर अखबारों में पढ़ते होंगे कि किसी युवा या युवती ने या फिर किसी उम्र दराज ने या किसी अधेड़ उम्र की महिला या पुरुष ने आत्महत्या कर ली या फिर करने की कोशिश की। और श्रोताओं, यह खबर बहुत ही दुखद लगती है कि आखिर उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, ऐसी क्या मजबूरियां रही होंगी या फिर उनके पास क्या कोई दूसरा विकल्प नहीं था। तो श्रोताओं, हम आपको बता दें कि विकल्प सभी के पास होता है, बस जरूरी बात यह है कि उसको अमल में कैसे लाया जाए। इसीलिए श्रोताओं, इस विषय के प्रति जागरूकता जरूरी है क्योंकि यह हमारे जीवन से जुड़ा है। श्रोताओं, हमारा आज का कार्यक्रम इसी विषय पर केंद्रित है और आज के कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए हमने आमंत्रित किया है एक खास मेहमान को। तो आइए सबसे पहले उनका परिचय उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार महोदय, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय देने की कृपा करें।
4: मैं डॉक्टर जे आर जैन डायरेक्टर हूँ जीवन संस्था। जीवन एक सुसाइड प्रिवेंशन एंड आत्महत्या निवारण केंद्र है जो 2006 से अपने शहर में कार्यरत है
5: जी।
4: और मैंने ये संस्था 2007 में ज्वाइन की थी एंड देन फिर उसके बाद में डायरेक्टर 2010 में बना, अभी तक डायरेक्टर हूँ उसका।
5: बहुत ही अच्छी बात है महोदय। जैसे कि आजकल आप भी सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे कि हाल के कुछ दिनों में हमारे शहर में आत्महत्याएं की घटनाएं कुछ बढ़ सी गई हैं, तो क्या कारण मानते हैं आप इसके पीछे?
4: इसी दो सेक्शन में हम डिवाइड करते हैं, एक स्टूडेंट्स की सुसाइड और एक जनरल पब्लिक की सुसाइड। स्टूडेंट्स के जो सुसाइड होते हैं वो नॉर्मली उनके एजुकेशन से रिलेटेड रहते हैं, यानी उन पर या तो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती है, तब वो सोचते हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसे केसेज हैं जो रिलेशनशिप के हैं, वो भी हमारे पास में आते हैं। और जो जनरल पब्लिक है उसके अंदर में हालांकि ये रिलेशन वाले भी काफ़ी केसेज आते हैं रिलेशनशिप के, और उसके अलावा भी हमारे पास में ये इकोनॉमिक कंडीशंस की, उनकी आर्थिक व्यवस्था ठीक से नहीं हो पा रही है, उससे उनको डिप्रेशन स्ट्रेस होता है, फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जब देखते हैं कि मेरी कोई बात नहीं समझ पा रहा है, तब वो समझते हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ा पेन है और एक ही सॉल्यूशन है सुसाइड करना। हालांकि ये सब जानते हैं कि सुसाइड एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आदमी को थोड़ा समझना होगा, उसकी

0: अवेयरनेस बढ़नी होगी। एक्चुअली जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है सुसाइड रेट कम होते हैं, ऐसा हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है।
1: जी हाँ, जैसे कि महोदय आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कैटेगराइज किया कि कुछ उम्र के युवा भी होते हैं, कुछ और अधेड़ उम्र के भी लोग होते हैं। तो जैसे कि अक्सर हम लोग ये सुनते हैं कि पढ़ाई की वजह से या कैरियर के प्रेशर की वजह से कुछ युवा आत्महत्या जैसी घटना को अंजाम दे देते हैं, तो फिर वहीं कुछ 30 से 40 साल के बीच के लोग हैं जो किसी घरेलू झगड़े की वजह से या तो अवसाद की स्थिति में हैं या फिर किसी बात से वो निराश हो गए हैं। तो ऐसा क्या हो जाता है कि लोग इन छोटी छोटी चीजों से निराश हो जाते हैं और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे जाते हैं?
0: ऐसा है कि एक्चुअली हमारी यदि अवेयरनेस बढ़ती है तब क्या होता है कि आदमी समझता है कि मेरे पास स्ट्रेस आया, इसको कैसे रिलीव करना है। यदि वो नहीं जानता है, स्ट्रेस को कैरी फॉरवर्ड करते रहता है तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो अकेला रहना शुरू करता है या सोचता है कि मेरे को कोई समझता नहीं है। लेकिन यदि उसके अंदर में अवेयरनेस रहती कि ऐसी कंडीशन में मेरे को क्या करना चाहिए, मैं कैसे सबसे कॉन्टेक्ट में रहूँ, कनेक्टेड रहूँ। हम लोग कनेक्टेड बोलते हैं कि सबसे कनेक्टेड रहने से उसकी जो मन की भावना है वो बाहर निकल सकती है। तब वो ये भी सोचता है कि मैं किसके साथ में शेयर कर सकता हूँ। अपनी भावना जैसे ही वो शेयर करता है तो उसका अंदर का प्रेशर कम होता जाता है, और जैसे कम होता है तो उसकी सोच वापस सही ढंग से सही रास्ते पे आ जाती है। अदरवाइज अंदर अंदर में घुटते घुटते सोचने लगता है कि नहीं, मेरे को कोई आदमी समझता नहीं है और मेरे पास और कोई दूसरा उपाय नहीं है। सबसे बड़ा उपाय यही है कि हम लोग अवेयरनेस बढ़ाएं, एजुकेशन दें मेंटल हेल्थ की, स्ट्रेस की। तो इस पर हम लोग काफी आउटरीच प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जैसे स्कूलों में बराबर ऐसे प्रोग्राम वर्कशॉप्स हम करते रहते हैं, स्टूडेंट्स में अवेयरनेस बढ़े। उसके लिए स्टूडेंट्स इन्वॉल्व करते हैं, उनमें कंपटीशन देते हैं कि एक थीम दे दिया सुसाइड प्रिवेंशन का, आप ड्राइंग बनाइए, आप डिबेट करिए, और काफी स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है, हर साल करते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि स्टूडेंट्स के अंदर में सुसाइड के प्रति काफी जागरूकता बढ़ रही है। और आजकल तो लास्ट ईयर हमने सितंबर में जब ये अरेंजमेंट किया था तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले कि काफी स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया और बड़े अच्छे समझ में आया कि अवेयरनेस काफी अच्छी है। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है सुसाइड रेट, डिप्रेशन का रेट कम होता जाता है।
1: जैसे कि महोदय आपने बात है कि डिप्रेशन या फिर अवसाद की, आजकल देखने में ये आता है कि स्कूल जाने वाले बच्चे भी काफी तनाव में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तनाव और अवसाद या फिर यूं कह रही है डिप्रेशन आत्महत्या के पीछे जिम्मेदार तत्व हैं। तो आप अगर काउंसलिंग करते हैं तो काउंसलिंग किस प्रकार की होती है ताकि लोग तनाव से भी मुक्त हो सकें और डिप्रेशन से भी निकल जाते हैं, ताकि आत्महत्या जैसी घटनाएं ना कर सकें?
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि हम लोग एक्चुअली उनको कैसे डिप्रेशन से बाहर लाते हैं।
1: जी,
0: तो हमारा जो वॉलंटियर्स हमारे हैं वो बिल्कुल वेल ट्रेन्ड हैं, कई तरह के डिप्रेशन के जो कारण है उनको कैसे हैंडल करना है तो बड़ी रिगोरस उनको ट्रेनिंग दी जाती है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंडर्स वर्ल्ड वाइड, यूके के अंदर में है और मोर देन 40 कंट्रीज के अंदर में सेंटर्स हैं। हमारी इंडिया के अंदर में उसको रिप्रेजेंट करने वाला बीफ्रेंडर्स इंडिया करके नाम से है और हम उसी के ही अम्ब्रेला में आते हैं। हमारे यहाँ इंडिया के अंदर में टोटल 16 सेंटर्स हैं और सब के सेंटर्स के जितने भी वॉलंटियर्स हैं सब एक स्टैंडर्ड ट्रेनिंग में उनको की दी जाती है और वो ट्रेनिंग करीब 24 घंटे की रिगोरस फर्स्ट ट्रेनिंग होती है। उसके बाद में एक साल तक उनसे प्रैक्टिस करवाते हैं, रोल प्लेज करवाते हैं, बराबर उनसे डिस्कशन करते रहते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट कराते हैं कि ऐसी सिचुएशन आए तो कैसे हैंडल करना है, ऐसा है तो एक साल में करीब करीब वो काफी अच्छी लेवल पर आ जाते हैं। तब उनको हम लोग टेलीफोन पे बैठाते हैं कि अब आप रिफ्रेंडिंग कर सकते हैं। रिफ्रेंडिंग बोलते हैं हम इसको, काउंसलिंग नहीं बोलते हैं, काउंसलिंग से थोड़ा डिफरेंट है
1: जी।
0: इसके अंदर में हम क्या करते हैं कि उस व्यक्ति को जो भी हमारे से कॉन्टेक्ट करता है उससे हम एक कॉन्फिडेंशियलिटी स्थापित करते हैं कि भाई आपकी कोई भी बात है इस सेंटर से बाहर नहीं जाएगी, कोई भी आ जाए आई विल नॉट शेयर कि कौन आया, क्या उसने शेयर किया। जब वो इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है तब वो हमारे साथ में सब प्रॉब्लम शेयर करता है जो शायद घर में किसी के साथ में वो शेयर नहीं कर सकता है, और जब वो शेयर करता है तब हम उसको और

0: प्रमोट करते हैं कि और ज्यादा बोलता रहे और सहता रहे, इस दौरान हमको कुछ उसके पॉजिटिव पॉइंट मिलते हैं, उस पर हम वेल करके उसको उस पॉजिटिव स्ट्रोक देते हैं, तब वो समझता है कि ये हमारा एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो मेरी बात को समझता है, और फिर वो सोचना शुरू करता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। हम उसको इसको हम लोग एक्टिव लिसनिंग थेरेपी भी बोलते हैं। ये बहुत ही स्पेशल चीज है, इसमें हमारी जो रात दिन में लोग बाग कैसे हैंडल करते हैं या समझते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हमको वापस अनलर्न करना पड़ता है, मतलब उसको भूलना पड़ता है कि वी शुड नॉट डू दिस वन। हम किसी को एडवाइस भी नहीं करते हैं कि आप आत्महत्या मत करिए, आत्महत्या खराब है, ये सब जो नॉर्मल लोग करते हैं हम लोग वो नहीं करते हैं। कि हम समझते हैं कि बाहर में बहुत लोग हैं जो इनको एडवाइस करते रहते हैं, ही इज फेड अप ऑफ एडवाइस, तो हम एडवाइस नहीं करके उसी को एम्पावर करते हैं कि वही आगे बढ़े और उसकी हम प्रॉब्लम बारा का जाए एम्पैथी के साथ में, भी जैसे उसको दर्द होता है उस दवा से वैसे हमको भी दर्द हो रहा है, ये एम्पैथी के साथ में इसको एक्टिव लिसनिंग बोलते हैं। तो ये जब ट्रेंड आदमी हो जाता है तो धीरे धीरे वो आदमी डिप्रेशन में हमसे जो कॉन्टेक्ट करता है वो बाहर निकलना शुरू करता है। हमारे पास में टाइम लिमिट नहीं रहता है, वो 2 घंटे तक बात कर सकता है, आराम से सोच सकता है, रो सकता है, रोता है भी तो भी हम उसको नहीं बोलते कि रो मत, उसको अपने आप हम एम्पावर करते रहते हैं
1: जी।
0: ये बहुत ही वेल टेस्टेड और बहुत अच्छी सक्सेस रेट वाली थेरेपी है।
1: हाँ जी, सही बात है महोदय की एक्टिव लिसनिंग थेरेपी जिसकी बात की आपने, कि हम अगर हम किसी की बातों को सुन पाए और तब उसके दुख को शेयर भी कर सकते हैं जी महोदय, कि ऐसे कुछ तौर तरीके भी जरूर होंगे जिनको अपनाकर लोग खुद को खुश रख सकते हैं, तो अंत में चलते चलते आप शहर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वे कुछ तौर तरीके अपनाएं अपने जीवन में, ताकि खुद तो खुश रहें और अपने आसपास भी खुशी लोगों में बांट सकें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये भी अच्छा है। खुश रहने के लिए जनता को एक तो ये है कि हम ज्यादा लोगों से दूसरे लोगों से अपेक्षाएं नहीं रखें, यदि रखते हैं तो फिर जो भी टेंशन होता है तो उसको परमानेंटली मत रखिए साथ, उसको शेयर करिए लोगों के साथ में, बताइए कि क्या उसकी प्रॉब्लम है, हमारे से बात करके बताइए क्या प्रॉब्लम है। जब वो शेयर कर लेता है तो डिप्रेशन में कन्वर्ट नहीं होता है और डिप्रेशन क्योरेबल रहता है, ये उसको ध्यान में रखने का है। और सुसाइड का थॉट है दैट इज प्रिवेंटेबल, कभी भी सुसाइड का थॉट आता है तो जरूर हमसे पहले शेयर करेगा, बताएगा, हमसे कॉन्टेक्ट करेगा तो अपने आप बच जाएगा। हम उसको नहीं बोलेंगे कि सुसाइड मत करो, लेकिन हमारे से बात करने से उसको समझ में आएगा ये सॉल्यूशन राइट सॉल्यूशन नहीं है, जरा दूसरे विकल्प है उसके पास, तो वो एम्पावर होकर के दूसरे विकल्पों के साथ में आगे बढ़ेगी। कभी भी हो हमसे जरूर कांटेक्ट करें, यदि एंजाइटी है, आप सॉल्यूशन नहीं पा रहे हैं, किसी के साथ में शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो जीवन हमेशा आपके साथ में है।
1: महोदय काइंडली अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी श्रोताओं को जरूर बता दें।
0: हाँ हाँ जरूर, हमारा नंबर है 9297777500। मैं वापस रिपीट करता हूँ, 9294×7500।
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे, हमारे शहर में आत्महत्या जैसी घटनाएं ना हो इसके लिए क्या जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं, इसी विषय पर शहर में स्थित जीवन संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर जे आर जैन से हुई बातचीत को। उम्मीद करते हैं श्रोताओं आप सभी को आज का कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा और आप सभी अपने आसपास के लोगों को इस संदर्भ में जरूर जागरूक करेंगे। तो श्रोताओं आज के कार्यक्रम का सफर बस यहीं तक, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक मुझे यानी विवेक आदित्य को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: जरा सुनिए,
4: जरा सुनिए,
3: जरा सुनिए,
4: समस्या है तो समाधान भी, जहाँ चाह वहाँ राह, बात बन जाएगी
3: जरा सुनिए।
5: आप सुन रहे थे कार्यक्रम जरा सुनिए। आपने ट्यून किया है 2.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। समय हो गया है लोकगीत के कार्यक्रम का, लीजिए सुनिए भोजपुरी लोकगीत, कलाकार हैं शंभुराम और साथी।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से श्रोता SMS सुन रहे हैं। भोजपुरी लोकगीत कलाकार हैं शंभुराम और साथी।
2: आनंद भइले माई आनंद।

शंभुराम और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत। लोकगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। प्रातः के 7:35 हुए हैं, समय हो गया है बंगला गीतों के कार्यक्रम सुरांजलि का। आज इस कार्यक्रम में श्रोताओं लीजिए सुनिए, आधुनिक गान कलाकार हैं आशा भोसले।

आप सुन रहे थे आधुनिक गान, कलाकार थी आशा भोसले। बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि अब संपन्न हुआ।

प्रातः के 7:50 हुआ चाहते हैं। लीजिए सुनिए दैनिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के तहत भेंट वार्ता, हृदय रोग जागरूकता ही बचाओ। इसी विषय पर भेंट वार्ताकार है डॉक्टर पार्थ प्रतिम चौधरी और भेंट करता है राजेश कुमार।

0: श्रोताओं, आज के दिनों में हृदय रोग एक आम समस्या बनती जा रही है। इसका मुख्य कारण है जागरूकता का अभाव। स्वास्थ्य चर्चा के आज के अंक में हमारा विषय है हृदय रोग, जागरूकता ही बचाओ। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पार्थो प्रतिम चौधरी। डॉक्टर साहब, आम लोगों के बीच में ऐसी क्या जागरूकता लाई जाए ताकि वो इस रोग से ग्रसित हो ही नहीं?
1: देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वेस्टर्न कंट्रीज में आज से 10-20-30 साल पहले हृदय रोग एक महामारी की तरह थी जी। अब वो महामारी वहां नहीं रही, अब महामारी भारत में आ रही है। इसको अच्छा। जड़ से इसका इलाज खोजना होगा। अगर हम स्कूल लेवल में शुरू करें तो स्कूल लेवल में सबसे पहले बच्चों की डाइट से शुरू होता है।
0: अच्छा।
1: घर पे माँ बाप दलिया, रोटी, दाल, सब्जी, इसकी जगह पे हम पाश्चात्य फूड, जंक फूड, इन सब का सहारा ले रहे हैं। हमारे जीवन में व्यायाम, एक्सरसाइज जितना ज्यादा हो सके उसको करना। इसका सिंपल सा उदाहरण है, अगर आप अपनी ऑफिस में जाते हैं तो लिफ्ट की जगह अगर रोज आप 4 मंजिल दिन में 2 या 3 बार भी चढ़ते हैं तो आपका जितना कैलोरीज आप 2 समोसे खा के बढ़ा रहे हैं वो 4 बार सीढ़ी चढ़ के कम हो जाएगा। तो मैं आज रोड चलते हर 10 में से 6 आदमी को देखेगा उनकी तोन निकली हुई है। इसमें क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत है, अदरवाइज जो विश्व हमें एक उत्सुकता के साथ देख रहा है कि हमारे पास इतनी बड़ी नौजवान पीढ़ी है जो पूरे दुनिया का भविष्य, अगर ये हृदय रोग से ग्रसित हो गई तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, हमारे भारत का भविष्य बर्बाद हो जाएगा।
0: खाने पीने के अलावा और दैनिक जीवन में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
1: मुख्यतः जीवन शैली में परिवर्तन। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा हृदय रोग का जनक है। तनाव को दूर करने के लिए हम व्यायाम, नेचुरोपैथी, इसकी ओर रुख कर सकते हैं। जो भी एक्टिविटीज जिससे हमारा तनाव कम हो सकता हम वो कर सकते हैं। नमक की जो मात्रा है उसको कम कर सकते हैं। सब्जियों की मात्रा हमारे भोजन में जितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। कम से कम सुबह शाम 1 घंटे लीजर एक्टिविटीज के लिए हम लोग निकाले। प्रदूषण हमारे जीवन में जो इतना घुल गया है उसको हटाना बहुत जरूरी है। तो छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें अगर हम कंट्रोल करें तो हृदय रोग से हम बच सकते हैं।
0: हृदय रोग कितना खतरनाक हो सकता है?
1: देखिए, एक हार्ट अटैक का पेशेंट अगर आता है तो इमीडिएट मृत्यु दर 5% तक हो सकती है। मृत्यु कैसे होती है? अचानक से हार्ट बंद हो जाना, इतना सीवियर हार्ट अटैक हो जाए, हार्ट रप्चर हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर पेशेंट बच भी जाता है तो अगर हार्ट को एक बार डैमेज हो जाए तो लॉन्ग टर्म में अगर पेशेंट का हार्ट फेल हो जाए तो मृत्यु दर 50% तक जा सकती है। दूसरा, अगर हम पेशेंट की मृत्यु दर डिपेंड करता कितने ब्लॉक है, अगर 3 के 3 नस में ब्लॉक हो जाए तो भी मृत्यु दर बढ़ के 50% से ज्यादा हो सकती है।

0: इसके लिए एक स्वस्थ हृदय की हमें जरूरत हो, क्योंकि अगर हमारा हृदय स्वस्थ नहीं होगा तो हमारा जीवन बेमानी है, हम किसी लायक नहीं रहेंगे। तो मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा, इस हृदय को मूल्यवान समझकर इसका जितना हो सके केयर करें, क्योंकि अगर हृदय स्वस्थ रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, तो हमारे देश का भविष्य स्वस्थ रहेगा।
1: तो श्रोताओं, आपने सुना कि हृदय रोग का सीधा संबंध हमारे जीवन शैली से है। हम अपने जीवन शैली में अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन ले आए तो हम हृदय रोग से भी बच सकते हैं, और हृदय रोग से अगर बचेंगे तो निश्चित तौर पर दूसरे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी हम बचे रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हृदय रोग जागरूकता ही बचाओ, इसी विषय पर अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता। दैनिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के तहत भेंट वार्ता कर थे डॉक्टर पार्थ प्रतिम चौधरी और भेंट करता थे राजेश कुमार। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।
3: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
4: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
5: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
6: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
7: सुनो ना।
8: हाँ?
7: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
8: तो रोका किसने है? हाँ?
7: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
8: मुझसे?
7: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
8: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
7: पर उससे मेरा क्या फायदा?
8: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
7: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
8: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 870-001-4242।
7: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
9: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: श्रोताओं, हमारी इसी सभा में रात 8:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरंजना का प्रसारण समय है 9:05। कार्यक्रम सुरंजना में आज हम आपको सुनवाएंगे संगीतकार जोड़ी सचिन जिगर के संगीतबद्ध किए हुए गीतों को। समय होगा 9:05। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे पंडित वीजी जोग का वायलिन वादन 9:30 पर और दिन के 12:30 पर।

अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे प्रातः 8 बजे समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। अपने रांची केंद्र से रिले कर प्रादेशिक समाचार हम आपको सुनवाएंगे प्रातः के 8:30 पर। अभी आइए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण में शामिल होते हैं, कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
1: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक के लिए संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
2: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूँ। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय UDF मंत्रिमंडल की घोषणा की।
5: कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए UDF कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई जयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
6: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।

0: विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल V.A. वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट UG प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी, रिच्छा और विक्रमगढ़ आलूट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने HD देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और AI में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। हॉर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमरीका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जंचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। NDA सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृह मंत्री का ये बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृह मंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और NDA की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। जेटेड क्षेत्रीय भाषाओं में मगही, भोजपुरी और अंगिका को शामिल करने पर होगा विचार। मंत्रियों की कमेटी की पहली बैठक आज। रेलवे ने गोमती नगर से खुदरा रोड तक समर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की। गोमो, गया, वाराणसी, जौनपुर और गोरखपुर होकर गुजरेगी रेल। दुमका में अंतरराज्यीय ट्रैक्टर चोर गिरोह का खुलासा, 3 अपराधी गिरफ्तार। निशानदेही पर पश्चिम बंगाल से चोरी के वाहन बरामद, पुलिस कर रही नेटवर्क की जांच। राज्य के कई हिस्सों में आज गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान। कल से अगले 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और ताशकंद में रग्बी सेवन्स में भारतीय पुरुष टीम ने रजत पदक जीता, महिला टीम 4th स्थान पर रही। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने AI और डीप टेक को भविष्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ बताया है। कल अहमदाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
1: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के 319 इंटर और प्रशिक्षित सहायक आचार्य को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस कदम से राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था और भी मजबूत होगी। समारोह में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर और श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव भी उपस्थित रहेंगे। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को शामिल करने के लिए बनी सरकार की समिति की आज पहली बैठक होगी। इस समिति में 5 मंत्रियों को शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट भवन में दिन के 11:30 बजे से बैठक होगी। समिति में मंत्री दीपिका पांडे, राधा कृष्ण किशोर, संजय यादव, योगेंद्र प्रसाद और सुदिव्य कुमार सोनू शामिल है। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से रांची में आज जनजातीय किशोरियों के स्वास्थ्य पोषण एवं सशक्तिकरण के लिए सशक्त परियोजना का शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने राजधानी में पेट्रोल और डीजल की किल्लत की खबरों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि तेल कंपनियों के पास पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान ना देने और घरों में अनावश्यक रूप से तेल जमा नहीं करने की अपील की है।
2: हम लोगों समीक्षा में पाए गए कि जो पहले से जितना सप्लाई थी वो सप्लाई अभी भी उपलब्ध है, और लेकिन किसी कारणवश जो एक पैनिक की अवस्था में बहुत सारे लोग जो है जितना रिक्वायरमेंट है उससे अधिक गुना में जो भर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है सप्लाई में जो समस्या आ रही है, तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने उनको बताए हैं कि पैनिक में किसी तरह का लोग न आए।
0: विश्व पर्यावरण दिवस 2026 अभियान के 3rd दिन धनबाद मंडल ने कल विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर प्लास्टिक मुक्त यात्रा के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया। इसके तहत यात्रियों को दोबारा उपयोग योग्य बोतलों के इस्तेमाल, प्लास्टिक प्रदूषण रोकने और रेल परिसर में कचरा न फेंकने की अपील की गई। साथ ही पोस्टर, उद्घोषणा और सीधे संवाद के जरिए पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की सुविधा के लिए गोमती नगर से खुदरा रोड तक समर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है, जो गोमो, गया, वाराणसी, जौनपुर और गोरखपुर होकर गुजरेगी। गोमती नगर से यह ट्रेन 28 मई से 18 जून तक हर गुरुवार और खुदरा रोड से 30 मई से 20 जून तक हर शनिवार चलेगी, जिसमें धनबाद के यात्रियों के लिए गोमो और बोकारो के लिए भोजुड़ी में ठहराव रहेगा। हजारीबाग जिले के कोरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से ब्राउन शुगर, 3 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल और 1 कार बरामद की है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित आनंद ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों में 1 का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है।
3: जांच के क्रम में एवं जब इनको छानबीन किया गया, इनकी तलाशी ली गई, तो कुल मिलाकर हमें 3 स्मार्टफोन, 20 ग्राम ब्राउन शुगर, 1 अपाचे गाड़ी और 1 क्रेटा कार पकड़ाया गया। अनुमानित मूल्य इसका लगभग 10 से 15 लाख तक होता है होलसेल में जब इनको, लेकिन जब ये लोग इसको तोड़ तोड़ के बेचते हैं या जो खुदरा क्रम में बेचते हैं तो इनका रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है।
0: दुमका जिले में पुलिस ने सक्रिय अंतरराज्यीय ट्रैक्टर चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। तीनों की निशानदेही पर मुफस्सिल और शिकारी पाड़ा थाना क्षेत्र से चोरी हुए 2 ट्रैक्टरों को पश्चिम बंगाल से बरामद किया गया है। पुलिस गिरोह के अन्य संभावित नेटवर्क की जांच कर रही है। राज्य के कई हिस्सों में आज गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
4: आने वाले दिनों में भी आपको कुछ कुछ जगह पर थंडरस्टॉर्म के साथ में बारिश, तेज हवा, आंधी देखने को मिलेगी। 3 दिन के लिए जो विंड स्पीड है तो उसमें 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गस्टिंग 260। 18 में थोड़ा सा हवा की गति बढ़ सकती है, जिसमें कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से विंड स्पीड गस्टिंग 270 भी कुछ जगह पर जा सकती है गर्जन वज्रपात के साथ में।
0: कल जिले हजा का चांद नहीं दिखने के कारण देश भर में 28 मई को बकरीद मनाई जाएगी, यह घोषणा इमारत ए सरिया ने की। ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित पहले CASA रग्बी सेवन्स 2026 में भारत की सीनियर पुरुष टीम ने रजत पदक हासिल किया, जबकि सीनियर महिला टीम 4th स्थान पर रही। पुरुष टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार 4 मैच जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। पुरुष टीम में झारखंड के डेविड मुंडा भी शामिल है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने मुख्यमंत्री को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा लिखे पत्र की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा दैनिक जागरण ने लिखा है, स्वीडन और नीदरलैंड्स के साथ रिश्तों को रणनीति साझेदारी में बदलेगा भारत। प्रभात खबर की सुर्खी है, JTET भाषा विवाद सुलझाने के लिए आज बैठक करेंगे 5 मंत्री। दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश में राजधानी एक्सप्रेस के AC कोच में आग, 15 मिनट में 68 यात्रियों को बचाया। हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर लिखा है, जलापूर्ति व्यवस्था पर मुख्य सचिव सख्त, सभी जिलों को त्वरित कार्रवाई के लिए कहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, JTET क्षेत्रीय भाषाओं में मगही, भोजपुरी और अंगिका को शामिल करने पर होगा विचार, मंत्रियों की कमेटी की

पहली बैठक आज। रेलवे ने गोमती नगर से खुर्दा रोड तक समर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की। गोमो, गया, वाराणसी, जौनपुर और गोरखपुर होकर गुजरेगी रेल। दुमका में अंतरराज्यीय ट्रैक्टर चोर गिरोह का खुलासा, 3 अपराधी गिरफ्तार। निशानदेही पर पश्चिम बंगाल से चोरी के वाहन बरामद, पुलिस कर रही नेटवर्क की जाँच। राज्य के कई हिस्सों में आज गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान, कल से अगले 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और ताशकंद में रग्बी सेवंस में भारतीय पुरुष टीम ने रजत पदक जीता, महिला टीम 4th स्थान पर रही। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉव पर एक मेल भेजा, रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डालें, और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था, मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है। अपने आप आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम हमारे श्रोता सुनेंगे बस थोड़ी देर में।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे केदारनाथ फिल्म का गाना। गीत लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने, साज और आवाज़ अमित त्रिवेदी की थी।

प्रीतम के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा ये गाना, अरिजीत सिंह और जूनिता गांधी की आवाजों में, ब्रह्मास्त्र फिल्म से। और श्रोता, इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न।

हुआ। फिल्म संगीत का आनंद एक बार आप फिर से ले सकते हैं सुबह के 9:05 पर। आज हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सुरंजना में संगीतकार जोड़ी सचिन जिगर के संगीत में किए हुए गीतों को। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है, सुबह के 9 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात गोतेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत की। श्री मोदी दो दिन के स्वीडन दौरे पर कल गोतेनबर्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार किसी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत स्वीडन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की प्रशंसा की। गोतेनबर्ग पहुंचने के तुरंत बाद श्री मोदी ने प्रवासी भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोतेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ हुई बातचीत में स्वीडिश कंपनियों से भारत में विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। श्री मोदी ने स्वीडन की नवाचार और स्थिरता की क्षमताओं को भारत के विशाल प्रतिभा और विकास की गति के साथ जोड़ने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि स्वीडन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले उद्योगपतियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत में गहरी रुचि दिखाई है। यूरोपीय उद्योगपतियों के गोलमेज सम्मेलन के बाद विदेश मंत्रालय के पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ उद्योगपतियों ने हाल के वर्षों में भारत में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। श्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 वर्ष बाद नॉर्वे की ये पहली यात्रा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष का सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के बराकाह परमाणु संयंत्र पर हुए हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। भारत ने संयम बरतने और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से तनाव समाप्त करने का आह्वान किया है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। श्री सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। शपथ लेने वाले 21 मंत्रियों में सतीशन सहित 14 विधायक पहली बार मंत्री बन रहे हैं। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को मंत्रियों की सूची सौंपने के बाद श्री सतीशन ने कहा कि यूडीएफ मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक साथ शपथ लेंगे। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में महाराष्ट्र के एक अभिभावक पर प्रश्न पत्र को 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एक टीम ने कल इस व्यक्ति से पूछताछ कर आगे की जांच के लिए एजेंसी के पुणे कार्यालय में पेश होने के लिए बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 4 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था। भारत ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में 1 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीते हैं। जियांगशान में 6ठे संस्करण की तुलना में भारत की ये बड़ी उपलब्धि है। वर्ष 1982 में हुई नई दिल्ली में हुई एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप के बाद भारत ने दूसरी बार इसकी मेजबानी की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:05 हुए हैं। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरंजना हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे बस थोड़ी देर में।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी एट 90 की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: जलवायु और पानी के भीतर जीवन, यह यूनेस्को का संदेश है। महासागर पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करते हैं, लेकिन आज वो गर्मी, अम्लीकरण और प्रदूषण जैसे बड़े संकटों का सामना कर रहे हैं। कोरल रीफ, मैनग्रोव और समुद्री घास जैसे महत्वपूर्ण पर्यावरण तेजी से नष्ट हो रहे हैं, लेकिन महासागर, हवा और लहरों से स्वच्छ ऊर्जा, स्वस्थ मछली पकड़ने के जरिए और समुद्री जीवन के लिए संरक्षित क्षेत्र देकर जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद भी करते हैं। इसलिए जलवायु को स्थिर और पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने के लिए महासागर की रक्षा करना बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ ने कुछ ही दशकों में लगभग 50% कोरल खो दिए हैं।
1: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरंजना। सभी श्रोताओं को हम कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कार्यक्रम सुरंजना में आज बातें संगीतकार जोड़ी सचिन जिगर की।

भारत के सबसे लोकप्रिय संगीतकार जोड़ियों में से एक है सचिन जिगर, सचिन सांघवी और जिगर सरैया। दोनों ने बॉलीवुड, गुजराती फिल्मों, वेब सीरीज और इंडिपेंडेंट म्यूजिक में बहुत बड़ा योगदान दिया है। सचिन और जिगर दोनों ने अपनी करियर की शुरुआत म्यूजिक अरेंजमेंट और बैकग्राउंड स्कोर से की थी। शुरुआती दिनों में उन्होंने प्रीतम और एआर रहमान जैसे बड़े संगीतकारों के साथ काम किया। बाद में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। आइए सुनते हैं उन्हीं के संगीत निर्देशन में जरा हटके जरा बचके फिल्म का ये गाना।

सचिन और जिगर की जोड़ी को असली पहचान फिल्म फालतू और फिल्म एबीसीडी टूर से मिली। इसके बाद इन्होंने लगातार हिट गाने दिए।

सचिन जिगर का संगीत कई तरह के स्टाइल का मिश्रण होता है। रोमांटिक मेलोडी, डांस और पार्टी सॉन्ग, फोक म्यूजिक का आधुनिक इस्तेमाल और यूथफुल और एनर्जेटिक बिट्स। इन्होंने भारतीय लोक संगीत को आधुनिक पॉप और इलेक्ट्रॉनिक साउंड के साथ मिलाकर एक अलग पहचान बनाई है। इन्होंने कई हिट फिल्मों में संगीत दिया है, जिसमें से स्त्री, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, शिद्दत, जरा हट के जरा बच के और फिल्म भेड़िया शामिल हैं।

सचिन जिगर को कई फिल्म फेयर और आईफा अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन मिले हैं। आज की नई पीढ़ी के बीच इनका संगीत बहुत लोकप्रिय है क्योंकि इनके गानों में आधुनिकता और भारतीयपन दोनों देखने को मिलता है।

आज इस कार्यक्रम में जिन फिल्मों के गाने आपने सुने, फिल्में थी तेरे नाल लव हो गया, जरा हट के जरा बच के, एबीसीडी 2, भेड़िया और शोर इन द सिटी। इन गीतों के लिए आवाजें थी श्रेया घोषाल, आतिफ असलम, वरुण जैन, सचिन जिगर, शादा फरीदी, अल्तमश फरीदी, अरिजीत सिंह और तुची रैना की। गीतकार थे प्रिया पांचाल, अमिताभ भट्टाचार्य, मयूर पुरी और समीर अंजान। कार्यक्रम सुरंजना में आज हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे थे संगीतकार जोड़ी सचिन जिगर के संगीतबद्ध किए हुए गीतों को।

0: कार्यक्रम सुरंजना से हमें दीजिए इजाजत। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे बस थोड़ी देर में।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
1: हेलो डॉक्टर,
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 से FM 102.4 MHz पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
1: हेलो डॉक्टर,
0: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में श्रोताओं लीजिए सुनिए पंडित वीजी जोग का वायलिन वादन, राग है अहिर भैरव।

आप सुन रहे थे राग अहीर भैरव में पंडित वीजी जोग का वायलिन वादन। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे सुबह के 10 बजे हिंदी में समाचार, 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 10:10 पर समाचार विश्व दर्पण। उसके बाद आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से सुबह 10:20 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। अभी आइए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण में शामिल होते हैं। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत की। श्री मोदी दो दिन के स्वीडन दौरे पर कल गोथेनबर्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार किसी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत स्वीडन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की प्रशंसा की। गोथेनबर्ग पहुंचने के तुरंत बाद श्री मोदी ने प्रवासी भारतीय समुदाय से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। श्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 वर्ष बाद नॉर्वे की ये पहली यात्रा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि स्वीडन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले उद्योगपतियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत में गहरी रुचि दिखाई है। यूरोपीय उद्योगपतियों के गोलमेज सम्मेलन के बाद विदेश मंत्रालय के पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ उद्योगपतियों ने हाल के वर्षों में भारत में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का उल्लेख किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया के दो देशों के दौरे पर रहेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये दौरा दोनों देशों के साथ भारत मित्रता के दायरे को और बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरे का उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग को बढ़ाना और रक्षा औद्योगिक साझेदारी को मजबूत करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। श्री सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। शपथ लेने वाले 21 मंत्रियों में सतीशन सहित 14 विधायक पहली बार मंत्री बन रहे हैं। राज्यपाल राजेंद्र अरलेकर को मंत्रियों की सूची सौंपने के बाद श्री सतीशन ने कहा कि यूडीएफ मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक साथ शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को जन्मदिन की बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एचडी देवेगौड़ा ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन के दौरान देश के लिए बेहतरीन योगदान दिया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने एचडी देवेगौड़ा को धरती का सपूत बताया। श्री शाह ने कहा कि किसानों और ग्रामीण भारत के लिए उनके आजीवन समर्पण ने देश पर अमिट छाप छोड़ी है। भारत ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में 1 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीते हैं। जियांग शान में छठे संस्करण की तुलना में भारत की ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Nina Rakel. Prime Minister Narendra Modi held talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg last night. Prime Minister Modi was awarded Sweden's highest honour, the Royal Order of the Polar Star, Degree Commander Grand Cross, in recognition of his exceptional contributions to bilateral ties and his visionary leadership. The award is the highest distinction that can be given to a head of government. This is Prime Minister Modi's 31st international honour. During the delegation-level talks, the two leaders reviewed the full spectrum of India-Sweden relations and agreed to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership, marking a major milestone in the relationship. The two leaders also agreed to identify new opportunities in the spirit of the India-EU strategic partnership and recently concluded the India-EU FTA for the benefit of their people. Prime Minister Modi has invited Swedish companies to enhance their presence in India under initiatives such as Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission during an interaction with select Swedish CEOs in Gothenburg. Mr. Modi mentioned about strong domestic demand, digital public infrastructure, manufacturing expansion and next generation infrastructure development in India.
3: Vodafone, Ericsson, Nokia, Orange जैसी कंपनियों का भारत में विशाल अनुभव है। भारत 5G से 6G ट्रांजिशन, AI enabled networks, secure connectivity और digital inclusion में बड़ा पार्टनर बन सकता है।
2: The Ministry of External Affairs has said that business leaders and CEOs who met Prime Minister Narendra Modi in Sweden expressed strong interest in India and appreciated the country's transformation driven by sustained economic reforms over the past several years. Addressing reporters after the European Roundtable Industry Meeting, MEA Secretary West Sibi George said that CEOs and senior industry leaders highlighted the significant changes they have witnessed in India in recent years. In the fourth leg of his visit, the Prime Minister will reach Norway today for the third India-Nordic summit and bilateral engagements. This will be the first visit of Prime Minister Modi to Norway and the first prime ministerial visit from India to Norway in 43 years. Congress leader V.D. Sadishan will be sworn in as Chief Minister of Kerala in a short while from now. Kerala Governor Rajendra Vishwanath Arlekar will administer him oath of office and secrecy at a function in Thiruvananthapuram at 10 this morning. The Chief Minister designated yesterday evening unveiled a 21-member UDF cabinet ahead of today's swearing-in ceremony. A vessel carrying 20,000 metric tons of liquefied petroleum gas, LPG, arrived at Deendayal Port Authority in Kandla in Gujarat after crossing the Strait of Hormuz amid the West Asia crisis. The Marshall Islands flagged MV Simi started its journey from Qatar and docked at the port in Kandla on Saturday. Since early March, 13 India-flagged vessels comprising 12 LPG tankers and one crude oil tanker have crossed the Strait of Hormuz. In landmark decisions, Suvendu Adhikari-led BJP government in West Bengal has raised the upper age limit for entry into state government jobs. The upper age limit for recruitment to Group A posts has now been set at 41 years. For Group B posts, the limit has been raised to 44 years. And for Group C and Group D posts, the maximum age is now 45 years. The government clarified that where higher age limits are already in place, the existing rules will continue. This decision will officially take effect from May 11, 2026. In tennis, Jannik Sinner won the Italian Open title in Rome after defeating Casper Ruud of Norway 6-4, 6-4 in the final. With the victory, Sinner became the first Italian man to win the tournament since Adriano Panatta in 1976. And that is the end of this news bulletin.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। ईरान द्वारा अमेरिका की प्रमुख शर्तों को मानने से इनकार करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर चेतावनी दी। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के बराकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज जिनेवा में 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में स्वास्थ्य देखभाल के भविष्य को दिशा देने पर वैश्विक संवाद में शामिल होंगे। और विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के लिए नए अवसरों की पहचान करने पर सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
1: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक की संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
2: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूँ। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: स्वीडन के प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी उल्लेख किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि स्वीडन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले उद्योगपतियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत में गहरी रुचि दिखाई है। उन्होंने पिछले कई वर्षों में निरंतर आर्थिक सुधारों के कारण देश में हुए परिवर्तन की सराहना भी की है। यूरोपीय उद्योगपतियों के गोलमेज सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत में विदेश मंत्रालय के पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने कहा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ उद्योगपतियों ने हाल के वर्षों में भारत में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का जिक्र किया।

0: a large number of key companies in Europe. I would like to highlight that in his meetings today with the CEOs and other senior leaders from the business, they all highlighted about their interest. You know, they have been observing India for last few years. They have been investing in India for last few years. What they have seen is a complete transformation in India in the last few years. They emphasized that.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे. वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे. ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी. 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं.
2: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे. यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी. इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा. इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे. साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार.
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं. विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है. पश्चिम एशिया में महीनों से जारी अशांति के बाद यूरेनियम भंडार, प्रतिबंधों में राहत और युद्ध से संबंधित नुकसान के मुआवजे पर वार्ता ठप होने के कारण ईरान को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई चेतावनी के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है.
3: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि समय बीत रहा है. उन्होंने ईरान से समझौते की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का आग्रह किया. अमेरिका के राष्ट्रपति की तीखी टिप्पणी ईरान की मीडिया द्वारा अमेरिका की वार्ता फिर से शुरू करने की मुख्य शर्तें उजागर करने के कुछ ही घंटों बाद आई हैं. ईरान की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका चाहता है कि ईरान 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे और केवल एक परमाणु संयंत्र को सक्रिय रखे. अमेरिका युद्ध मुआवजे की मांग को भी छोड़ना चाहता है और ये स्वीकार चाहता है कि ईरान की अधिकांश जब्त संपत्तियां अवरुद्ध रहेंगी. अमेरिका ये भी चाहता है कि क्षेत्रीय संघर्ष वार्ता पूरी होने के बाद ही समाप्त हो. इस बीच ईरान ने इन शर्तों को खारिज कर दिया है और वार्ता फिर शुरू करने के लिए शर्तें रखी हैं. ईरान ने कहा कि क्षेत्र में विशेष रूप से लेबनान में सैन्य अभियान बंद होने चाहिए, प्रतिबंध हटाए जाने चाहिए और ईरान की जब्त संपत्तियां जारी की जानी चाहिए. ईरान ने युद्ध में हुए नुकसान के मुआवजे और होर्मुज जल डमरू मध्य पर अपने नियंत्रण की मान्यता की भी मांग की. विश्व दर्पण के लिए मैं मृगनयनी पांडे.
1: भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बराकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है. विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं. सम्मेलन 23 मई तक चलेगा. इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी. श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा. यानिक सिनर ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है. रोम में कल फाइनल में सिनर ने नॉर्वे के कैस्पर रूट को 6-4, 6-4 से हराया. इस जीत के साथ सिनर 1976 में एड्रियानो पनाटा के बाद ये टूर्नामेंट जीतने वाले इटली के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं. भारत ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में 1 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीते हैं. जियांगशान में छठे संस्करण की तुलना में भारत की ये एक बड़ी उपलब्धि है. और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया. ईरान द्वारा अमेरिका की प्रमुख शर्तों को मानने से इंकार करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर चेतावनी दी. भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के बराकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की. स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज जिनेवा में 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में स्वास्थ्य देखभाल के भविष्य को दिशा देने पर वैश्विक संवाद में शामिल होंगे. और विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का

0: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:20 रहे हैं। फिल्म संगीत का कार्यक्रम हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे बस थोड़ी देर में।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कार्यक्रम का पहला गीत मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाज लता मंगेशकर की है। फिल्म का नाम है पत्थर की सनम। श्रोताओं, इंतजार का अपना अलग मजा है। युवा मन की आंखें किसी अपने से अजनबी को ढूंढने लगती है। कोई आहट, कोई आवाज, कोई चाप नहीं। दिल की गलियां बड़ी सुनसान है, आए कोई

किसी का प्यार, प्यार की बातें इतनी आसानी से नहीं भुलाई जा सकती। गीतों की बोल, उसका सुर यादों में बस जाता है। मैं तो पांव की कांटी चुनती रही और वो रास्ता बदलता रहा।

अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म पगला कहीं काका ये गीत। गीतकार थे हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। श्रोताओं, ये जिंदगी भी एक पहेली है जो शायद जिंदगी भर नहीं सुलझती। जीवन के हर मोड़ पर एक नया सवाल परेशान करता है। हम तो समझे थे कि एक जख्म है भर जाएगा, क्या खबर थी कि रगे जा में उतर जाएगा।

तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से, परेशान हूँ मैं। अनूप घोषाल की आवाज़ में मासूम फिल्म का ये गाना भी आप सुन रहे थे श्रोताओं। गीतकार थे गुलजार और संगीत से सजाया था संगीतकार राहुल देव बर्मन ने। श्रोताओं, ये जीवन है तो जीने के लिए प्यार भी ज़रूरी है, और अगर किसी के प्यार का साया सर पे है तो जिंदगी का ये लंबा सफ़र आसानी से कट जाएगा, है ना। कोई फूल सा हाथ कांधे पे था, मेरे पांव शोलों पे चलने लगे।

0: प्यार का साया, इसी फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे श्रोताओं, कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज़ों में। बोल समीर के थे और संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण ने। कार्यक्रम फिल्म संगीत में वक्त है एक छोटे से अंतराल का, अभी हाजिर होते हैं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
3: हेलो डॉक्टर,
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
3: हेलो डॉक्टर,
0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय सुबह के 10:47 और 27 सेकंड से हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रोताओं, सांसों के सफर में किसी का साथ हर किसी को चाहिए। अंधेरी सुनसान राहों पर कोई रोशनी चमकती है, मन उजालों से भर जाता है।

वक्त की धूल हर एक चीज पे जम जाएगी, अपनी तस्वीर को इस दिल में छुपा रहने दो। चेहरे तो बदल जाते हैं, पर हाँ आवाज़ नहीं बदलती, आवाज़ की यही पहचान भी है।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर और भूपिंदर सिंह की आवाज़ों में फिल्म किनारा का गीत। गीतकार थे गुलजार, संगीतकार राहुल देव बनबन। और श्रोताओं, इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आप सुनेंगे समाचार और समाचारों के बाद दिन के 11:05 का समय होता है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर का। तो अभी आइए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण में शामिल होते हैं। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केरलम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व वाली नई यूडीएफ सरकार ने आज तिरुवनंतपुरम में शपथ ली।
1: वडचेरी दामोदर मेनोन सतीशन।

0: നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തയും.
1: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को शपथ दिलाई. नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और आईयूएमएल नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं. तिरुवनंतपुरम में 21 सदस्यीय सरकार का शपथ ग्रहण समारोह जारी है. समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण में शामिल हुए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन से बातचीत की. श्री मोदी दो दिन के स्वीडन दौरे पर कल गोथेनबर्ग पहुंचे. प्रधानमंत्री मोदी को दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया. ये पुरस्कार किसी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है. ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है. प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत स्वीडन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की. इस दौरान आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई. प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन ने डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की प्रशंसा की. प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे. श्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे. श्री मोदी की ये नॉर्वे की पहली यात्रा है. किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 वर्ष बाद नॉर्वे की ये पहली यात्रा है. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि स्वीडन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले उद्योगपतियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत में गहरी रुचि दिखाई है. यूरोपीय उद्योगपतियों के गोलमेज सम्मेलन के बाद विदेश मंत्रालय के पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने कहा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ उद्योगपतियों ने हाल के वर्षों में भारत में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का उल्लेख किया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया के दौरे पर रहेंगे. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर उत्सुक हैं. उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग को गहरा करना, रक्षा औद्योगिक साझेदारियों को मजबूत करना, समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं. सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा. इस वर्ष का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी. श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है. उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज सुबह एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई. दुर्घटना उस समय हुई जब ट्रक की टक्कर सामने से आ रही वैन से हो गई. वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे. ये हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ. भारत ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में 1 रजत और 9 कांस्य सहित 10 पदक जीते हैं. जियांगशान में छठे संस्करण की तुलना में भारत की ये एक बड़ी उपलब्धि है. तेल की बढ़ती कीमतों में पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के बाद वैश्विक बाजार के कमजोर रुझानों के चलते घरेलू शेयर बाजार सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट देखने को मिली है. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra.

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: Skateboard.
1: नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो की हमसफर निमिषा और आज मैं फिर आ गई हूं आपके चहेते कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर लेकर, जिसमें कई तरह की बातें होंगी, कई तरह की जानकारियां हम साझा करेंगे आपसे। और इस सफर में होगा फिल्म संगीत भी, तो करते हैं कार्यक्रम का आगाज़।

आपने सही समझा। संवाद किसी भी रिश्ते की पहली और ज़रूरी आवश्यकता होती है, जिसमें सुनना, उपलब्धता, समझ, आपसी सम्मान और भावना शामिल है। दोस्तों, ऐसा कहें तो संक्षेप में संवाद करने का अर्थ यह जानना कि कैसे देना है और कैसे प्राप्त करना है। सबसे व्यवहारिक तरीके से परिभाषित यह विचारों, सूचनाओं को प्रसारित करने की प्राकृतिक प्रक्रिया है और एक निश्चित समय में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की भावनाओं की अभिव्यक्ति करने का ये माध्यम भी है। लेकिन आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी और बढ़ती टेक्नोलॉजी की आपाधापी में बच्चे और माता पिता के बीच संवाद स्तर कम होता जा रहा है। कई बार संवाद होता भी है वह व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फिर फ़ोन पे दो चार लाइनों के माध्यम से। ऐसे में पेरेंट्स और बच्चों के बीच का फासला कितना बढ़ जा रहा है। कहते हैं कि संतान को लेकर तो हर माता पिता को गंभीर और जागरूक होना चाहिए, इसके साथ ही बच्चों को अच्छे संस्कार देने का प्रयास करना चाहिए। अब ज़रा सोचिए कि जब माता पिता और बच्चों के बीच संवाद की कड़ी ही कमज़ोर पड़ जाएगी तो बच्चे संस्कार कहाँ से सीख पाएंगे। ऐसे में जब बच्चे माता पिता की उपेक्षा का शिकार बन जाते हैं तो वे एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ जाते हैं जो निकट भविष्य में उदंडता का कारण बन सकता है। बच्चा अपने माता पिता के वर्ताव व रहन सहन से प्रभावित हो जाता है। कहते हैं कि बच्चों का तो पहला स्कूल उसका घर ही होता है ना दोस्तों। जब बच्चा घर में हो तो ही उपेक्षित होने लगता है, तो वह न सिर्फ परिवार से दूर होने लगता है बल्कि अकेलेपन के दलदल में भी धंसता चला जाता है। बच्चे की अपनी एक अलग दुनिया बननी शुरू हो जाती है। अब अगर एक बच्ची या बच्चा सिर्फ अपने हमउम्र लोगों के साथ ही जीवन जीने लगेगा तो सोचिए ना, हम समझ सकते हैं कि वे कैसी बातें करेगा या कैसा जीवन जिएगा। ऐसी परिस्थितियों में बच्चे अपने माता पिता से दूर होने लगते हैं और चिड़चिड़े बन जाते हैं, उनके बीच भरोसा खत्म होने लगता है और बच्चे अपने माता पिता से कहीं ज़्यादा अपने करीबी दोस्तों पर भरोसा करने लग जाते हैं। श्रोताओं, परिवार में कम होता आपसी संवाद अपनों के बीच सम्मान में भी कमी पैदा करता है। माता पिता को यह भी पता नहीं चलता कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं और किस रास्ते पर चल रहे हैं। उसके बाद एक ऐसा समय भी आता है कि जब बच्चे गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं और जब तक अभिभावकों को अपने बच्चों की आदतों और व्यवहार के बारे में पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसे में परिवार के बीच एक स्वस्थ व खुशहाल संवाद होना बेहद ज़रूरी है, खासकर माता पिता और बच्चों के बीच। खुशहाल परिवार की परिकल्पना में बस साथ चलिए, सबके साथ रहिए, जिससे आपकी दुनिया धानी रंग में रंगी हुई सी लगे।

बाघ को जन्म देने वाला बागवान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साय से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

आप सुन रहे थे बागवा फिल्म का ये गाना अमिताभ बच्चन और रेचा शर्मा की आवाज़ों में। शब्दकार थे समीर और संगीतकार थे आदेश श्रीवास्तव।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर और सुन रहे हैं नमस्कार जमशेदपुर। कार्यक्रम में अब आइए आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं आज के दिन की। आज यानी 18 मई 1974 को राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित पोखरण परीक्षण रेंज में भारत ने अपना पहला सफल भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था, जिसे आधिकारिक तौर पर पोखरण वन और गुप्त कोडनेम स्माइल बुद्धा दिया गया था। इस ऐतिहासिक परीक्षण के साथ ही श्रोताओं, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और के 5 स्थायी सदस्यों जिनमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, इनके बाहर परमाणु परीक्षण का परमाणु क्षमता का प्रदर्शन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। स्माइलिंग बुद्धा, ये नाम इस परीक्षण का क्यों पड़ा? इसके पीछे ये तथ्य है कि यह सफल परीक्षण बुद्ध पूर्णिमा के दिन आयोजित किया गया था। परीक्षण के सफल होते ही भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के तत्कालिक निर्देशक डॉक्टर राजा रमणन ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को फोन पर यह संदेश दिया था और कहा था, बुद्ध मुस्कुराए। इसी वजह से इस पूरे ऑपरेशन का कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। इस गुप्त मिशन को भारत की आयरन लेडी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के राजनीतिक नेतृत्व में अंजाम दिया गया था। इसके विकास और सफल क्रियान्वयन में 3 लोगों का नाम सामने आता है, जिसमें कि डॉक्टर होमी सेठना, डॉक्टर राजा रमणन, डॉक्टर बी डी नाग चौधरी और साथ ही था हमारा भारतीय सेना। श्रोताओं, आपके जहन में ये बात जरूर आई होगी कि परीक्षण के लिए पोखरण को ही क्यों चुना गया। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये था कि यह थार रेगिस्तान का एक बेहद ही सुनसान इलाका था और इस जिससे यहाँ के आसपास की आबादी को किसी तरह का नुकसान होने का खतरा भी नहीं था। दूसरी बात यह थी कि यहाँ की मिट्टी के नीचे चट्टानी संरचना ऐसी थी जो परमाणु विस्फोट से पैदा होने वाले रेडियोधर्मी कणों को बाहर हवा में फैलने से रोकने की क्षमता रखती थी और इस बंजर इलाके में बाहरी देशों के खुफिया सैटेलाइट्स की नज़रों से इसे बचाकर काम करना आसान था। भारत के इस कदम से अमेरिका और पश्चिमी देश पूरी तरह से हैरान रह गए थे क्योंकि उनकी खुफिया एजेंसियां इस परीक्षण की भनक तक नहीं लगा पाए थे और इन सब के बावजूद इस परीक्षण ने भारत को एक मजबूत रणनीति बढ़त दी, जिससे आगे चलकर मई 1998 में पोखरण 2 का रास्ता साफ किया गया, जिसके बाद भारत पूर्ण परमाणु हथियार संपन्न देश घोषित हो गया था।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
3: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरी यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मन भावन कार्यक्रम से।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
5: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में। आज मैं आपके साथ हूँ निमिषा। दोस्तों, इन दिनों बाजारों में पंखे और मिट्टी के बर्तनों की जबरदस्त मांग देखने को मिलती है। लोग इन्हें शुभ भी मानते हैं और इसकी खरीदारी करते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मिट्टी के बर्तन और पंखे दान में भी देने चाहिए। तेज गर्मी से पंखे राहत देते हैं, जबकि मटके और सुराही का पानी जो है प्राकृतिक रूप से ठंडा रखकर शरीर को सुकून पहुंचाता है। धार्मिक आस्था और मौसम की ज़रूरत का यही मेल इन दिनों बाजारों में खरीदारी की ओर खास दिखाई देता है। सामान्य दिनों में मटके की बिक्री सामान्यतः 30 से 40 होती है, जबकि गर्मी में यह संख्या 100 से 400 तक पहुंच जाती है। गर्मी में अत्यधिक ठंडा फ्रिज का पानी पीने से गले में खराश, दांतों की संवेदनशीलता और सर्द गर्म की समस्या बढ़ सकती है। इसके विपरीत मटके का पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा होता है, जो शरीर के लिए फायदेमंद भी माना जाता है। और ऐसे भी कहा जाता है कि मटका या सुराही घड़ा जो भी हो, मिट्टी का बर्तन, इसे लोगों को आपस में भेंट में भी देना चाहिए। गर्मी के मौसम में जल दान सबसे बड़ा दान माना जाता है, इसीलिए मिट्टी के बर्तन का दान करना या फिर जल के साथ इसे दान करना बहुत ही फायदेमंद होता है। आप भी ठंडे पानी का सेवन करें और दूसरों को भी सुराही या मटके का पानी पिलाएं।

आप सुन रहे थे सोनी महवाल फिल्म का ये गीत। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत निर्देशन था अन्नू मलिक का, आवाजें आशा भोसले और सब्बीर कुमार की थी। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और सुन रहे हैं नमस्कार जमशेदपुर। श्रोताओं, आज का दिन भारत के लिए बहुत ही गर्व का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन तो हमने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया था। लेकिन इसके साथ ही आज का दिन पूरी दुनिया के लिए एक और बहुत बड़े संकल्प का दिन है। जी हाँ, आज है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, यानी जिसे हम HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस भी कह सकते हैं। श्रोताओं, शायद आपके जहन में ये ख्याल आ रहा होगा कि जब एड्स की कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बनी तो फिर यह दिवस क्यों मनाया जाता है। श्रोताओं, यही तो आज के दिन की सबसे बड़ी खासियत है। यह दिन किसी जश्न का नहीं बल्कि एक उम्मीद का है, एक कोशिश का है। इस दिन सलाम करने का है दुनिया भर के उन वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स और रिसर्चर्स को जो लैब में दिन रात एक कर रहे हैं ताकि इस जानलेवा बीमारी को दुनिया से हमेशा के लिए मिटाया जा सके। और हाँ, उन जाबाज वॉलंटियर्स को भी सलाम है जो अपनी जान जोखिम में डालकर इन वैक्सीन्स को ट्रायल का हिस्सा बना रहे हैं। श्रोताओं, आप में से कई लोगों के जहन में ये बात भी आती होगी कि इतनी बीमारी आई, सबकी वैक्सीन बन गई, तो एड्स की वैक्सीन बनने में इतनी देर क्यों हो रही है। बात यह है कि HIV वायरस बड़ा शातिर है। यह शरीर में जाते ही जितनी तेजी से अपना रूप बदलता है कि हमारी दवाएं और वैक्सीन भी गच्चा खा जाती हैं। ऊपर से यह सीधे हमारी इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर हमला कर देता है, यानी जो रक्षक है उसी का वो भक्षक बन जाता है। लेकिन निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आज मेडिकल साइंस इतने आगे बढ़ चुकी है कि कोई ना कोई दवा अवश्य ही आविष्कार कर ली जाएगी और संक्रमित मरीज भी एक बेहद सामान्य और लंबा जीवन जी सकेंगे। तो चलिए, आज के दिन हम सब मिलकर एक वादा करें, नफरत बीमारी से करें, बीमार से नहीं। एड्स पीड़ितों को समाज में बराबरी का हक दें और जागरूकता की इस मसाल को आगे बढ़ाएं।

हिट स्टोरी 3 आपने सुना है। इस फिल्म का गाना अरमान मलिक की आवाज़ में, मनोज मुंतशिर ने इस गीत को रचा था, धुन बर्मन का था।

श्रोताओं, जब भी हम बॉलीवुड में फिल्मों में माँ शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसी छवि आती है जो हमेशा रोती रहती है, दुखी रहती है। लेकिन 90 के दशक में एक ऐसी अभिनेत्री आई जिन्होंने बॉलीवुड में माँ के किरदार को पूरी तरह बदल दिया। एक ऐसी माँ जो खूबसूरत थी, हंसती मुस्कुराती थी, जो बच्चों की दोस्त थी और ज़रूरत पड़ने पर उनके हक के लिए डटकर खड़ी हो जाती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सबकी चहेती रीमा लागू जी की। 21 जून 1959 को मुंबई में जन्मी रीमा का असली नाम नयन भड़भड़े था। उन्हें अभिनय की कला विरासत में अपनी माँ मंदाकिनी भड़भड़े से मिली थी, जो खुद मराठी थिएटर की एक बहुत नामी गिरामी कलाकार थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले रीमा जी ने लगभग 10 सालों तक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी भी की थी। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत आपको आपकी सही मंजिल तक खींच लाती है। थिएटर से शुरू हुआ उनका सफ़र, जब बॉलीवुड पहुंचा तो उन्होंने इतिहास रच दिया। मैंने प्यार किया, साजन, हम आपके हैं कौन, कुछ कुछ होता है जैसी सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने सलमान खान, शाहरुख खान और संजय दत्त जैसे सुपरस्टार की माँ का रोल निभाया था। खासकर सलमान खान की माँ के रूप में तो दर्शकों ने उन्हें सगे रिश्तों से भी ज़्यादा प्यार दिया था। लेकिन रीमा जी सिर्फ एक भावुक माँ नहीं थी। जहाँ एक तरफ उन्होंने वास्तव में एक गैंगस्टर बेटे की ऐसी मजबूत माँ का किरदार निभाया जो कानून के लिए अपने ही बेटे को गोली मार देती हैं, वहीं दूसरी तरफ टेलीविजन पर तू तू मैं मैं की वो चुलबुली सास और श्रीमती जी की कोकिला बनकर उन्होंने सबको पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर दिया था। उनकी कॉमिक टाइमिंग का तो कोई जवाब ही नहीं था। लेकिन अफसोस, 18 मई 2017 को अचानक आए कार्डियक अटैक की वजह से रीमा जी इस दुनिया को अलविदा कह गई। वह बहुत जल्दी चली गई, लेकिन स्क्रीन पर आज भी उनकी खूबसूरत मुस्कान और ममता छोड़ गई हैं। तो आइए सुनाते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत जो रीमा जी पर फिल्माया गया था, फिल्म हम आपके हैं कौन में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज़ों में। गीतकार थे रविंद्र रावल और संगीत निर्देशन था राम लक्ष्मण का। इस गाने के साथ ही हमें कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर से दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी जमशेदपुर दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन की अपनी दो दिन की यात्रा के बाद नॉर्वे के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण

0: योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के सम्मान में स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर वे उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन आज से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी डी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
1: वडशेरी दामोदर मेनोन सतीशन नियम वी स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याजमाय विश्वस्तयुम।
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पी के कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 321 अंक गिरकर 74,917, जबकि निफ्टी 113 अंक लुढ़क कर 23,530 पर था। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में हम आपको सुनवाते हैं भावगीत।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: श्रोताओं आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर और अब हम हाजिर हैं भावगीत लेकर। दोस्तों कुछ वादे ऐसे होते हैं जो वक्त की आंधियों में भी नहीं टूटते और कुछ इंतजार ऐसे होते हैं जहां एक दिया सिर्फ चौकट पर नहीं बल्कि उम्मीद बनकर दिल में जलता रहता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, वो लौ कभी बुझती नहीं। हमारा ये गीत ऐसी ही दीवानी का एहसास कराता है जो अपने पिया के आने की आस में बरसों से चाहत का दिया जलाए बैठी है। इस गीत में दोस्तों तड़प भी है, जिद भी है और मोहब्बत का वो जुनून भी है जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय संगीत में ही देखने को मिलता है।

श्रोताओं, कहते हैं कि घर सिर्फ चार दीवारों से नहीं अपनों की मौजूदगी से बनता है, और जब वो अपना ही घर में ना हो तो महल जैसा आशियाना भी खाली और बेगाना लगने लगता है। विरह की एक ऐसी ही तड़प, एक ऐसी ही उदासी को समेटे हुए है हमारा अगला गीत, जहाँ प्रियसी का दिल अपने पिया की जुदाई में रो रहा है। सुने घर की हर दीवार जैसे उसे चिढ़ा रही है, और वो बस राह तक रही है कि कब उसके सैया लौटेंगे और इस सूनेपन को खुशियों से भर देंगे।

श्रोताओं, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है क्या है? शायद अपने दिल की बात जुमा पर लाना। कभी कभी मोहब्बत सामने खड़ी होती है, दिल में जज्बातों का समंदर उफान मार रहा होता है, लेकिन लफ्ज साथ नहीं देते। और जब वो वक्त गुजर जाता है तो पीछे रह जाती है सिर्फ एक खामोश तड़प और पछतावा। आइए सुनवाते हैं एक ऐसा ही गीत, एक ऐसे ही अधूरेपन का एहसास, जहां दो दिल एक दूसरे को चाहते तो हैं लेकिन खामोशी की दीवार को कभी तोड़ नहीं पाए। ना उन्होंने कुछ कहा, ना हमने कुछ सुना।

श्रोताओं, जब प्यार हद से गुजर जाता है तो वो सिर्फ एक एहसास नहीं रहता, वो एक इबादत बन जाता है। एक ऐसी इबादत जहाँ इंसान अपना सब कुछ, अपनी खुशियाँ, अपनी ख्वाहिशें और अपना दिल सामने वालों के कदमों में रख देता है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी शिकायत के।

श्रोताओं, आज के कार्यक्रम भावगीत में आपने जिन फिल्मों के गाने सुने वो फिल्में थीं देवदास आंगन की कली, जिद्दी और हम दिल दे चुके सनम। आवाज़ें श्रेया घोषाल, लता मंगेशकर, भूपेंद्र सिंह, सुरेश वाडकर, कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद सलामत की थी। गीतकार थे नुसरत बद्र, राजेंद्र कृष्ण, समीर और महबूब। संगीत निर्देशन था इस्माइल दरबार, मदन मोहन और दिलीप सेन, समीर सेन का। इस गाने के साथ ही हमारा आज का भावगीत का ये सफ़र अब यहीं पूरा होता है।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनवाते हैं राग शुद्ध सारंग पर आधारित वायलिन वादन पंडित वीजी जोग से शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राग शुद्ध सारंग पर आधारित वायलिन वादन पंडित वीजी जोग सिंह। इसी के साथ हमारा आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। इस दौरे में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय वार्ता और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन

0: मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पी के कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद गृह मंत्री बस्तर के लिए रवाना हो गए, जहां वे नेतानार गांव में सीआरपीएफ कैंप परिसर में स्थापित जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर होने से एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। प्रधानमंत्री ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 133 अंक की गिरावट के साथ 75,105, निफ्टी 60 अंक लुढ़क कर 23,584 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has left for Norway after concluding his two-day visit to Sweden today. Mr. Modi, in a social media post, said his visit to Sweden was marked by several important outcomes that will add new momentum to bilateral relations. He said from elevating their bilateral ties to a strategic partnership, launching the Joint Innovation Partnership 2.0 and the India-Sweden Technology and Artificial Intelligence Corridor, to setting an ambitious goal of doubling bilateral trade in the next 5 years, the discussions were highly productive. He thanked the people of Sweden, the government of Sweden and Prime Minister Ulf Kristersson for the warmth and friendship. Our correspondent covering the Prime Minister's visit to Sweden reports that elevation of bilateral ties to the level of a strategic partnership is guided by the India-Sweden Joint Action Plan 2026-2030. The comprehensive roadmap aims to double bilateral economic exchange within the next 5 years and deepen cooperation under the Make in India and Made with Sweden initiatives, particularly in areas such as green hydrogen, semiconductors and advanced manufacturing. A defining moment of the visit was the conferment of the Royal Order of the Polar Star upon the Prime Minister, Sweden's highest honour for foreign heads of government, symbolising the deepening civilizational and democratic bonds between the two nations. Defence Minister Rajnath Singh departed on a two-nation visit to Vietnam and South Korea today. In a social media post, he said the visit will further expand the scope of the country's engagement with both nations. He added that the visit will focus on deepening strategic military cooperation, strengthening defense industrial partnerships, and boosting maritime collaboration in the Indo-Pacific region. During his visit to Vietnam, Rajnath Singh will hold bilateral talks with Minister of National Defense of Vietnam, General Phan Van Kiang. Mr. Singh's visit also coincides with the 136th birth anniversary of former President of Vietnam Ho Chi Minh on the 19th of May. Union Home Minister Amit Shah today flagged off 400 next-gen Dial 112 vehicles in Raipur. Chief Minister Vishnu Deo Sai, State Assembly Speaker Raman Singh and Deputy Chief Minister Vijay Sharma were also present on the occasion. So far, the Dial 112 service was available in only 16 districts of Chhattisgarh. The state government has now expanded the service to all 33 districts. In Kerala, the new UDF ministry headed by senior Congress leader V.D. Satheeshan was sworn in today at Thiruvananthapuram. Governor Rajendra Vishwanath Arlekar administered the oath to the new ministers.
2: Yana Vadacheri Damodara Menon Satheeshan Ennan Niyamam Vali Sthapithamaya Bharatathinte Bharanaghadanayodu Nirvyajamaya Vishwasthathayum.
1: Former opposition leader and former KPCC President Ramesh Chennithala, present KPCC President Sunny Joseph, former KPCC President K. Muralidharan and IUML leader P. K. Kunyalikutty are among the senior leaders in the new ministry. Prime Minister Narendra Modi has congratulated V.D. Satheeshan on taking oath as the Chief Minister of Kerala. In a social media post, Mr. Modi said the central government will assure all possible support for the newly formed Kerala government in fulfilling the aspirations of the people. A vessel carrying 20,000 metric tons of liquefied petroleum gas, LPG, has arrived at Deen Dayal Port Authority in Kandla in Gujarat after crossing the Strait of Hormuz amid the West Asia crisis. The Marshall Islands flagged MV Simi started its journey from Qatar and docked at the port in Kandla on Saturday. Since early March, 13 India-flagged vessels comprising 12 LPG tankers and one crude oil tanker have crossed the Strait of Hormuz. In a landmark decision, the Shubh Hindu Adhikari-led BJP government in West Bengal has raised the upper age limit for entry into state government jobs. The upper age limit for recruitment to Group A posts has now been set at 41 years. For Group B posts, the limit has been raised to 44 years. And for Group C and Group D posts, the maximum age is now 45 years. The government clarified that where higher age limits are already in place, the existing rules will continue. And with that, we end this news bulletin.

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी को मिला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा का बताया प्रतीक, कहा देशवासियों के लिए गर्व का विषय। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी। रांची में प्रगतिशील किसानों को किया सम्मानित। खूंटी में पुल निर्माण साइट पर फायरिंग और लूट की घटना। मजदूर के साहस से बाइक छोड़ अपराधी फरार, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। गुमला लोहरदगा समेत कई जिलों में अगले कुछ घंटों में मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ वर्षा की संभावना। रांची समेत कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन द्वारा रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया जाना प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व और गौरव का विषय है। यह सम्मान न केवल प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक स्तर पर उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व का प्रतीक है, बल्कि विश्व मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और सशक्त उपस्थिति को भी दर्शाता है। केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा

0: कहा है कि प्रधानमंत्री को प्राप्त यह 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान देशवासियों के लिए प्रेरणादायी है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने शहर वासियों की सुविधा के लिए रांची के 5 प्रमुख चौराहों पर वाटरप्रूफ ट्रैफिक शेड लगाने की योजना बनाई है। पहले चरण में अरगोड़ा चौक, सरना चौक, सहजानंद चौक, लालपुर चौक और करमटोली चौक पर आधुनिक डिजाइन के मजबूत स्टील फ्रेम और वाटरप्रूफ सामग्री से बने शेड लगाए जाएंगे। प्रशासनिक स्वीकृति मिलते ही इस योजना पर काम शुरू होगा और सफलता के बाद इसे शहर के अन्य व्यस्त चौराहों पर भी विस्तार किया जाएगा। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची के बेड़ों में किसान सम्मान समारोह में कहा कि किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने के लिए लगातार काम कर रही है और ट्रैक्टर, कृषि यंत्र, स्प्रेयर समेत अन्य उपकरण अनुदान पर दिए जा रहे हैं। मौके पर मंत्री ने मत्स्य पालन और केस फार्मिंग को बढ़ावा देने के साथ साथ ग्रामीण बाजारों को सशक्त बनाने और कोल्ड स्टोरेज निर्माण की बात भी कही। कम वर्षा की संभावना को देखते हुए उन्होंने किसानों से धान के साथ साथ मोटे अनाज और कम पानी वाली फसलों की खेती पर ध्यान देने की अपील की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 27 अप्रैल 2026 को मंजूर की गई झारखंड अनाधिकृत रूप से निर्मित भवन नियमितीकरण नियम 2026 को टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने आम जनता के लिए काफी लाभकारी बताया है। धनबाद में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि वर्षों से लोग भवन नियमितीकरण की समस्या से परेशान थे, जिसे राज्य सरकार ने दूर करने का प्रयास किया है।
1: जो भवन बन के तैयार था क्षेत्र में, जिसका किसी तरह का उपयोग या नहीं कोई कानून नीति बना, वैसे लोगों को यह बताया गया है कि कम से कम वैसे लोगों को 2 महीने के अंदर अप्लाई अगर करेंगे तो उसको स्थायीकरण का भी मान्यता उसको दिया जाएगा और उसका जो सरकारी राशि है उसको दिया जाएगा, उसको वैध माना जाएगा।
0: रांची जिला प्रशासन ने संवेदनशील कार्रवाई करते हुए 85 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक राधेश्याम नाथ को 24 घंटे के भीतर सर्वजन पेंशन योजना और आयुष्मान कार्ड का लाभ उपलब्ध कराया। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर समाहरणालय की टीम ने बुजुर्ग के घर जाकर पेंशन स्वीकृति प्रमाण पत्र और आयुष्मान कार्ड सौंपा, जिससे उन्हें स्वास्थ्य और आर्थिक सहायता तुरंत मिल सके। लाभ मिलने पर राधेश्याम नाथ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जिला प्रशासन का आभार जताया।
2: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सौजन्य से मुझे 12 घंटे के अंदर कार्ड, आयुष्मान कार्ड तथा अन्य और कार्ड पेंशन प्राप्त हुआ। हम उनको तहे दिल से अपना धन्यवाद देते हैं।
0: केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया में चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की फैक्ट चेक यूनिट ने कहा है कि यह दावा फर्जी है। भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन पूल साइट पर फायरिंग और लूट की घटना सामने आई है। पुलिस ने मौके से अपराधियों द्वारा छोड़ी गई बाइक बरामद की है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। जानकारी के अनुसार एक बाइक से पहुंचे 3 अपराधियों ने मजदूरों के साथ मारपीट कर करीब 1 दर्जन मोबाइल फोन लूट लिए और दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग की। इस बीच मजदूरों का विरोध देख बदमाश घबराकर अपनी बाइक मौके पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस का दावा है कि मामले में शामिल सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चतरा जिले में पुलिस ने

0: ने मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाते हुए गिद्धौर थाना क्षेत्र से एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है। एसपी अनिमेश नथानी ने बताया कि उसके पास से करीब 4 किलो अफीम बरामद हुई।
1: सत्यापन में एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा और उसके पास से दो थैला में सेमी लिक्विड पदार्थ अफीम जैसा बरामद हुआ, जिसकी हम लोगों द्वारा टेस्टिंग की गई तो पाया गया कि 3 किलो 972 ग्राम अफीम उसमें बरामद हुआ है। साथ ही 2 किलो गुड़ भी अलग से थैली में एक बरामद हुआ है, जिसको जब्त किया गया।
0: साहिबगंज जिले में 300 चोरी या गुम मोबाइल को उनके मालिकों को सौंपा गया। सिद्धो कानो सभागार में आयोजित कार्यक्रम में लोगों को पौधा देकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने कहा कि मोबाइल चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के साथ साथ इस तरह की घटनाओं में शामिल युवाओं को रोजगार से जोड़ने की भी पहल की जाएगी।
2: पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने समेकित एक कार्य योजना बनाकर उस पर काम कर रहे हैं। एक पक्ष है उसको कि ऐसे सब लोग इस काम में शामिल हैं, उनको रोजगार के अन्य अवसरों मुख्य धारा से जोड़ा जाए ताकि वो इस तरह के कार्यों में सम्मिलित न हो। दूसरा पहलू है कि जो लोग इसके बाद भी जो हम लोग मौका दे रहे हैं उसके बाद भी इस कार्य में लिप्त है, इस गलत कार्य में, उसको पकड़ा जाए, परेश किया जाए। उसी अभियान के तहत हम लोगों ने 300 मोबाइल रिकवर किया है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 0.5% की गिरावट दर्ज की गई है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 321 अंक गिरकर 74,917, जबकि निफ्टी 113 अंक लुढ़ककर 23,530 पर था। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,46,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,74,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम विभाग ने अगले 1 से 3 घंटे में गुमला और लोहरदगा जिलों के कुछ भागों में मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ वर्षा होने की तात्कालिक चेतावनी जारी की है। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री मोदी को मिला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा का बताया प्रतीक, कहा देशवासियों के लिए गर्व का विषय। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी। रांची में प्रगतिशील किसानों को किया सम्मानित। खूंटी में पुल निर्माण साइट पर फायरिंग और लूट की घटना। मजदूरों के साहस से बाइक छोड़ अपराधी फरार, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। गुमला लोहरदगा समेत कई जिलों में अगले कुछ घंटों में मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ वर्षा की संभावना। रांची समेत कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद होंगे आमने सामने। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में श्रोताओं हम आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।
1: बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: Akashwadi at 90.
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: जलवायु उपशमन और अनुकूलन, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। हम स्वच्छ ऊर्जा अपनाकर पेड़ों की कटाई रोककर और जंगल और मैंग्रोव जैसे प्राकृतिक इलाकों को सुधार कर जलवायु परिवर्तन का सामना कर सकते हैं। उपशमन का अर्थ है जलवायु परिवर्तन के कारणों को कम करना। अनुकूलन का मतलब है इसके प्रभाव से बचने की तैयारी करना, जैसे कि भोजन, पानी और आपदा प्रबंधन को बेहतर करना, खासकर उन समुदायों के लिए जो इसके जोखिमों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन इन सभी कोशिशों के बावजूद भी कुछ नुकसान होना निश्चित है। यह एक डरावनी स्थिति है। अगर वर्तमान गतिविधि जारी रही तो इस सदी में वैश्विक तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ सकती है।
4: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
5: जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
6: ज्ञान विज्ञान
7: इतिहास के पन्नों से,
6: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
5: मौसम का मिजाज,
6: अपने शहर की खबरें,
7: बातों मुलाकातों के साथ
5: सुरीला मनोरंजन
6: और भी बहुत कुछ।
5: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
7: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
8: नमस्कार जमशेदपुर।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और अब हम हाजिर हैं फिल्म संगीत लेकर। गीतों भरे इस सफर में स्वागत है आपका। करते हैं कार्यक्रम का आगाज फिल्म गुलामी के इस गीत से। आवाज़ें लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की है, बोल गुलजार के हैं, धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनवाते हैं सनम बेवफा फिल्म से। सावन कुमार के रचे इस गीत को संगीतबद्ध किया है महेश किशोर ने, आवाज़ बिपिन सचदेवा की है।

और अब लीजिए सुनवाते हैं शब्बीर अहमद की रचना। धुन हिमेश रेशमिया का है, आवाजें राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की है। ये गीत हम आप तक लेकर आ रहे हैं फिल्म बॉडीगार्ड से।

कार्यक्रम का अगला गाना फिल्म गुजारिश से आवाज़ें सुनिधि चौहान और शैल हदा की है, तुराज का रचा ये गाना है, धुन संजय लीला भंसाली का है।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनवाते हैं क्योंकि फिल्म का ये गाना। आवाजें अलका याग्निक और उदित नारायण की हैं। समीर के रचे इस गीत को संगीतबद्ध किया है हिमेश रेशमिया ने।

अभी आप सुन रहे थे क्योंकि फिल्म का ये गाना अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में समीर ने इस गीत को रचा था। संगीत निर्देशन हिमेश रेशमिया का था। इस गाने के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये सफ़र अब यहीं पूरा होता है।

श्रोताओं, अब से थोड़ी देर बाद यानी दोपहर के 2 बजे आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। इसके ठीक बाद हम आपको सुनवाएंगे दोपहर के 2:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम और 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। अपराह्न के 3 बजे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित किया जाएगा और 3:30 पर आनंद ले सकते हैं आप उपशास्त्रीय संगीत का। 3:45 पर लोक गीतों का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। संध्या 4 बजे एवं 5 बजे समाचार मुख्यांश आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित मिड डे न्यूज़ और समाचार, दोपहर समाचार।

0: is ticking as talks to bring the war to an end have stalled. The remarks come as Washington and Tehran sit locked in a test of wills, waiting to see who blinks first to end the stalemate in the war in the region. In a social media post, President Trump said time is running out and called upon Tehran to move quickly towards an agreement. Meanwhile, Iranian media has reported that the U.S. failed to make any concrete concessions in its response to Tehran's latest proposals to end the conflict. In IPL cricket, hosts Chennai Super Kings will take on Sunrisers Hyderabad at M.H. Chidambaram Stadium. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. In the latest standings, Sunrisers Hyderabad are currently placed third with 14 points from 12 matches, having won 7 matches so far and remain firmly in the playoff race. Chennai Super Kings are fifth with 12 points from as many matches, having registered 6 wins this season. India finished the Asian Weightlifting Championships 2026 in Gandhinagar with 10 medals, including 1 silver and 9 bronze, marking a big improvement from the previous edition in Chiang Shan, where India returned without a medal. Commonwealth Games bronze medalist Lovpreet Singh delivered India's best performance on the final day by finishing 5th in the men's 110kg-plus category. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heatwave to severe heatwave conditions over the plains of northwest India and central India during many days of the week. According to IMD, heatwave conditions are likely to prevail over Uttar Pradesh till Saturday. Rajasthan, Punjab, Haryana, Chandigarh and Delhi will also experience similar conditions. The weather agency predicted gradual rise in maximum temperatures by 3 to 5 degrees Celsius over northwest parts of the country. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Oslo to hold bilateral talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre this evening. Prime Minister Modi says his Sweden visit adds new momentum to bilateral relations as both countries agree to double trade in the next 5 years. Congress leader V.D. Satheeshan takes oath as Keralam Chief Minister along with 20 cabinet ministers. West Bengal government approves 7th pay commission for state government employees. Union Home Minister Amit Shah flags off 400 emergency response vehicles in Raipur district of Chhattisgarh. And in IPL cricket, hosts Chennai Super Kings to take on Sunrisers Hyderabad this evening. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
2: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोड़बोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंध

0: को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा एआई गलियारे की शुरुआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
1: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आई। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी AI कॉरिडोर यानी CTAC का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी LEADIT के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
2: वडशेरी दामोदर मेनोन सतीशन नियम स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याजमाय विश्वस्तयुम।
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने UDF सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चिनिथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता PK कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने VD सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए पहली जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने दो प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
3: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैले। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्ली वासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
4: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
5: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। यह हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3-5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब हम हाजिर हैं फिल्म संगीत लेकर।

आकाशदीप, आपने सुना है इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। मजरू सुल्तानपुरी के रचे इस गीत को संगीतबद्ध किया था चित्रगुप्त ने।

लोफर, आपने सुना है इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में। शब्दकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अब आइए सुनवाते हैं मजरू सुल्तानपुरी की ये रचना। धुन खयाम का है, आवाज़ें आशा भोसले और मुकेश की हैं। ये गीत हम आप तक लेकर आ रहे हैं, मोहब्बत इसको कहते हैं फिल्म से।

वक्त, आपने सुना इस फिल्म का गाना महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज़ों में। रचनाकार थी साहिर लुधियानवी और संगीत दिया था रवि ने। अब आइए सुनवाते हैं साथ ही फिल्म से ये गाना। मजरू की रचना है, नौशाद की धुन है और ये आवाज़ मुकेश की है।

मुकेश के गाए फिल्म साथी के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का फिल्म संगीत का ये सफ़र अब यहीं पूरा होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में एक समारोह में सहायक आचार्यों तथा महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि इससे राज्य के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था और मजबूत होगी। समारोह में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव भी मौजूद रहे।
1: नवनियुक्त हुए हैं, सरकार के अंग के रूप में आप काम करेंगे। यह चार महीने में ही शिक्षा विभाग में लगभग 9000 से अधिक लोगों की नियुक्ति हुई। विगत दो साल के अंदर हम लोगों ने लगभग 15-16 हजार लोगों की नियुक्तियां की और ये अनवरत जारी भी, अभी और भी तैयारी हो रही है। लगता है कि 2-3-4 महीने में और भी हजारों लोगों की नियुक्तियां होंगी, तो आज ये 300 आदमी हजारों के बराबर।
0: दुमका में बिजली और पानी का संकट गहरा गया है। इसके विरोध में भाजपा नेत्री सीता सोरेन ई रिक्शा से समाहरणालय पहुंची। उन्होंने उपायुक्त अभिजीत सिन्हा को ज्ञापन सौंपकर सुचारू आपूर्ति की मांग की। श्री सोरेन ने कहा कि बिजली कटौती से जलापूर्ति ठप है और लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। प्रदेश कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के लिए जिला प्रभारियों की नई सूची जारी की है। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में राज्य के सभी प्रमंडलों में नियुक्तियां की गई है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और युवाओं से जुड़े मुद्दों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से उठाना है। टाटा नगर रेलवे स्टेशन जल्द ही विश्वस्तरीय बनेगा। अमृत स्टेशन योजना के तहत 290 करोड़ रुपए की लागत से इसका पुनर्विकास कार्य तेजी से जारी है। यहां 6 मंजिला आधुनिक भवन, आधुनिक प्रतीक्षालय और 10,000 वाहनों की पार्किंग जैसी सुविधाएं मिलेंगी। रेलवे ने इस बड़ी योजना को अगले 3 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

0: तथ्य जांच इकाई के सोशल मीडिया हैंडल पर भेजने की सलाह भी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से अब चतरा जिला सीधे रेल सेवा से जुड़ेगा। रेल मंत्रालय ने बिहार के परैया से चतरा तक 75 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को मंजूरी दे दी है। करीब 2500 करोड़ रुपए की इस विशेष परियोजना की जानकारी आज स्थानीय सांसद कालीचरण सिंह ने प्रेस वार्ता में दी।
1: चतरा और गया का रेल लाइन का अधिसूचना जारी हो गया, जो 75 किलोमीटर का रेल लाइन है। विशेष अधिसूचना के तहत चतरा गया रेल लाइन को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। स्पेशल स्टेटस के अनुसार 531 करोड़ जो अलॉटेड हुआ है, उसमें से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो जाए। जितने भी अड़चने हो, फॉरेस्ट का, NOC का हो, जितनी भी चीजें हो, उनसे जितनी भी अड़चन का हो दूर हो जाए और समस्या की ओर जो समाधान करते हो आगे के कार्य की प्रगति करे, इसलिए स्पेशल स्टेटस इसको दिया गया है।
0: सिमडेगा पुलिस ने अंतरराज्यीय गांजा तस्करी मामले में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। DSP रणवीर सिंह ने बताया कि पूर्व में टुकुपानी से 42 किलो गांजा और 3 पिस्तौल के साथ तस्कर पकड़े गए थे। इसी मामले में SP श्रीकांत एस खोटरे की विशेष टीम ने बिहार और ओडिशा के 2-2 अन्य आरोपियों को दबोचा है। और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज दोपहर बाद गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए कई जिलों के लिए येलो और कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए तेज आंधी और वज्रपात की चेतावनी दी है। विभाग ने लोगों को खराब मौसम में सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। सराईकेला खरसावां द्वितीय जिला स्तरीय योगासन खेल प्रतियोगिता का समापन हो गया है। श्रीनाथ यूनिवर्सिटी और जिला योगासन खेल संघ द्वारा आयोजित इस स्पर्धा में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथियों ने विजेताओं को मेडल सौंपे। अब ये खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनवाते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
0: और आपके मित्र अजीत का भी नमस्कार और जोहार।
2: बिना संघर्ष के सफलता बिना नमक के भोजन की तरह होती है। इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं लगेगी।
0: श्रोताओं, ये सुंदर विचार हमें भेजा था बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने। बिल्कुल सच कहा है, बिना श्रम के सफलता का सच्चा आनंद नहीं मिलता
2: जी।
0: आप दोनों का धन्यवाद। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
0: और भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं,
2: गुरुवार 23 अप्रैल को सुविचार को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपने जानकारी देते हुए एक दोहा का उदाहरण दिया। इस दोहे में कबीरदास जी विश्वास को न तोड़ने की सीख देते हैं। दोहा इस तरह से था, वही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए।
0: आपने आगे लिखा है, आपके द्वारा इस दोहे के रचनाकार कवि का नाम कबीरदास बताया गया। वास्तव में इस दोहे को रहीम ने लिखा है, न कि कबीरदास जी ने। धन्यवाद और आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार। कृष्ण कुमार जी, आपको भी हमारा विशेष धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं।
0: तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है हमेशा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संदेश भेजते रहिए।

0: अगला संदेश सुनते हैं जो हमें मिला है।
1: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़ता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
0: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
1: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी।
0: और बेगूसराय बिहार से हमें संदेश मिला है इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा का। लिखते हैं,
1: आज की प्रस्तुति कल्पना चावला जो सितारों में खो गई हमें बहुत अच्छी लगी, आपको साधुवाद।
0: और आप सबको हमारा हार्दिक आभार। आइए बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
1: इस प्रश्न का उत्तर है, नीली व्हेल को आकार में समुद्र का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। इसका वजन लगभग 100 से 150 टन का होता है, यानी किलोग्राम के अनुसार ये 1 लाख से 1.5 लाख किलोग्राम की होती है।
0: जी, और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, थर्मल लैग किसे कहते हैं।
1: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों, गर्मियों में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है। सुबह से सूर्य के ताप के कारण धरती गर्म होती रहती है और 12 बजे सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती हैं।
0: जी,
1: बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसीलिए उनका ताप कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान यानी 12 बजे के बाद भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है, जिसे थर्मल लैग कहते हैं।
0: और हमारा तीसरा प्रश्न था कि प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
1: इसका उत्तर है साथियों, प्रकृति जलवायु के अनुसार हर मौसम में वही उपज देती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अनेक उदाहरण हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है ताकि हमें गर्मी के मौसम में इसका लाभ मिले।
0: और हमारा अगला प्रश्न श्रोताओं प्राथमिक उपचार से संबंधित था। हमारा प्रश्न था कि लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीले करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
1: तो साथियों इसका उत्तर भी जान लेते हैं, लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से सांस लेने में आसानी होती है और शरीर का रक्त संचार आसानी से हो पाता है।
0: और अब हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न, हमारा प्रश्न था, बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में और क्या क्या कर सकते हैं।
1: इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे विद्यार्थी कोई भी शास्त्रीय नृत्य या वाद्य यंत्र सीख सकते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला या बांसुरी।
0: जी विमलेश जी, ये सचमुच एक बड़ी अच्छी सलाह है। तो श्रोताओं अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है।
0: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमें भेज सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित ये कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करें और उसकी सुंदरता का अनुभव करें। कार्यक्रम एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक बच्ची आकाश में बादलों को ध्यान से देखकर उनके विभिन्न आकारों में पशु पक्षियों की छवि की कल्पना करती है।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
3: वी आर फाइन सर।
4: आई एम फाइन।
5: आई एम गुड सर।
2: फाइन, गुड। ओके, सो टेल मी, what do you like most?
4: I like playing, sir.
6: I like painting, sir.
2: Very good. Anyone else?
7: Sir, I like singing.
8: I like playing with my pets.
2: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
3: Yes, sir.
6: We like.
2: Lovely butterflies?
3: Yes, sir.
2: And lovely colorful chirping birds? That's very nice, children.
6: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
2: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it?
3: Yes, sir.
2: The rivers, the mountains, and the green trees.
3: Yes, sir.
2: Okay. So let me tell you the story of a sweet child like you.
3: Like us?
2: Would you like to listen?
3: Yes.
2: To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
3: Okay, sir.
2: Very good. Now I am going to read this poem. you have to repeat after me.

0: you like the song?
1: Yes, sir, it was lovely.
0: So, children, here is something to do for you, okay?
1: Okay.
0: Sit outside your home or go to any park and see the clouds go by. And tell your friends what you have observed.
1: Okay, sir, it will be so lovely.
2: It will be good.
0: Yes, and one thing more. Notice the colors of the clouds and you will find that the clouds also have different colors from time to time.
1: Yes, sir.
3: I have seen rainbow.
4: It has 7 colors.
0: So, children, whenever you see the clouds, they have different
1: shapes.
0: Yes, shapes. And they have different
1: colors.
0: Very nice.
5: Show of Clouds. You were just listening to this program. Program coordinator, Professor Rajendra Pal. Technical coordinator, Butty Langlingdo. Child singer, Angel. Child artists, Soham, Vedika, Vanya, Navya, Riddhi and Lavish. Sound recordist, Mayank Kumar. Assistance in production, Kusum Lata. Directed and produced by Ajit Horo. This program was brought to you by CIETNCERT, New Delhi, India. अभी आपने सुना कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम का शीर्षक है तुलसी गौड़ा।
6: ये कार्यक्रम जंगल की एनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली महान आदिवासी पर्यावरण विशेषज्ञ तुलसी गौड़ा के जीवन, उनके पर्यावरण पर शोधों और वृक्षों को बचाने के उनके प्रेरणादायक अभियान की जानकारी देता है। विशेष रूप से मातृ वृक्षों पर उनकी खोज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है।
7: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहने
8: तुलसी गौड़ा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका,
9: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करछंती।
10: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा।
7: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
11: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है।
12: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
13: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण।
12: यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। देश भर में प्रसन्नता की लहर।
14: नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती है।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागवानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाए।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों में करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए।
3: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
2: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
3: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
2: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
2: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
3: अच्छा,
2: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे
4: बढ़ने लगे थे। हाँ।
3: अरे ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
2: देखो, पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है।
3: बिल्कुल होता है।
2: और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए यदि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बेहतर ढंग से पढ़ते हैं।
3: ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है तुलसी जी,
2: है ना
3: जी।
2: और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं।
3: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
2: हाँ, बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
0: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
2: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूँ। मैं जंगल की भाषा बोल सकती।

0: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
1: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
0: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
2: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
3: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
2: अच्छा।
3: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
2: अच्छा।
3: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
2: अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मातृ वृक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
3: बिल्कुल सही सुना है आपने। मातृ वृक्ष गोंद की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं।
2: अच्छा।
3: और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखड़ने से बचाते हैं।
2: अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने।
3: इतना ही नहीं, यदि कई मातृ वृक्ष आसपास हों तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाते हैं। वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करके उन्हें पालते हैं। समझे
2: जी? ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
3: हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है। ठीक है ना?
2: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत धन्यवाद।
0: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
1: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, पूनम एस कुदेसिया और अंजलि। आलेख अजीत होरो। निर्माण सहायक कुसुम लता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तुलसी गौड़ा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

Thank you.

Yeah.

जाने चल चल मचाता सुना गबू बबू शंकर क्यों कर बचाता यही शब्द लिखते सुख

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब से ये भजन, और इसी के साथ हमारा आज का उपशास्त्रीय संगीत अब यहीं संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए सुनवाते हैं लोक गीतों का कार्यक्रम। लोक गीतों के आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता सुनेंगे सोम राय तिर्की और साथियों का गाया उड़ाओं गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सोम राय तिर्की और साथियों का गाया उड़ाव गीत। और इस गीत के साथ ही हमारा आज का लोक गीतों का ये सफ़र अब यहीं पूरा होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित समाचार मुख्यांश।

0: केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। जेटेट भाषा विवाद सुलझाने के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी की आज रांची में पहली बैठक हुई। मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के बाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद और दीपिका पांडे सिंह ने बताया कि शिक्षा विभाग से नई नियमावली में सुधार के लिए विस्तृत रिपोर्ट तलब किए गए हैं। रांची के प्रोजेक्ट भवन में आज आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 316 सहायक आचार्यों और 17 महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नवनियुक्त शिक्षक सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि राज्य के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। रांची की बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में महिला कैदी की कथित यौन शोषण मामले पर भाजपा ने राज्य सरकार को घेरा है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने आरोप लगाया कि जेल अधिकारियों की मिलीभगत से मामले को दबाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की जांच उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से करने की मांग की है। रांची जेल यौन शोषण मामले में कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने साफ किया कि महिला कैदी की मेडिकल जांच में गर्भावस्था की रिपोर्ट नकारात्मक आई है। श्री सिन्हा ने विपक्ष पर मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया है। पलामू जिले के छतरपुर में NH 98 पर आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सलदा गाँव के पास चलती बस किससे गिरकर एक युवक की मौके पर मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे और चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। राज्य में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आज रांची, खूंटी और गुमला सहित दक्षिणी तथा मध्य भागों में 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, बारिश और वज्रपात की आशंका है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे समाचार मुख्यांश आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

मेरे हमदम, मेरे दोस्त, आपने सुना इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। रचनाकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। अब आइए सुनवाते हैं अगला गीत एस पी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, मैंने प्यार किया फिल्म से। देव कोहली ने इस गीत को रचा है और राम लक्ष्मण का संगीत निर्देशन है।

आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

0: एक पल में जो आकर गुजर जाता है ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं।
1: दिल चले इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं। आवाजें थी पूर्णिमा और उदित नारायण की, गीत संगीत था अनु मलिक का। आकाशवाणी जमशेदपुर से श्रोताओं आप सुन रहे हैं फिल्मी गाने FM 100।

सुरेश वाडकर की खूबसूरत आवाज़ में ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं। गीतकार थे गुलजार और संगीतबद्ध किया था इस गीत को हृदयनाथ मंगेशकर ने। फिल्म थी लेकिन। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं श्रोताओं और सुनते हैं ये अगला गीत।

चल कहीं दूर निकल जाएं। श्रोताओं, आप चलते चलिए हमारे साथ ऐसे ही मधुर गीतों के साथ FM 102.4 MHz पर। बहरहाल ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और इसकी धुन बनाई थी राजेश रोशन ने। फिल्म थी दूसरा आदमी। श्रोताओं, हम चल रहे हैं गानों के साथ इस सफर पर और पढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। सुनिए ये खूबसूरत सा गीत।

मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। ये गीत आप सुन रहे थे उपहार फिल्म से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आकाशवाणी जमशेदपुर से श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गीत था साहिर लुधियानवी का दिखा हुआ। संगीतकार थे रवि और फिल्म थी दो कलियां। श्रोताओं, चलते चलते हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर। सुनवाते हैं आपको इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीत दिया था आरटी बर्मन ने, फिल्म थी सितमगर। श्रोताओं, मौसम कितने भी रंग बदलता रहे, एक पल में गर्मी और अगले ही पल आंधी तेज बारिश हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा और आपका प्यार यूं ही बना रहे, इसी कामना के साथ अब इस कार्यक्रम से इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। शाम के 5 बजने ही वाले हैं श्रोताओं। कुछ ही क्षणों में समाचार मुख्यांश का प्रसारण होगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से।
1: अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नक्सलवाद का अंत होने के बाद भी हमें चैन से नहीं बैठना है। छत्तीसगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह का हवाला देते हुए कहा कि अगले 5 वर्षों के भीतर सभी प्रभावित गांवों को जीवंत आदिवासी समुदाय में बदला जाएगा ताकि नक्सलवाद के कारण हुए नुकसान की पूरी भरपाई की जा सके। सरायकेला खरसावां में आज किसानों की समस्याओं और सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ भाजपा ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3200 रुपए प्रति क्विंटल करने और बकाया भुगतान की मांग को लेकर वीडियो के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। हजारीबाग के युवाओं की संस्था अर्थ एक प्रयास ने सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में चुप्पी तोड़ो अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत चूरचू प्रखंड के नगड़ी बिरहो टोला में किशोरियों और महिलाओं को मासिक धर्म और व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना में पुलिस ने सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। SP अनुदीप सिंह ने बताया कि 5 बालिग आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है जबकि और 2 नाबालिगों को निरुद्ध किया गया है। देवघर में आज उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक हुई। उपायुक्त ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन और स्वास्थ्य सहायता योजना का लाभ 100% पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। पलामू के जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में आज उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने अवैध खनन पर सख्त निर्देश जारी किए हैं। अप्रैल माह में संयुक्त कार्रवाई के दौरान अवैध परिवहन में संलिप्त 50 से अधिक वाहन जब्त किए गए हैं और 32 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: समाचार मुख्यांश का प्रसारण हुआ आकाशवाणी के रांची केंद्र से FM 102.4 MHz पर। श्रोताओं, आप हैं आकाशवाणी जमशेदपुर के साथ। शाम के 5:02 हुए हैं श्रोताओं। प्रस्तुत है युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर 102.4 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं प्रिया, स्वागत है आप सभी का अपने मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे सफल लोगों की कहानियाँ, साथ ही जानेंगे म्यूजियम के बारे में, जिसे अक्सर इतिहास का दर्पण भी कहा जाता है। और इसी के साथ जानेंगे असफलता व्यक्ति की हार नहीं होती, बल्कि आत्मविश्वास से असफलता भी सफलता में बदल सकती है। और अंत में जानेंगे कुछ ताज़ा खबरों के बारे में। तो अगले कुछ पलों तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की बात शायद आपके जीवन को एक नई संदेश दे दे। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने न सिर्फ आसमान की ऊंचाइयों को छुआ, बल्कि अंतरिक्ष में तिरंगा लहराकर 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। दोस्तों, ये कहानी है लखनऊ के एक साधारण लड़के से लेकर भारत के गगन यात्री बनने तक की कहानी, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की।

10 अक्टूबर 1985 को जन्मे लखनऊ में जन्मे शुभांशु का बचपन आम बच्चों जैसा ही था, लेकिन साल 1999 के कारगिल युद्ध ने उनके भीतर देशभक्ति की एक ऐसी मशाल जलाई कि उन्होंने बिना किसी को बताए एनडीए की तैयारी शुरू कर दी। परिवार में कोई डिफेंस बैकग्राउंड का नहीं था। उनके माता पिता चाहते थे कि बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बने, लेकिन शुभांशु की आंखों में तो फाइटर जेट्स और खुला आसमान बसता था। साल 2006 में वायुसेना में कमीशन हुए शुभांशु ने सुखोई 30 MKI जैसे शक्तिशाली विमानों को उड़ाया और 2000 से ज्यादा घंटों का फ्लाइंग अनुभव हासिल किया। शुभांशु शुक्ला वायुसेना के एक कुशल और अनुभवी फाइटर पायलट थे। उन्होंने वर्षों तक देश की सेवा करते हुए कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। उनकी मेहनत, तकनीकी दक्षता और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें भारत के चुनिंदा अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवारों में शामिल किया। साल 2019 में उनके जीवन में असली मोड़ तब आया जब इसरो ने उन्हें भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुना। यह केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा थी। जून 2025 वो ऐतिहासिक दिन जब शुभांशु शुक्ला एक्जियम मिशन 4 के मिशन पायलट बनकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे। वे वहां पहुंचने वाले पहले भारतीय बने और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय। शुभांशु ने वहां 18 दिन बिताए। माइक्रोग्रेविटी में कैंसर और खेती से जुड़े 60 से ज्यादा प्रयोग किए और यहाँ तक कि अंतरिक्ष से प्रधानमंत्री से बात करते हुए गाजर के हलवे की फरमाइश पर खूब सुर्खियां बटोरी। 28 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात करते हुए शुभांशु ने जो कहा उससे हर भारतीय की आंखें नम कर दी थी। शुभांशु ने तिरंगे के सामने तैरते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, अंतरिक्ष से हमारा भारत सारे जहां से अच्छा ही दिखता है। उन्होंने बताया कि ISS पर उनसे पहले भारत का तिरंगा नहीं था, लेकिन उनके पहुंचते ही वहां भारत की मौजूदगी शान से दर्ज हो गई। यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह 140 करोड़ भारतीयों के सपनों की जीत थी। शुभांशु को उनकी वीरता और इस ऐतिहासिक मिशन के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। आज वे स्कूलों और कॉलेजों में जाकर युवाओं से एक ही बात कहते हैं, सफलता के लिए कोई विरासत जरूरी नहीं है, सिर्फ दृढ़ निश्चय चाहिए। लखनऊ की गलियों से शुरू हुई उनकी ये साइकिल वाली यात्रा आज करोड़ों किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। उनकी जीवनी स्काई वॉज नेवर द लिमिट हर आज उस हर बच्चे के हाथ में है जो पायलट या वैज्ञानिक बनना चाहता है। दोस्तों, आज भारत विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और ऐसे में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जैसे अधिकारी हमारे युवाओं को यह विश्वास दिलाते हैं कि अगर इरादे मजबूत हो तो आसमान भी सीमा नहीं है। उनकी कहानी यह हमें सिखाती है कि सपने तभी पूरे होते हैं जब उनके पीछे अनुशासन, कठिन परिश्रम और देशभक्ति का जुनून है। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहूंगी कि सफल वही होता है जो कठिनाइयों से डरता नहीं है बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना लेता है। दोस्तों, इसी संदेश के साथ चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत जो कि फिल्म संजू का है। इसके गीतकार थे शेखर अस्तित्व, संगीतकार थे विक्रम मॉन्ट्रोस और अपनी आवाज दी थी सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल ने।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: अरे हमारे बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
5: दोस्तों आज के इस सफर के अगले पड़ाव में आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां समय ठहर जाता है, जहां भूतकाल वर्तमान से बात करता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं संग्रहालयों यानी म्यूजियम की। म्यूजियम को अक्सर इतिहास का दर्पण कहा जाता है, लेकिन क्यों, क्या आपने कभी सोचा है? क्योंकि यह सिर्फ पत्थरों, मूर्तियों या पुरानी कागजों का ढेर नहीं है, यह हमारी सभ्यता की धड़कन है। म्यूजियम केवल पुरानी वस्तुओं का भंडार नहीं होता, बल्कि यह हमारी सभ्यता, संस्कृति और इतिहास का जीवंत दर्पण होता है। आइए जानते हैं म्यूजियम क्यों महत्वपूर्ण है और उनका उद्देश्य क्या है। म्यूजियम हमारे इतिहास को सुरक्षित रखने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। पुरानी हथियार, मूर्तियाँ, सिक्के और वस्त्र, ये सभी हमारे अतीत की कहानी कहते हैं। यदि इन्हें सुरक्षित ना रखा जाए तो हमारे आने वाली पीढ़ियां अपने इतिहास से अनजान रह जाएंगी। म्यूजियम विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए ज्ञान का खजाना है। किताबों में पढ़ी गई बातें जब वास्तविक वस्तुओं के रूप में दिखाई देती है तो सीखना अधिक रोचक बन जाता है। दुनिया भर के पर्यटक म्यूजियम देखने आते हैं। इससे देश की संस्कृति का प्रचार होता है और आर्थिक विकास में भी सहायता मिलती है। तो दोस्तों ये थी कुछ म्यूजियम की कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की। चलिए अब इसकी कुछ उद्देश्य को जानते हैं। इतिहासकार, वैज्ञानिक और शोधकर्ता म्यूजियम में रखी वस्तुओं पर अध्ययन करते हैं। इससे नई जानकारियाँ सामने आती हैं और इतिहास को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। म्यूजियम कलाकारों और संस्कृति प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। म्यूजियम लोगों को अतीत की जानकारी देकर शिक्षित करते हैं। म्यूजियम हमें समझाते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे रहते हैं थे, उनकी जीवन शैली कैसे थी और उन्होंने समाज के विकास में क्या योगदान दिया। इन म्यूजियम में जैसे म्यूजियम का नाम आता है, नेशनल म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम, ये सारी म्यूजियम में रखी वस्तुएं भारत के गौरवशाली इतिहास की कहानी सुनाती है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं म्यूजियम केवल वस्तुओं का संग्रह नहीं बल्कि इतिहास का जीवंत दर्पण है। वे हमें हमारे अतीत से जोड़ता है, वर्तमान को समझने में सहायता करता है और भविष्य के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। हमें अपने ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि यही हमारी पहचान और विरासत है। इसी संदेश के साथ चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत जो कि फिल्म निकाह से लिया गया है। इसके गीतकार थे हसन कमाल और संगीतकार थे रवि शंकर शर्मा और अपनी आवाज दी थी महेंद्र कपूर ने।
6: अभी अलविदा मत कहो।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। नौ दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

दोस्तों, अब सफर के इस पड़ाव में हम चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान कभी न कभी असफल जरूर होता है। कभी परीक्षा में हार, कभी नौकरी में निराशा, तो कभी रिश्तों का टूटना, तो कभी अपने सपने

सपनों का अधूरे रह जाने का दर्द। लेकिन क्या असफलता ही अंत है? क्या एक हार हमारे पूरे जीवन का फैसला कर सकती है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। आज के इस सफर के अगले पड़ाव में हम बात करेंगे असफलता से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आत्मविश्वास के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, असफलता शब्द सुनते ही मन में डर सा पैदा हो जाता है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो असफलता कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक शिक्षक है। जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है, लेकिन क्या वह गिरकर बैठ जाता है? नहीं दोस्तों, वह फिर उठता है, फिर चलता है और आखिरकार दौड़ना सीख जाता है। यह जिंदगी है, और अगर गिरना गलत होता तो प्रकृति हमें उठना सिखाती ही नहीं। अक्सर लोग पहली हार के बाद खुद को कमजोर समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनसे कुछ नहीं होगा, लेकिन सच तो यह है कि हर सफल इंसान के पीछे कई असफलताएं छिपी होती हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है आत्मविश्वास। जी हाँ दोस्तों, अगर आत्मविश्वास है तो मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी आसान लगता है, और अगर आत्मविश्वास टूट जाए तो छोटी सी भी परेशानी पहाड़ बन जाती है। याद रखिए, दुनिया आपको तभी तक हरा सकती है जब तक आप खुद से हार नहीं मान लेते। कई लोग दूसरों की बातों से टूट जाते हैं, लेकिन दूसरों की राय आपकी पहचान नहीं होती। आपकी असली पहचान आपका संघर्ष तय करती है। जिस दिन इंसान खुद पर विश्वास करना सीख जाता है, उस दिन से उसकी जीत शुरू हो जाती है। अगर जिंदगी में कभी हार न मिले तो इंसान कभी सीख ही नहीं पाएगा। दोस्तों, आप सोचिए, अगर रात न हो तो सुबह की खूबसूरती कैसे समझ आएगी? इसी तरह असफलता के बिना सफलता की कीमत समझना बहुत ही मुश्किल है। मेरे प्यारे युवा साथियों, आज का समय प्रतियोगिता का समय है। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन इस दौड़ में कई लोग तनाव और निराशा का शिकार हो जाते हैं। याद रखिए, एक परीक्षा, एक नौकरी या एक असफल कोशिश आपके पूरे भविष्य का फैसला नहीं कर सकती। अगर रास्ता बंद लगे तो रास्ता बदलिए। आपके अंदर वो ताकत है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। बस जरूरत है खुद पर भरोसा रखने की। ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है, हार इंसान को संभलना सिखाती है। जो डर जाते हैं मुश्किलों से, मंजिल उनसे दूर हो जाती है। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर सूरज की तरह जलना है तो पहले सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। और इसी संदेश के साथ चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत, जो कि फिल्म इम्तिहान से लिया गया है। इसके गीतकार थे मजरू सुल्तान पूरी, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और अपनी आवाज़ दी थी किशोर कुमार ने।

दोस्तों आपने सुना अभी एक प्यारा सा गीत। अब चलिए आखिर में लेते हैं आज का क्विक डोज। रेलवे भर्ती बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट के 11,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 10वीं और ITI पास युवा 14 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। ताशकंद में खेली गई एशियन अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण सहित कुल 17 पदक देश के नाम किए हैं। और आखिर में जरूरी सूचना, इंडियन आर्मी अग्निवीर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज के सफर में बस इतना ही। मैं हूँ आपकी दोस्त प्रिया, आपसे अनुमति चाहती हूँ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई सोच और नई प्रेरणा के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और खुद पर विश्वास रखिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।

श्रोताओं, ये थी आज की युववाणी। FM 102.4 MHz पर आप हैं आकाशवाणी जमशेदपुर के साथ। शाम के 5:30 हो चुके हैं श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं श्रमिक बंधुओं को संबोधित कार्यक्रम कल कारखाने।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अंशु और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर, जहां हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो न सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि समाज के लिए भी एक नई आशा की किरण है, एड्स वैक्सीन और उसकी खोज के बढ़ते कदम।

श्रोताओं, एड्स एक गंभीर रोग है जो एचआईवी वायरस के कारण होता है। इसका असर हमारे इम्यून सिस्टम पर पड़ता है और अगर इसका सही समय पर इलाज न हो तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, विज्ञान के क्षेत्र में नई खोजें हमेशा एक उम्मीद की तरह चमकती है। एड्स वैक्सीन की खोज भी इसी उम्मीद का एक हिस्सा है। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिकों ने अनेक क्लिनिकल ट्रायल्स और रिसर्च के माध्यम से वैक्सीन की खोज की राह में बड़े कदम उठाए हैं। दोस्तों, वैक्सीन बनाने का प्रोसेस बहुत ही जटिल है। एचआईवी वायरस का स्ट्रक्चर बदलता रहता है और इस वजह से एक परफेक्ट वैक्सीन बनाना कठिन होता है। लेकिन नए टेक्निक्स जैसे mRNA वैक्सीन और ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज हमें इस गोल के और करीब ले जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, ये नए टेक्निक्स हमें न केवल वायरस से लड़ने की शक्ति देती है बल्कि इस बात की भी नई उम्मीद जगाती है कि एक दिन एड्स पर पूर्ण नियंत्रण हो सकेगा। हम सबको ये समझना होगा कि विज्ञान की ये यात्रा लगातार चलती रहेगी और हम एक दिन इस महामारी से मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं।

0: किशोर कुमार की आवाज में अभी आप सौतन फिल्म के इस गीत को सुन रहे थे। गीत लिखा था सावन कुमार ने और संगीत उषा खन्ना का था।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।

0: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
1: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज्ड नमक।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।
4: दोस्तों आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। आज हम जानेंगे कि संग्रहालय क्यों महत्वपूर्ण है और वे हमें अपने अतीत से कैसे जोड़ते हैं। दोस्तों संग्रहालय यानी कि विरासत का घर। संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं का घर नहीं होता श्रोताओं, बल्कि ये हमारी संस्कृति इतिहास और परंपराओं की अमूल्य धरोहर को संजो कर रखने का एक स्थान है। जब कभी आप कभी कोई संग्रहालय जाएं, तो देखेंगे कि वहां आप प्राचीन मूर्तियां पुराने सिक्के ऐतिहासिक दस्तावेज और कई दुर्लभ वस्तुएं रखी गई हैं। आइए आपको बताएं कि संग्रहालय को विरासत का घर क्यों कहा जाता है। दोस्तों संग्रहालय हमारे इतिहास और संस्कृति की पहचान होते हैं। यहाँ रखी वस्तुएं हमें हमारे पूर्वजों के जीवन कला विज्ञान और परंपराओं के बारे में जानकारी देती हैं। इसलिए दोस्तों संग्रहालय को विरासत का घर कहा जाता है। इस विषय पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आती है, वो है कि आज की युवा पीढ़ी को संग्रहालयों से जुड़ना चाहिए या नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब है बिल्कुल, क्योंकि जब हम किताबों में पढ़ा इतिहास अपनी आंखों से देखते हैं तब वह और भी जीवंत हो जाता है। तो आइए हम सभी संग्रहालयों का सम्मान करें, उन्हें देखें और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी संस्कृति से परिचित कराएं।

0: इस चर्चा के बाद आइए श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं भेंटवार्ता। विषय है समुचित स्वास्थ्य हेतु पाचन तंत्र की महत्ता। इस विषय पर जानकारी दे रही हैं डॉक्टर निवेदिता मिश्रा, उनसे बातचीत कर रही हैं हमारी सहयोगी मंजू कुमारी। तो आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता।
1: श्रमिक श्रोताओं, हम अक्सर कई लोगों को ये कहते सुनते हैं कि हमारा खाना ठीक से हजम नहीं होता। कई लोग पेट फूलना, कब्ज, एसिडिटी की शिकायतें करते हैं। तो क्या आप भी पाचन संबंधी समस्याओं से परेशान हैं? तो हमारे आज के कार्यक्रम में हम इस समस्या का समाधान लेकर आए हैं। जी हाँ, आप अपने पाचन तंत्र को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, पाचन संबंधी समस्याओं का कारण, निदान, इन सब पर बात करने के लिए अपने स्टूडियो में आज हमने आमंत्रित किया है शहर की जानी मानी डॉक्टर निवेदिता मिश्रा जी को, जो टाटा मेन हॉस्पिटल में हेड कंसल्टेंट है। डॉक्टर निवेदिता जी, आपका तहे दिल से स्वागत है आकाशवाणी जमशेदपुर के हमारे स्टूडियो में। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: श्रोताओं, वैसे तो आज डॉक्टर निवेदिता समुचित स्वास्थ्य के लिए पाचन तंत्र की महत्ता, इस विषय पर बहुत सारी जानकारियां हमारे साथ साझा करने वाली है। तो शुरुआत में आइए उनसे जानते हैं कि पाचन तंत्र, जिसे हम शरीर का पावर हाउस कहते हैं, इसकी महत्ता आखिर क्या है?
2: पाचन मतलब है डाइजेशन
1: जी,
2: और तंत्र मतलब है अंग।
1: अच्छा,
2: तो शरीर का जिन सब अंग डाइजेशन का काम आता है, अच्छा, उसे हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं
1: जी।
2: तो इसके डिफरेंट डिफरेंट भाग हैं, उसका मुख्य भाग है इंटेस्टाइन बा जठरांत्र मार्ग।
1: अच्छा,
2: जो उसका ओरिजिनल लैंग्वेज। और विभिन्न सहायक अंग हैं, जैसे कि टंग या जिह्वा एंड लार की ग्रंथियां, जो कि सैलिवरी ग्लैंड्स बोल सकते हैं, अग्नाशय या पैनक्रियास, जकृत या लीवर एंड पित्ताशय या गॉल ब्लैडर। और भोजन को क्षुद्र कणों में डाइजेशन करना, ताकि वो शरीर में अवशोषित हो जाए या अब्सॉर्ब हो पाए, यही इसका मुख्य काम है।
1: और वैसे डॉक्टर साहिब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पाचन तंत्र कैसे काम करता है?
2: इसको हम लोग तीन चरणों में विभक्त कर सकते हैं। प्रथम इसको बोलते हैं सेफालिक चरण, जिसमें कि भोजन की दृष्टि या गंध से हम लोग के जठरीय ग्रंथियों से या लार ग्रंथियों से स्राव शुरू हो जाता है।
1: अच्छा।
2: या मुंह के अंदर वो चबाने से उसको मैकेनिकल या यांत्रिक डाइजेशन शुरू हो जाता है, और जो एंजाइम्स निकलते हैं, प्रक्रियाओं उसको बोलते हैं, उसके द्वारा केमिकल

0: डाइजेशन शुरू हो जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेज जो है, सेकंड चरण है जठरीय चरण या फिर इंटेस्टाइन का अंदर। ये खाना और हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम का एक चीज जो स्टोमक से निकलता है उसको मिला के उसको फर्दर आगे डाइजेशन करता है।
1: अच्छा।
0: वहाँ से फिर वो क्षुद्रांत्र में चले जाता है या स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसका पहला भाग जिसको बोलते हैं ग्रहणी या डुओडेनम वहाँ प्रवेश करता है। तो यहाँ तक है जठरीय चरण। और तृतीय चरण या आंतरिक चरण है जो वो ग्रहणी से या डुओडेनम से वो आधा डाइजेस्टेड फूड आगे जाके वो क्षुद्रांत्र और उसके बाद बृहदांत्र में जाता है। वहाँ पे अग्नाशय या पैनक्रियास का एंजाइम्स उसके साथ मिल जाता है खाने के साथ। फिर वो काइम नामक एक पदार्थ में परिवर्तित होता है। फिर आगे चल के जब वो पूरा एब्जॉर्ब होने के लिए रेडी हो जाता है तो उसको काइल बोला जाता है। और ये हम लोग का लिम्फैटिक चैनल या लसिका तंत्र जिसे बोलते हैं धमनी में इसे ये खाद्य के कण सब अवशोषित हो जाता है।
1: अच्छा।
0: तो इसी तरह इसका काम पूरा होता है।
1: अब आगे बढ़ते हैं और आपसे ये जानेंगे कि पाचन तंत्र में अगर किसी तरह की गड़बड़ी हो तो किस तरह की समस्याएं हो सकती है, इससे जुड़ी आम समस्याएं क्या है।
0: इसमें सबसे साधारण समस्या जो कॉमनली सब लोग बोलते हैं गैस।
1: अच्छा।
0: लोग बोलते हैं अथवा एसिडिटी होना। इसका बहुत सारे कारण हो सकता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस, जिसमें पेट से एसिड वापस खाने के नली में आ जाता है और इसके चलते सूजन और दर्द का कारण बन जाता है। या तो हाइपर एसिडिटी के चलते हो सकता है, जिसमें एसिड का मात्रा पेट में अधिक बन जाता है, उसमें भी जलन महसूस हो सकती है।
1: अच्छा।
0: कभी कभी स्टोमक और डुओडेनम में छोटे छोटे अल्सर्स हो जाते हैं, जिसमें कि क्षुद्रांत्र में एसिड के वजह से हो, चाहे खाने पीने का अनियमितता या फिर कोई पेन किलर दवाई दर्द निवारक गोली खाने का आदत हो गया हो, तो इस वजह से घाव बन जाते हैं और उसमें दर्द या कभी कभी खून का उल्टी भी करा सकते। और नहीं तो जिसको गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं, उसमें गैस, कभी एसिड, कभी खाने का कुछ कण आ जाता है, वापस खाद्य का नली में आ जाता है।
1: अच्छा।
0: ये सबसे कॉमन तरीका है पाचन तंत्र का एबनॉर्मेलिटी का।
1: अच्छा।
0: और बाकी दूसरे कॉमन चीज है जो गॉलस्टोन या पित्त के पथरी। इसमें जो हम लोग का पित्त जहाँ जमा संचय करके रहता है, संचय होके पित्ताशय या गॉल ब्लैडर, वहाँ पे छोटे छोटे कोलेस्ट्रॉल के चलते या दूसरे चीजों में बना हुआ स्टोन पत्थर बन जाते हैं।
1: अच्छा।
0: यूजुअली ये देखा जाता है थोड़े मोटे शरीर के इंसान को, 30-40 से के आसपास उम्र हो, जिन लोग बच्चों की माँ, जैसे स्त्रियों में ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है।
1: अच्छा।
0: बच्चों के माँ जिन लोग होते हैं, तो इसमें बोला जाता है कि 4F फैट 40 फर्टाइल फीमेल, ये सब में। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि हर उम्र का और हर तरह का इंसान में कभी भी गॉल ब्लडर स्टोन पकड़ा जा। और दूसरा कॉमन चीज है दस्त या डायरिया, ये सब कोई जानते हैं, जैसे बाहर के खाने से जिसमें सफाई का ध्यान ना रखा गया हो, वो सब खाने से इन्फेक्शन के चलते पेट में बैक्टीरिया या वायरस जाने से उसमें लूज मोशन, बच्चों में बहुत ही ज्यादा कॉमन है, बड़ों में भी स्पेशली गर्मी के मौसम में ये होता है। और कुछ कॉमन में है जैसे इन्फ्लामेटरी बाइल डिजीज बोलते हैं उसको, IBD, जिसमें कि क्षुद्रांत्र या बृहदांत्र ये दोनों में घाव और सूजन होना ये सब का कारण बनता है। इरिटेबल बाइल सिंड्रोम, ये भी एक बहुत कॉमन बीमारी है। और उसे भी कॉमन है कब्ज या कॉन्स्टिपेशन। ये लोग कम फाइबर युक्त खाद्य खाते हैं, जिनका लाइफस्टाइल बहुत सुस्त किस्म की है, एक्टिव नहीं रहते हैं, या फिर उम्र ज़्यादा हो गया, उन लोग को कॉन्स्टिपेशन की बीमारी बहुत कॉमन है। और प्लस पैखाना के रास्ते में जैसे पाइल्स, बवासीर।
1: अच्छा।
0: या फिशर, ये सब भी उसी पाचन तंत्र का एक भाग का बीमारी को
1: पाचन
0: बोल
1: तंत्र
0: सकते
1: अगर खराब हो तो उसे ये सारी समस्या भी होती है, बवासीर जैसी समस्याएं भी जन्म ले सकती है। आपसे जानना चाहेंगे कि किन लोगों में ज्यादातर पाचन की समस्याएं देखने को मिलती है।
0: ये जैसे कि खाने पीने के तरीका सही होना चाहिए, नियमित समय से जो खा नहीं पाते हैं, या बाहर के खाना ज्यादा खाना पड़ता है।
1: अच्छा निवेदिता जी, अब आपसे ये जानेंगे कि पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने की संजीवनी आखिर क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग समस्याओं से जूझ तो रहे हैं लेकिन उसे ठीक कैसे कर सकते हैं, ठीक होना भी चाहते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए वो ये चीज नहीं जानते हैं। तो इसके बारे में जरा हमारे श्रमिक श्रोताओं को बताइए, क्योंकि हमारे श्रमिक श्रोता जो है अक्सर अपने खान पान पर ध्यान नहीं दे पाते, उनके पास वक्त नहीं होता है, तो आप इनके बारे में जरा हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: ये कमजोर पाचन को मजबूत बनाने के लिए, जैसे जिसमें फाइबर ज्यादा हो, जैसे कि साबुत अनाज, जिसको होल सीरियल्स बोलते हैं, जैसा गेहूं हुआ, चावल, लाल किस्म का चावल जो अच्छा। मील का बार बार साफ किया हुआ चावल नहीं, लेकिन जो गांव से लेके आते हैं लोग, उसमें फाइबर रहता है
1: अच्छा।
0: और आटा जैसे जौ, बाजरा, मिलेट, ये सब चीज की आटा में ज्यादा मतलब आपका पाचन सही रहेगा
1: अच्छा।
0: और फलियां ज्यादा लेना चाहिए, जिसे लेग्यूम्स या बीन्स बोलते हैं, जैसे राजमा हुआ, फ्रेंच
1: अच्छा।
0: बीन्स हुआ, ये सब लेने से भी पेट आपका साफ रहेगा। फल ज्यादा ले सकते हैं जिसमें फाइबर ज्यादा है, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, ये सब लेना बहुत जरूरी है, तब आपका अंत्र सब ठीक से काम करेंगे। और कभी भी हम लोग जैसा वसा युक्त आहार लेंगे तो हम लोग का पाचन धीमा हो जाता है
1: अच्छा।
0: तो इसलिए वसा युक्त खाना खाने से, उसके साथ फाइबर युक्त आहार लेने से उसका उतना नुकसानदेह नहीं होगा
1: जी।
0: उसके बाद हम लोग प्रोबायोटिक युक्त खाद्य, प्रोबायोटिक है कि बैक्टीरिया है जो हम लोग का शरीर के लिए लाभदायक बैक्टीरिया
1: अच्छा।
0: ये हमें बहुत हेल्प करती है। खाने का चीज जैसे दही हुआ, अंकुरित चना, ये सबको जैसे हम लोग रात भर बाहर जिसको रखते हैं और सुबह खाते हैं, उसमें कोई लाभदायक बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है, जैसे
1: अच्छा।
0: लैक्टोबैसिलस वगैरह, और वो हम लोग का शरीर को, इंटेस्टाइन को लाभ पहुंचाता है। लेकिन यही है कि ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा समय या बहुत गर्मी में रखने से इसमें फिर हार्मफुल बैक्टीरिया भी पैदा होने का डर रहता है, उसे केयरफुली लेना पड़ेगा। और उसको पाचन तंत्र को सही रखने के लिए जरूरी है कि निश्चित समय पर भोजन करना चाहिए, जैसे सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर शाम को चाय या कोई हल्का फुल्का नाश्ता, फिर रात को डिनर, ये सब आसपास एक फिक्स समय में ही करना चाहिए, ताकि हम लोग का बॉडी के जो बायोलॉजिकल क्लॉक जिसको बोलते हैं, शरीर के अंदर भी एक घड़ी जैसे रहता है, जिसको एक आदत पड़ता है कि इसी समय ये खाना आएगा, उसको हमको पचाना है।
1: अक्सर लोग ये सारी चीजों को हल्के में लेते हैं कि क्या है, छोड़ो हम बाद में भी खा लेंगे, लेकिन यही सारी चीजें नुकसान पहुंचाती है इंसान।
0: पाचन करने में, कब्ज अवॉइड करने में, ये सब बहुत जरूरी है। फिर उचित मात्रा से पानी भी जरूरी है, कब्ज अवॉइड करने के लिए वो बहुत जरूरी है कि पानी सफिशियंट होना चाहिए, और कोई भी नशे से दूर रहना चाहिए, जैसे शराब, धूम्रपान और बहुत ज्यादा कैफीन, कॉफी या चाय, खाली पेट में चाय पीना, कॉफी पीना, ये सब भी हम लोग को पाचन तंत्र को गड़बड़ कर देता है,
1: दूर ही रहना चाहिए।
0: और नियमित रूप से व्यायाम भी इसको बहुत फायदा पहुंचाता है, शरीर के सभी अंग, केवल पाचन नहीं, सभी अंग के लिए सही रहता है, और वजन भी कंट्रोल में रहता है। और लास्ट में है कि कोई भी तरह का मानसिक तनाव रहने से भी हम लोग का पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करेगा, इसलिए तनाव से हम लोग को दूर रहना है। इसके लिए हम लोग को जो चाहिए, इसलिए व्यायाम भी उसमें आपको तनाव दूर करने में मदद करेगा। उसको छोड़ के आप लोग को जो भी श्वास का एक्सरसाइज कर सकते हैं, अनुलोम विलोम जैसा एक्सरसाइज
1: अच्छा।
0: या फिर मेडिटेशन, ये सब में जा सकते हैं, लेकिन तनाव से दूर नहीं रहने से हम लोग का पाचन भी सही नहीं होगा
1: जी। निवेदिता मिश्रा जी, अब अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे, आपको ये कहना चाहेंगे कि पाचन तंत्र को तंदुरुस्त रखने के लिए आप हमारे श्रमिक श्रोताओं को क्या टिप्स देना चाहेंगी?
0: अपना जीवन शैली सही रखें
1: जी।
0: कभी कभार एक कोई पार्टी अटेंड कर लिए उसमें कोई बात नहीं, लेकिन जो साधारण घर का खाना, हेल्दी खाना, उसको नियमित समय पर खाएं, नशे से दूर रहें, अपना तनाव को कंट्रोल में रखें या तनाव से दूर रहें, तो जरूर सबका पाचन तंत्र सही रहेगा
1: जी। डॉक्टर निवेदिता मिश्रा हमारे स्टूडियो में आने के लिए और समुचित स्वास्थ्य के लिए पाचन तंत्र की महत्ता, इस विषय पर इतनी अहम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: समुचित स्वास्थ्य हेतु पाचन तंत्र की महत्ता, इस विषय पर हमारे श्रोता जानकारी ले रहे थे डॉक्टर निवेदिता मिश्रा से।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी, आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: श्रोता साथियों, अगर आप अपना छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या मौजूदा कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपके लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकती है। इस योजना के तहत बिना गारंटी के व्यवसाय ऋण दिया जाता है, जिससे छोटे उद्यमियों, दुकानदारों, महिलाओं, युवाओं और स्टार्टअप्स को आर्थिक सहायता मिलती है। श्रोताओं, मुद्रा योजना की मुख्य श्रेणियां के अंतर्गत पहली है शिशु, जिसमें आपको 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। दूसरी श्रेणी है किशोर, जिसके अंतर्गत 50,000 से 5,00,000 रुपये तक का लोन देने का प्रावधान है। तीसरी श्रेणी आती है तरुण, जहां 5,00,000 से 10,00,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। श्रोताओं, योग्य उद्यमियों के लिए तरुण प्लस के तहत 10,00,000 से 20,00,000 तक का लोन दिए जाने का भी प्रावधान है।

महेंद्र कपूर की आवाज में अभी आप बहारें फिर भी आएंगे इस फिल्म का गीत सुन रहे थे। गीत लिखा था कैफी आजमी ने और संगीत ओपी नैयर का था। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ अब यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। दीजिए अनुमति अंशु को नमस्कार।

2.4 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 6 बजने ही वाले हैं श्रोताओं। कुछ ही क्षणों में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गौर स्टोर ने ओस्लो में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत नॉर्वे संबंधों को हरित रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जो स्वच्छ ऊर्जा, नीली अर्थव्यवस्था और हरित परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: भारत और नॉर्वे की ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए लाभदायक होगा। नॉर्वे आज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ रहा है। दो बड़े मैरिटाइम देश होने के नाते हम साथ मिलकर मरीन इकोनॉमी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग में सहयोग को मजबूत करेंगे।
0: वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, चक्रीय अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष और आर्किटेक्ट क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने भारत EFTA व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते से उत्पन्न होने वाली विशाल अवसरों, विशेष रूप से व्यापार, प्रौद्योगिकी सहयोग और रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी प्रकाश डाला। वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे को धन्यवाद दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे। वे आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस दौरान सामरिक सहयोग बढ़ाने, रक्षा औद्योगिक साझेदारी मजबूत करने, समुद्री सहयोग सुदृढ़ करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। विदेश मंत्रालय खाड़ी के अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास 2400 घंटे हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने अमेरिका के साथ बातचीत करने के अपने निर्णय को उचित ठहराया है और कहा है कि कूटनीति में गरिमा जरूरी है, लेकिन ईरान अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम के भंडारों, प्रतिबंधों में राहत और पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के लिए क्षतिपूर्ति को लेकर बातचीत में गतिरोध रहते हुए ईरान को नई चेतावनी जारी की है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में CBI ने 5 जगहों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। अब तक की जांच में परीक्षा से जारी हुए रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न पत्रों के वास्तविक स्रोत का पता चला है। प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच करने वाले आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के दौरान महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच करने वाले आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद

जीत दर्ज कर प्लेऑफ के और करीब आना चाहेगा, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष चार में प्रवेश करने की होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: said over 200 lakh metric tons of fertilizers are available across the country, and there has been no change in fertilizer prices for the Kharif season. And that is the end of this news bulletin.
1: समाचारों का प्रसारण हुआ आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से FM 102.4 MHz पर. श्रोताओं, आप हैं आकाशवाणी जमशेदपुर के साथ. शाम के 6:10 हो रहे हैं. आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम झारखंड के लोग.

इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। श्रोताओं, लोकगीतों में माटी की सौंधी महक होती है और उनका मधुर संगीत मन को मोह लेता है। इसी कड़ी में आइए सुनते हैं आज नागपुरी लोकगीत। कलाकार हैं दीना सिंह।

श्रोता आनंद ले रहे हैं लोकगीतों का। आज श्रोता सुन रहे हैं नागपुरी लोकगीत। कलाकार हैं दीना सिंह।

थे दीना सिंह। इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। झारखंड के लोकगीत ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी जमशेदपुर है। अगला प्रसारण होगा दिल्ली केंद्र से। संस्कृत में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे च ओस्लो नगरे प्रतिबंधित प्रतिनिधि स्तरीय वार्तालापं कृतवन्तौ। कांग्रेस नेता वी डी सतीशनः अद्य प्रातः तिरुवनन्तपुरम नगरस्य केन्द्रीय क्रीडांगणे आयोजिते भव्य समारोहे केरलम राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री रूपेण शपथवचनं स्वीकृतवान्। पश्चिमबंग सर्वकारेण स्वस्य निर्वाचनस्य प्रतिज्ञानुसारं कथित संस्थागत भ्रष्टाचारस्य महिला विरुद्धम् अत्याचारस्य च अन्वेषणार्थं द्वौ अन्वेषणायोगौ निर्मितौ। स्वास्थ्य परामर्शपत्रे उष्णतरंगस्य स्थितिं निवारयितुं आयुर्वेदादि विविध आयुष प्रणाल्याः पारंपरिक स्वास्थ्य निवारक उपायाः अपि समाविष्टाः सन्ति। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स दलं एम ए चिदंबरम क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे च ओस्लो नगरे प्रतिबंधित प्रतिनिधि स्तरीय वार्तालापं कृतवन्तौ। स्वक्षोर्जायाः नील अर्थव्यवस्थायाः हरित संक्रमणस्य च क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं महत्वपूर्णं सोपानं लक्ष्यीकृत्य भारत नॉर्वे सम्बन्धं हरित सामरिक सहभागित्वं प्रति उन्नतीकर्तुं उभावपि नेतारौ सहमतौ अभवताम्।
1: आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
0: वार्तालापावधौ उभौ नेतारौ द्विपाक्षिक सम्बन्धानां सम्पूर्ण क्षेत्रस्य समीक्षाम् अकुरुताम्।
1: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य स्वीडन देशस्य द्विदिवसीया यात्रा समापिता। स्वीडन देशस्य प्रवासे अनेकानि महत्वपूर्णानि परिणामानि प्राप्तानि, येन द्वैपाक्षिक सम्बन्धेषु नूतना गतिः प्राप्ता इति श्रीमोदिना सामाजिकान्तर्जालीय पटले उक्तम्। सः अवदत् यत् तेषां द्वैपाक्षिक उपबन्धान् व्यूहात्मक सहभागित्वं प्रति उन्नतीकरणात् आरभ्य संयुक्त नवान्वेषण सहभागित्वम् इत्यस्य द्वितीयो भागः अथ भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी कृत्रिमबुद्धिमत्ता मार्गस्य आरम्भात् आरभ्य आगामिषु पञ्चवर्षेषु द्वैपाक्षिक व्यापारं द्विगुणीकरणस्य लक्ष्यम् अभवदिति। सः स्वीडन देशस्य जनेभ्यः स्वीडन देशस्य सर्वकाराय प्रधानमन्त्री उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यस्मै च स्नेहाभिवर्षणाय धन्यवादभावान् प्रायच्छत्। अग्रिमेषु पञ्चवर्षेषु द्वैपाक्षिक आर्थिक विनिमयं द्विगुणीकर्तुं मेक इन इंडिया, मेड विद स्वीडन इत्येतयोश्च उपक्रमयोः विशेषतः हरित हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर्स, उन्नत विनिर्माणम् इत्यादिषु क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढीकर्तुं समग्र मार्गचित्रस्य लक्ष्यम् अस्ति इति सः प्रावोचत्। कांग्रेस दलस्य वी डी सतीशनः अद्य प्रातः तिरुवनन्तपुरम नगरस्य केन्द्रीय क्रीडांगणे आयोजिते भव्य समारोहे केरलम राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री रूपेण शपथवचनं स्वीकृतवान्। राज्यपालः राजेन्द्रन विश्वनाथ आर्लेकरः श्री सतीशनं पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं कारितवान्। मुख्यमंत्रिणा सह 21 सदस्याः मंत्रिपरिषदः कार्यभारं स्वीकृतवन्तः। अस्मिन् कार्यक्रमे कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड्गे, कांग्रेस दलस्य नेता राहुल गांधी, कर्नाटकस्य मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, तेलंगाना राज्यस्य मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी।

0: अरुणाचलप्रदेशस्य मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, केरलस्य भाजपा पक्षस्य राज्याध्यक्षः राजीव चंद्रशेखरादयः नेतारः उपस्थिताः आसन्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। पश्चिमबङ्गसर्वकारेण स्वस्य निर्वाचनस्य प्रतिज्ञानुसारं कथितसंस्थागत भ्रष्टाचारस्य, महिलाविरुद्धम् अत्याचारस्य च अन्वेषणार्थं द्वौ अन्वेषण आयोगौ निर्मितौ। मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी अद्य राज्यमंत्रिमण्डलस्य अनुमोदनानन्तरं अस्य निर्णयस्य घोषणां कृतवान्। केन्द्रीय गृहसहकारिता च मंत्री अमितशाह अद्य रायपुरे राज्यस्तरीय कार्यक्रमे अत्याधुनिक डायल 112 इति आपत्कालीन प्रतिक्रिया वाहनानां, आधुनिक फोरेंसिक मोबाइल यानानां च ध्वज प्रदर्शन पूर्वकं शुभारंभं विहितवान्। राज्यस्य विभिन्नेषु मण्डलेषु नियोजनार्थं अद्य आहत्य 400 नूतनोन्नतापत्कालिक वाहनानि लोकार्पितम्। अस्मिन् अवसरे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, छत्तीसगढ़ विधानसभाध्यक्ष रमण सिंहश्च उपस्थिताः आसन्। सर्वकारः अवदत् यत् देशे तैलेन्धन शोधनागाराणि सामान्य रूपेण कार्यं कुर्वन्ति। भारते च वर्तमानिक पश्चिम एशिया संकटेन आयात बाधायाः अनन्तरम् अपि पर्याप्तानि अशोधित तैलेन्धन भण्डाराणि सन्ति इति। पश्चिम एशियायाः साम्प्रतिक स्थिति विषये अद्य नवदिल्ली नगरे अन्तर्मन्त्रालयीयं विवरणं प्रायच्छन् पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिव पदासीना सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् देशे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, प्राकृतिक गैस इत्येतेषां पर्याप्त भण्डारम् अस्ति इति।
1: हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज है, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर या रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट नहीं है, लेकिन कई जगह पर अफवाहों के चलते पैनिक बाइंग देखी जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि जो बल्क सेल था वो पंप सेल पर भी शिफ्ट हो रहा है।
0: आयुष मन्त्रालयः अद्य वर्तमान ग्रीष्मकालाय अत्यधिक उष्णतायाः सह उष्णतरङ्गस्य च विषये विस्तृतं सार्वजनिक स्वास्थ्य परामर्शं प्राकर्षयत्। परामर्शत्वेन मन्त्रालयेन उक्तं यत् पर्याप्ततया जलग्रहणं, व्यस्ततायाम् अपि सूर्यप्रकाशस्य प्रत्यक्ष संसर्गात् निवारणं, विद्युत्श्लेष्यै समृद्धानां ऋतुकालिक फलानां द्रवाणां च सेवनं करणीयमिति प्राकर्षयन्। स्वास्थ्य परामर्श पत्रे उष्णतरङ्गस्य स्थितिं निवारयितुम् आयुर्वेद, सिद्ध, योग, यूनानी, होमियोपैथी इत्यादीनां विविध आयुष प्रणाल्याः पारंपरिक स्वास्थ्य निवारक उपायाः अपि समाविष्टाः सन्ति। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अवदत् यत् वैश्विक समस्याभिः सह अनिश्चिततासु अपि भारतं द्रुतगत्या प्रगतिं कुर्वदस्ति। अद्य नवदिल्ल्यां भारत व्यापार महोत्सवस्य अन्तर्जालीय पटलस्य उद्घाटने श्रीगोयलः अग्रे गन्तुम् उत्साहः कदापि न न्यूनीभवति तथा च सर्वे अविरामं कार्यं कुर्वन्तु इति उक्तवान्।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से देवी सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच। और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा स्विट्जरलैंड देशस्य जिनोवा नगरे आयोजिते 79वें विश्व स्वास्थ्य सभायाः अनन्तरं विश्व स्वास्थ्य संगठनस्य महानिदेशकेन सह मिलितवान्। सामाजिक पटले स्वास्थ्य मंत्रालयेन उक्तं यत् श्री नड्डाः पुनः दृढीकृतवान् यत् वैश्विक स्वास्थ्य समता परिवर्तयितुं भारतस्य प्रतिबद्धता अस्ति इति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अद्य वियतनाम, दक्षिण कोरिया देशयोः यात्रायाम् अस्ति। सः वियतनाम देशस्य हनोई इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। वियतनाम देशस्य प्रवासावधौ राजनाथ सिंह वियतनाम देशस्य राष्ट्रीय रक्षामन्त्रिणा जनरल फॉन वॉन जियांग इत्यनेन सह द्वैपाक्षिकं वार्तालापं करिष्यति। सामाजिक अंतर्जालीय पटले मंत्री अवदत् यत् सः द्वैपाक्षिक सम्बन्धानां व्याप्तिम् अधिकं विस्तारयितुम् उभयोः देशयोः भ्रमणार्थम् उत्सुकः अस्ति इति सः अवदत् यत् सामरिक सैन्य सहयोगस्य गहनता रक्षा औद्योगिक सहभागित्वस्य सुदृढीकरणं समुद्रीय सहयोगस्य संवर्धनार्थं भारत प्रशान्त क्षेत्रे शान्तेः स्थिरतायाः च प्रोत्साहनम् अस्य केन्द्रबिन्दुः भविष्यति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां अद्य आतिथेय चेन्नई सुपर किंग्स दलम एमए चिदंबरम क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलम सम्मुखी करिष्यति। क्रीडायाः आरंभः सायं सार्ध सप्तवादने भविष्यति इति वार्ताः।
3: आज आप सुन रहे थे प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हुआ FM 102.4 MHz पर। श्रोताओं आप हैं आकाशवाणी जमशेदपुर के साथ। शाम के ठीक 6:30 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं किसान भाई बहनों के लिए कार्यक्रम कृषि जगत।

श्रोता मित्रों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चर्चा से। चर्चा का विषय है भारत में गुड़ सेक्टर उत्पादन महत्व एवं आजीविका के संबंध में। जी हां, भारत वैश्विक गुड़ उत्पादन का 70% से अधिक हिस्सा पैदा करता है। देश में उत्पादित कुल गन्ने का लगभग 20 से 30% गुड़ बनाने में उपयोग होता है। यह पारंपरिक उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम पूंजी निवेश के साथ 25 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और आजीविका प्रदान करता है। गुड़ निर्माण मुख्य रूप से ग्रामीण और विकेंद्रित क्षेत्रों में संचालित होता है, जहां लाखों किसान, मजदूर और उनके परिवार गन्ने की पिराई और गुड़ उत्पादन से आय कमाते हैं। गुड़ इकाइयों में गन्ने के रस के बाद बची खोई का उपयोग भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है, जिससे यह इकाइयां ऊर्जा और लागत के मामले में आत्मनिर्भर होती है। भारत विश्व में गुड़ का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। प्राकृतिक और बिना केमिकल वाले मीठे की अंतर्राष्ट्रीय मांग बढ़ने से भारत के गुड़ निर्यात में भारी उछाल आया है। भारत से इंडोनेशिया, अमेरिका, यूएई, नाइजीरिया और नेपाल जैसे देशों में गुड़ का निर्यात किया जाता है। किसान अब सादे गुड़ के अलावा गिलोय, अजवाइन, तुलसी, काजू और अदरक जैसे औषधि और मूल्य वर्धित उत्पाद भी बना रहे हैं, जिससे उनकी आय कई गुना बढ़ गई है। परिष्कृत चीनी के विपरीत गुड़ में कोई केमिकल ब्लीचिंग नहीं होती। इसे औषधीय चीनी भी कहा जाता है। इसमें आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और पोटाशियम जैसे खनिज और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। श्रोता मित्रों, हम आपको बता दें, भारत सरकार इस पारंपरिक उद्योग को आधुनिक रूप देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का औपचारिकीकरण योजना, एक जिला एक उत्पाद के तहत क्लस्टर आधारित विकास। श्रोता मित्रों, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी आधुनिक सेमी ऑटोमेटिक गुड़ प्लांट लगाने पर सरकार द्वारा भारी अनुदान भी दिया जा रहा है। गुड़ उत्पादन केवल एक कृषि गतिविधि नहीं, बल्कि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ और स्वास्थ्य का एक प्रमुख स्तंभ है।

0: ग्रामीण श्रोता मित्रों, और अब बात जी राम जी से विकसित होगी ग्रामीण अवसंरचना के संबंध में। जी हां, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत ग्रामीण अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए मनरेगा के स्थान पर 125 दिनों की गारंटीकृत रोजगार योजना शुरू की गई है। यह चार प्रमुख क्षेत्रों जल सुरक्षा, ग्रामीण कनेक्टिविटी, आजीविका और आपदा प्रबंधन के तहत संपत्ति निर्माण को बढ़ावा देकर गांवों को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने पर केंद्रित है। मनरेगा की तुलना में 25 दिन अधिक यानी 125 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार मिलेगा, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ेगी। योजना का ध्यान केवल मजदूरी पर नहीं बल्कि गांवों में स्थायी संपत्ति के निर्माण पर है। जल संचयन, बाढ़ जल निकासी और भूजल रिचार्ज मुख्य फोकस क्षेत्र है। ग्रामीण सड़कें और कनेक्टिविटी, भंडारण, बाजार और उत्पादन संपत्ति, आपदाओं से निपटने के लिए सुरक्षित ढांचा भी इसके केंद्र है। ग्राम सभाएं खुद तय करेंगी कि उन्हें गांव में किस तरह की विकास योजना चाहिए। कामगारों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति, AI आधारित धोखाधड़ी का पता लगाना और काम की GPS ट्रैकिंग भी की जाएगी। यह योजना विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए लाई गई है। श्रोता मित्रों, और अब कार्यक्रम के बीच में थोड़ा लोकगीत का आनंद ले लेते हैं। जी हां, सोमराय तिर्की और साथियों की आवाज में सुनते हैं उरांव लोकगीत।
1: Yeah, hey.

ग्रामीण श्रोता मित्रों, सोमराय तिर्की और साथियों की आवाज में अभी आप सुन रहे थे उरांव लोकगीत। और अब एक नजर चर्चा पर। जी हाँ, बात करते हैं इस समय मृदा की जांच के संबंध में। जी हाँ, मृदा की जांच का सबसे सही समय रवि फसल की कटाई के बाद और खरीफ फसल की बुआई से पहले का होता है। हालांकि आप इसे वर्ष में कभी भी करवा सकते हैं। हर 3 से 5 साल में अपनी मिट्टी का परीक्षण अवश्य कराएं ताकि खेत की उर्वरता और पोषक तत्वों की सही जानकारी मिल सके। इससे मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की मात्रा का पता चलता है, जिससे केवल आवश्यक उर्वरक ही डाले जाते हैं। उचित मात्रा में खाद डालने से फसल की गुणवत्ता और उपज दोनों बढ़ती है। अनावश्यक उर्वरकों पर होने वाले खर्च में कमी भी आती है। मिट्टी को बंजर या ऊसर होने से बचाया जा सकता है। श्रोता मित्रों, नमूना लेने की अगर हम बात करें तो खेत के अलग अलग 5 से 6 स्थानों से मिट्टी ले। उस जगह की ऊपरी सतह की सूखी घास फूस और कंकड़ साफ कर दे। खुरपी या फावड़े से अंग्रेजी के वी आकार का 6 इंच गहरा गड्ढा खोदे। गड्ढे की एक तरफ से ऊपर से नीचे तक की मिट्टी की एक समान परत खुरच कर निकाल ले। सभी जगहों से इकट्ठी की गई मिट्टी को एक साफ पॉलिथीन या बाल्टी में अच्छी तरह मिला ले। इस मिट्टी को छाया में सुखाएं, धूप में ना सुखाएं। और आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या राज्य कृषि विभाग की प्रयोगशाला में मिट्टी का नमूना जांच के लिए भेज सकते हैं।

और श्रोता मित्रों, अब रुख करते हैं भेंटवार्ता की। और जी हाँ, बाय ध्वनि अंकन पर आधारित भेंटवार्ता का प्रथम प्रसारण अभी सुनते हैं, जो कि विश्व एड्स वैक्सीन दिवस पर आधारित है। जी हाँ, विषय है

0: एड्स वैक्सीन संभावित भविष्य, इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर रामचंद्र सिंह, जो कि परसूडी स्थित सदर अस्पताल में काउंसलर आईसीटीसी के पद पर पदस्थापित हैं, और इनसे बातें कर रहे हैं राजेश कुमार। तो चलिए सुनते हैं।
1: श्रोताओं, आज है विश्व एड्स टीकाकरण दिवस, या फिर हम यूं कहें कि एचआईवी वैक्सीनेशन डे। ये है क्या और एड्स को कंट्रोल करने के लिए ये कहां तक कारगर सिद्ध हो रहा है, इन सारी बातों को बताने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रामचंद्र सिंह, जो काउंसलर हैं आईसीटीसी सदर हॉस्पिटल जमशेदपुर के। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप प्रकाश डालिए कि विश्व एड्स वैक्सीनेशन डे जो है वो क्या है।
2: मैं सबसे पहले इसमें ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये बिल क्लिंटन फाउंडेशन की तरफ से एचआईवी वैक्सीनेशन के ऊपर रिसर्च चल रहा है, परंतु अभी तक खास करके हमारे भारत में अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन अभी हम लोग इसको प्रेप पोस्ट एक्सपोजर प्रोफ्लैक्सिस, सरकार ने इस पर रिसर्च किया है, पर यह अभी हम लोगों के यहाँ लागू, सरकार के द्वारा लागू नहीं हो पाया है। पर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफ्लैक्सिस के तौर पर हम लोग एआरटी के माध्यम से दवा उपलब्ध करा रहे हैं।
1: ये दोनों है क्या, क्या अंतर है दोनों में?
2: प्रेप जो होता है कि, यानी कहने का मतलब, आदमी इससे पोस्ट एक्सपोजर अगर मेडिसिन पहले से ले लेता है तो वो काफी हाईली, यानी इन्फेक्शन होने की संभावना कम होती है, तथा पोस्ट एक्सपोजर अगर मान लीजिए किसी के साथ संक्रमित हो गए हैं, कोई ऐसा, जैसे हम लोग एग्जांपल देते हैं निडल स्टिक इंजरी का हुआ, तो उस परिस्थिति में चाहे कोई एट रिस्क में पता नहीं था, किसी कारण से एक्सपोज हो गए हैं, तो उसको हम लोग पेप देते हैं, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफ्लैक्सिस।
1: ये फायदेमंद होता है काफी हद तक?
2: हाँ, ये हम लोगों का अभी तक जितने भी देखा गया है क्लाइंट के ऊपर, काफी हद तक यह सक्सेस रहा है।
1: अगर मान लीजिए कोई एचआईवी संक्रमित व्यक्ति है तो वो आपके सेंटर पर आके क्या क्या सुविधा आपके यहाँ उपलब्ध है?
2: एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को हम लोग एआरटी से मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं, जो हमारे एमजीएम में अवस्थित है, और एचआईवी संक्रमित मरीज को सरकार के द्वारा कल्याण विभाग से उनको मासिक पेंशन 1000 रुपये का दिया जाता है। इसके अलावा उनको प्रिवेंशन एक्ट, स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन एक्ट 2017 भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया है, अगर कहूँ उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, और तो उसको हम लोग रोकने का काम करते हैं। हमारे जो जिला के सिविल सर्जन महोदय हैं, वो हमारे कंप्लेंट अफसर हैं, और उनके पास अगर लिखित आवेदन देते हैं तो फिर उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं, उनके यानी कि अधिकारों की सुरक्षा के लिए हम लोग तत्पर हैं।
1: अगर कोई व्यक्ति एचआईवी संक्रमित है तो क्या उसके बच्चे को होने की संभावना रहती है? अगर कुछ शक होता है तो क्या जांच की सुविधा यहाँ उपलब्ध है?
2: हाँ, अगर एचआईवी संक्रमित माँ है तो उसके बच्चे को हम लोग लगभग पूरी तरह बचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बच्चे का, अगर माँ एचआईवी संक्रमित है तो उस परिस्थिति में उनको हम लोग एआरटी मेडिसिन उपलब्ध कराते हैं, और उससे क्या है, उनका वायरल लोड काफ़ी कम हो जाता है। बच्चे का जन्म होता है उसके ठीक 72 घंटे के अंदर, हम लोगों का एज ए नैको गाइडलाइंस है कि उसको प्रोफ्लैक्सिस के तौर पर मेडिसिन उपलब्ध कराते हैं, जो हमारे यहाँ भी उपलब्ध है, चाहे हर जहाँ आईसीटीसी है वहाँ पर यह उपलब्ध है। फिर बच्चे का हम लोग टेस्ट करते हैं, 18 महीने तक बच्चे हम लोगों की निगरानी में रहता है, और इसका रेशियो झारखंड में बहुत अच्छा है।
1: एचआईवी संक्रमित लोगों के लिए क्या बचाव हो सकता है, या फिर अपने अपने जीवन को, अपने लाइफ, जो लाइफ स्टाइल है वो किस तरह से जिए वो, ताकि वो उन्हें और ज़्यादा तकलीफ का सामना न करना पड़े?
2: सबसे पहले एचआईवी संक्रमित मरीज को मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि वो अगर एआरटी मेडिसिन ले रहे हैं तो एक दिन भी ना छोड़ें, क्योंकि अगर दवाई छोड़ते हैं तो उससे उनका वायरल लोड वो बढ़ नहीं है, एचआईवी का उसका वायरल लोड जो होता है काफ़ी बढ़ जाता है, फिर उसमें तरह तरह की संक्रमण होने की संभावना रहती है। अगर मेडिसिन लेते हैं तो उनका वायरल लोड सरफेस रहता है, जिसके कारण वो अपना जीवन यापन एक औसत आयु व्यक्ति की जितनी होती है उतना सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरा, कभी भी मैं समाज से भी यह आग्रह करता हूँ कि इसमें न छूने से, न उसके साथ में बैठ के खाने से, जब ये नहीं हो सकता है,

0: तो फिर उनके साथ भेदभाव क्यों? क्योंकि अगर भेदभाव करेंगे तो उनके जीने की एक इच्छा शक्ति जो होती है वो समाप्त हो जाती है। और मैं यह बार बार यह आग्रह समाज से करूंगा कि अगर उनको इन्फेक्टेड हैं तो उनकी सहायता करें, उनको एक
1: समाज में एक
0: संदेश दें। और इसका सबसे बढ़िया बचाव का उपाय है, जानकारी ही बचाव है।
1: आपका कहने का मतलब यह है कि थोड़ी सी जागरूकता की जरूरत है और जो HIV संक्रमित लोग हैं उन्हें समाज में एक समान नज़र से देखने की ज़रूरत है ताकि वो इससे समस्या को झेल सके और अपने जीवन को अच्छी तरह से बिता सके। अंत में आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जो एड्स का वैक्सीन को आप भविष्य में किस तरह से देखते हैं?
0: अभी तक साइंस, मेडिकल साइंस हम लोगों का काफ़ी आगे बढ़ चुका है, तो रिसर्च चल रहा है, लेकिन यह एक्चुअली रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस पर थोड़ा सा रिसर्च करना संभव नहीं हो पा रहा हो, चाहे जो भी एडम हमारे साइंस तो लगी हुई है, हो सकता है कि 6 महीना में निकल जाए, हो सकता है 2-4 साल लग जाए, हो सकता है कि समय लगे, काफ़ी समय लगे। तो इस पर तो अभी कहना, क्योंकि देखिए पहले हम लोग ART में मेडिसिन काफ़ी देते थे, लेकिन आज के समय में हम लोग सिर्फ एक TLD उनको देते हैं। तो समय तो काफ़ी परिवर्तित हो गया, नया नया रिसर्च चल रहा है, वैक्सीन हो सकता है बहुत जल्द आ जाए।
1: उम्मीद पर दुनिया कायम है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द एड्स का वैक्सीन लोगों के सामने आए और लोग इससे पूरी तरह बचे। डॉक्टर साहब, आपने काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोता मित्रों, बाय ध्वनि अंकन पर आधारित भेंट वार्ता का प्रथम प्रसारण अभी आप सुन रहे थे, जो कि विश्व एड्स वैक्सीन डे पर आधारित था। जी हां, विषय था एड्स वैक्सीन संभावित भविष्य। इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे थे डॉक्टर रामचंद्र सिंह और इनसे बातें कर रहे थे राजेश कुमार।

ग्रामीण श्रोता मित्रों, और अब एक नजर डालते हैं मौसम संबंधी सुझाव पर। जी हाँ, आने वाले दिनों में लू गर्म हवा की संभावना को ध्यान में रखते हुए सब्जियों की नर्सरी, जायद फसलों तथा फलों के बगीचों में हल्की सिंचाई नियमित अंतराल पर करें। नर्सरी व वृक्षों को लू से बचाने के लिए अवरोधकों के उपयोग की सलाह दी जाती है। अनाज को भंडारण में रखने से पहले भंडार घर की सफाई करें तथा अनाज को सुखा लें। दानों में नमी 12% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। भंडार घर को अच्छे से साफ कर ले। छत या दीवारों पर यदि दरारें हैं तो इन्हें भर कर ठीक कर ले। बोरियों को 5% नीम तेल के घोल से उपचारित करें। बोरियों को धूप में सुखा कर रखे, जिससे कीटों के अंडे तथा लार्वा या अन्य बीमारियां आदि नष्ट हो जाए। ग्रीष्मकाल हरी खाद के लिए सनई ढेंचा की बुआई आप कर सकते हैं। सनई की बीज दर 60 से 70 और ढेंचा की 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। अच्छे अंकुरण के लिए श्रोता मित्रों, खेत में पर्याप्त नमी होनी अत्यंत आवश्यक है। ग्वार, मक्का, बाजरा आदि चारा फसलों की बुआई इस सप्ताह आप कर सकते हैं। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी अत्यंत आवश्यक है। बीजों को 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर डालें और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों, हम आपको बता दें, अरहर और कपास की बुआई के लिए खेतों को तैयार करें तथा बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें। तापमान को देखते हुए किसान भाई बहनों, तैयार सब्जियों की तुड़ाई सुबह या शाम को करें तथा इसके बाद इसे छायादार स्थान में रख दें। भिंडी की फसल में तुड़ाई के बाद यूरिया 5 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डालें तथा माइट कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। अधिक कीट पाए जाने पर इथियन 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव आप कर सकते हैं। बैंगन तथा टमाटर की फसल को प्ररोह एवं फल छेदक कीट से बचाने के लिए ग्रसित फलों तथा प्ररोहों को इकट्ठा कर नष्ट कर दें। यदि कीट की संख्या अधिक हो तो स्पिनोसेट कीटनाशी 48 EC 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। इस मौसम में किसान भाई बहनों, आप अपनी मिट्टी की जांच किसी प्रमाणित स्रोत से करवा सकते हैं और जहां संभव हो अपने खेत का समतलीकरण अवश्य करें।

जी हाँ, बारिश और गरज के साथ बिजली चमकने के समय किसान भाई बहनों खेतों में जाने से इसलिए बचना चाहिए क्योंकि खुले आसमान के नीचे काम करना जानलेवा हो सकता है। खेत में काम करते समय बारिश से बचने के लिए कभी भी अकेले या बड़े पेड़ के नीचे ना जाए। पेड़ बिजली को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ट्रैक्टर, फावड़ा, हंसिया, साइकिल या लोहे की बाड़ से तुरंत दूर हो जाएं। धातु बिजली के सुचालक होते हैं। यदि आप खुले खेत में फंस जाएं और कोई पक्का मकान ना मिले तो जमीन पर ना लेटे। अपने दोनों पैर को आपस में सटाकर, घुटनों को छाती से लगाकर, सिर को नीचे झुका ले ताकि आप सबसे छोटे लक्ष्य बने और जमीन से कम संपर्क हो। यदि आप खेत में किसी तालाब, नदी या जल भराव वाले क्षेत्र के पास हैं तो तुरंत वहां से हट जाएं। अगर खेत में कई लोग साथ हैं तो एक साथ एक जगह ना खड़े हो बल्कि अलग-अलग दूरी पर खड़े रहें। गरज चमक के समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। खेत में जाने से पहले मौसम का पूर्वानुमान अवश्य देख लें। आप अपने स्मार्टफोन में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का दामिनी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो आकाशीय बिजली गिरने से पहले आपको चेतावनी दे देगा। तुरंत और बिजली गिरने से बचने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी सुरक्षा नियमों को जानना बेहद जरूरी है ताकि इस विपरीत समय में यह जानकारी हमारी मदद कर सके।

और चलते चलते एक जानकारी को साझा करते हैं श्रोता मित्रों की, हीट वेव से हम अपने पशुधन की सुरक्षा किस प्रकार करेंगे। जी हाँ, गर्मियों में हीट वेव, लू और हीट स्ट्रोक से पशुओं की जान को खतरा रहता है और दूध उत्पादन भी कम हो सकता है। बचाव के लिए पशुओं को छायादार हवादार जगह पर रखें, पर्याप्त साफ पानी दें, डाइट में हरा चारा और इलेक्ट्रोलाइट्स शामिल करें तथा शेड की छतों को गीली बोरियों से ढक दें। श्रोता मित्रों, पशुओं को सीधे धूप में ना बांधें, उन्हें पेड़ की छांव या पक्के शेड में रखें। पशुशाला की छत पर पुआल, खस या टाट डालकर पानी का छिड़काव करते रहें। शेड में क्रॉस वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। खिड़कियों पर गीली बोरियां टांगने से अंदर की हवा ठंडी रहती है। यदि संभव हो तो बड़े पशुपालक फॉगर या पंखों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पशुओं को 24 घंटे पीने का साफ और ताजा पानी उपलब्ध कराएं। उन्हें दिन में 3 से 4 बार पानी पिलाएं। लू से बचने के लिए पानी में थोड़ा नमक, मिनरल मिक्सचर या ग्लूकोज मिलाकर दें। आप चाहें तो ORS का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आहार में सूखे चारे की तुलना में हरा चारा अधिक दें, क्योंकि यह सुपाच्य होता है और शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता। संतुलित ऊर्जा के लिए पशुओं को सीमित मात्रा में गुड़ और दलिया खिलाएं। पशुओं को सुबह और शाम के समय नहलाएं। ध्यान रखें कि चिलचिलाती दोपहर में उन्हें ठंडा पानी ना डालें, इससे हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। चरने वाले पशुओं को सुबह जल्दी या शाम को ही बाहर निकालें। दोपहर के समय उन्हें बाड़े में ही रखें। गलघोटू और मुंह खुर जैसी बीमारियों से बचाव के लिए पशु चिकित्सक से सलाह लेकर समय पर टीकाकरण अवश्य करवा लें। और श्रोता मित्रों, इस जानकारी के साथ हमारा आज का कृषि जगत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में ढेर सारी जानकारियों के साथ। तो दीजिए अनुमति प्रवीण को जोहार।

0: कृषि जगत, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:55 होने ही वाले हैं श्रोताओं। अगला प्रसारण आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ठीक 7 होगा प्रादेशिक समाचार, और उसके बाद 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम जिले में आजकल। अब अगला प्रसारण रांची केंद्र से सुनिए।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस की यात्री
2: है। तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाई फाई है ना?
3: सुन बुद्धू, सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाई फाई
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी,
1: फीस तो देखो
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर, बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस की यात्री,
8: आई एम हियर।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में 316 नव नियुक्त सहायक आचार्यों और 17 महिला पर्यवेक्षिकाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, 2-4 महीनों में होंगी हजारों बहालियां। जेटेट भाषा विवाद पर गठित उच्च स्तरीय कमेटी की रांची में पहली बैठक संपन्न। शिक्षा विभाग से मांगा गया क्षेत्रीय भाषाओं का विस्तृत डेटा। उच्च शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर झारखंड हाईकोर्ट नाराज। सेवानिवृत्त कर्मियों को 22 जून तक बकाया भुगतान न होने पर निदेशक का वेतन रोकने का आदेश। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में दोपहर बाद हुई तेज बारिश। मौसम विभाग ने आगामी 21 मई तक जारी किया येलो और ऑरेंज अलर्ट। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमकी रांची की राशि सिन्हा। कोलंबो में आयोजित एशिया केक ऑस्कर 2026 में जीता प्रतिष्ठित पुरस्कार। और अब समाचार विस्तार से। रांची के प्रोजेक्ट भवन में आज आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 316 सहायक आचार्यों और 17 महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नवनियुक्त शिक्षक सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि राज्य के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समारोह में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और श्रम मंत्री संजय यादव भी मौजूद रहे।
1: अभी और भी तैयारी हो रही है, लगता है कि 2-3-4 महीने में और भी हजारों लोगों की नियुक्तियां होंगी। ये नियुक्तियां सिर्फ हम तनख्वाह पाए इसके लिए नहीं है, हम नियुक्ति इसके लिए भी कर रहे हैं, इस अपेक्षा के साथ भी कर रहे हैं कि राज्य का समग्र विकास हो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। ओस्लो में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाला 32वां अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक सम्मान है, जो विश्व मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नक्सलवाद का अंत होने के बाद भी हमें चैन से नहीं बैठना है। छत्तीसगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह का हवाला देते हुए कहा कि अगले 5 वर्षों के भीतर सभी प्रभावित गांवों को जीवंत आदिवासी समुदायों में बदला जाएगा, ताकि नक्सलवाद के कारण हुए नुकसान की पूरी भरपाई की जा सके।
2: सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आग्रह रखा है कि नक्सलवाद समाप्त हो गया ऐसा मानकर चैन की नींद नहीं सोना। नक्सलवाद तभी समाप्त माना जाएगा जब नक्सलवाद ने जो नुकसान किया है वो हम 5 साल के अंदर भरपाई कर इस सभी गांवों को हमारे ऊर्जावान आदिवासी गांवों में बदले।
0: जेटेट भाषा विवाद सुलझाने के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी की आज रांची में पहली बैठक संपन्न हुई। मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के बाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद और दीपिका पांडे सिंह ने बताया कि शिक्षा विभाग से नई नियमावली में सुधार के लिए विस्तृत रिपोर्ट तथा तथ्य तलब किए गए हैं।
3: कई तथ्यों कई साक्ष्यों के आधार पर आगे निर्णय लेना है। अभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि तथ्यों और साक्ष्यों को जुटान करें, तत्पश्चात उस पर निर्णय किया जाएगा। समिति अधिकृत किया है आदरणीय चेयरमैन साहब को, इसके जल्दी हमको लगता है कि फिर फ्राइडे या सैटरडे को बैठक होगा, उसका फिर आगे की रिपोर्ट।
0: भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषाओं को बाहर किए जाने से उपजे इस विवाद पर अगली बैठक अब 22 मई को होगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कल भुवनेश्वर में पूर्वी क्षेत्रीय भाषा कृषि सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना और केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय मजबूत करना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन के दौरान विभिन्न योजनाओं की समीक्षा और कृषि क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और बकाया वेतनमान का लाभ नहीं मिलने पर राज्य सरकार के प्रति कड़ी नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने निर्देश दिया है कि आगामी 22 जून तक पेंशन और 5वें से 7वें वेतनमान का बकाया भुगतान सुनिश्चित किया जाए। ऐसा न होने पर उच्च शिक्षा निदेशक का वेतन रोक दिया जाएगा। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत आगामी 30 जून से 29 जुलाई तक BLO घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। अपर मुख्य निर्वाचन

0: पदाधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि राज्य में अब तक 73% मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि शेष मतदाताओं की सूची 23 मई से सभी मतदान केंद्रों पर प्रदर्शित की जाएगी, जहां लोग बीएलओ से संपर्क कर मैपिंग करा सकेंगे। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के बीच देश में कच्चे तेल और LPG के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश की रिफाइनरियां सामान्य रूप से काम कर रही हैं और ईंधन की कोई कमी नहीं है।
1: हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज हैं, पेट्रोल, डीजल, LPG और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं और किसी भी LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर या रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट नहीं है, लेकिन कई जगह पर अफवाहों के चलते पैनिक बाइंग देखी जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि जो बल्क सेल था वो पंप सेल पर भी शिफ्ट हो रहा है।
0: गुड्डा जिले को आज स्वच्छ ईंधन की बड़ी सौगात मिली है। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने गुड्डा भागलपुर मुख्य मार्ग पर CNG PNG स्टेशन का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का लाइव संदेश भी सुनाया गया। सांसद ने कहा कि CNG से प्रदूषण घटेगा और स्थानीय वाहन चालकों को किफायती ईंधन का विकल्प मिलेगा। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में महिला कैदी के साथ यौन शोषण मामले पर भाजपा ने राज्य सरकार को घेरा है। रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज प्रवक्ता अजय शाह ने प्रेस वार्ता कर दावा किया है कि जेल में बंद एक महिला कैदी का कथित यौन शोषण के बाद गुप्त रूप से गर्भपात कराया गया और सबूत मिटाने की कोशिश की गई।
2: रांची के बिरसा मुंडा जेल में एक महिला कैदी, उसके साथ कई महीनों पहले यौन शोषण हुआ। यौन शोषण के बाद जब वो प्रेग्नेंट हो गई, केवल जेल सुपरिटेंडेंट कुमार चंद्र से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि जेल IG सुदर्शन मंडल, जिनकी जानकारी में आने के बाद कार्रवाई करने के बजाय उन्होंने इस पूरे मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया, फाइलों को रफा दफा किया, सबूत को मिटाया।
0: रांची जेल यौन शोषण मामले में कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा इस मामले में मुख्यमंत्री को पत्र लिखने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि महिला कैदी की मेडिकल जांच में गर्भावस्था की रिपोर्ट नकारात्मक आई है।
3: बिना कोई जानकारी बाबूलाल जी पत्र लिख देते हैं, पोस्ट कर देते हैं एक्स पे। जानकारी रखा कीजिए, आप इस राज्य के प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप जो बोलते हैं वो राज्य की जनता सुनती है। इस मामले में निगेटिव रिपोर्ट आई है और जब मामले में निगेटिव रिपोर्ट आई है तो उसके बाद आप हाथी पीट रहे हैं।
0: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने पलमा गुमला खंड के आंजनधाम टोल प्लाजा परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। क्षेत्रीय अधिकारी MT अतरदे ने कल्पतरु का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास का संदेश दिया। NHAI ने कहा कि ग्रीन हाईवे अवधारणा के तहत राजमार्गों के किनारे हरित आवरण बढ़ाने के लिए निरंतर वृक्षारोपण किया जा रहा है। और अब मौसम का हाल। राज्य में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आज रांची, खूंटी और गुमला सहित दक्षिणी व मध्य भागों में 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, बारिश और वज्रपात की आशंका है। मौसम विभाग ने आगामी 21 मई तक राज्य के अधिकांश हिस्सों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। रांची की राशि सिन्हा ने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित 4th एशिया केक ऑस्कर वर्ल्ड एडिशन 2026 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर देश का मान बढ़ाया है। उन्हें व्हिप्ड क्रीम वेडिंग केक श्रेणी में उत्कृष्ट कला और क्रिएटिविटी के लिए ट्रॉफी और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के चेहरे वाली कस्टमाइज केक बनाने के बाद वे देश विदेश में सुर्खियों में आई थीं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में 316 नवनियुक्त सहायक आचार्यों और 17 महिला पर्यवेक्षिकाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा 2-4 महीनों में होंगी हजारों बहालियां। जेटेट भाषा विवाद पर गठित उच्च स्तरीय कमेटी की रांची में पहली बैठक संपन्न। शिक्षा विभाग से मांगा गया क्षेत्रीय भाषाओं का विस्तृत डेटा। उच्च शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर झारखंड हाईकोर्ट नाराज। सेवानिवृत्त कर्मियों को 22 जून तक बकाया भुगतान न होने पर निदेशक का वेतन रोकने का आदेश। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में दोपहर बाद हुई तेज बारिश। मौसम विभाग ने आगामी 21 मई तक जारी किया येलो और ऑरेंज अलर्ट। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमकी रांची की राशि सिन्हा। कोलंबो में आयोजित एशिया केक ऑस्कर 2026 में जीता प्रतिष्ठित पुरस्कार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे जामताड़ा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे जामताड़ा संवाददाता।
1: जामताड़ा जिले में केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं का सशक्त अनुसरण, स्थल निरीक्षण एवं जांच वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में किया जा रहा है। इस दौरान जमीनी स्तर पर योजनाओं की स्थिति, प्रगति, खामियां, समन्वय का अभाव आदि बिंदुओं का आकलन कर रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। यह अभियान 16 मई से 24 अक्टूबर तक प्रत्येक शनिवार को चलाया जाएगा। इस संबंध में उपायुक्त आलोक कुमार ने निरीक्षण के दौरान कहा कि
2: बेसिकली निरीक्षण का जो मेन पर्पज़ यही है कि हम लोग ग्राउंड लेवल पे जाके देखें क्या क्या पब्लिक को समस्याएं फेस हो रही हैं, उसको निराकरण कैसे करना है, और एक एविडेंस बेस्ड हम लोग प्लानिंग और एविडेंस बेस्ड जो एग्जीक्यूशन है किसी भी योजना का वो कैसे किया जा सकता है, उसी के लिए हम लोगों ने बाकायदा शेड्यूल निकाला हुआ है। हर शनिवार हमारे वरीय पदाधिकारी हमारे सहायक पदाधिकारी के साथ हर एक पंचायत का निरीक्षण करेंगे और उस क्रम में जो जो इश्यूज आ रहे हैं उसको हम लोग कैसे टेकअप करने वाले हैं, इसी के लिए हम लोगों ने पूरा प्लान अगले 3-4 महीने चलेगा।
1: जामताड़ा जिले के सभी प्रखंडों में जिला प्रशासन एवं बैंकों की पहल पर चरणबद्ध कृषि ऋण सशक्तिकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान सरकार की किसान हितैषी योजनाओं एवं बैंकों से वित्तीय सहायता का लाभ लेने के लिए किसानों को जागरूक एवं प्रेरित किया जा रहा है। इस संबंध में अग्रणी बैंक प्रबंधक बालादित्य कुमार ने बताया कि
3: किसान इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और वो इस कैंपेन के माध्यम से उनको जो भी केसीसी रिलेटेड लोन है उसके बारे में विस्तार से बताया जा रहा है, उनको ऋण प्रदान किया जा रहा है जिससे वो लाभान्वित हो रहे हैं। सभी किसान बंधु जो भी कैंप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आ रहे हैं तो कृषि से संबंधित सारी जानकारी उनको प्रदान की जा रही है हमारे बैंक मित्रों द्वारा और सरकारी कृषि अधिकारी द्वारा।
1: बिजली, पानी सहित अन्य जन सुविधाओं की मांग को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 12 मई को समाहरणालय के समक्ष धरना एवं जोरदार प्रदर्शन किया। इस क्रम में भाजपा विधायक राज सिन्हा ने कहा कि जन सुविधाओं एवं समस्याओं को लेकर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से उदासीन बनी हुई है। उन्होंने कहा कि
4: मेन मूल्य हमारा डिमांड है पानी दो बिजली दो, उसी क्रम में आज जामताड़ा उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना एवं प्रदर्शन आक्रोश प्रदर्शन किया गया जिसमें आपने देखा कि जब वहां गई महिलाएं मिलने के लिए तो गेट बंद कर दिया गया और आक्रोशित महिलाओं ने वहीं पे खाली घड़े को उनके गेट के पास छोड़ दिया, तोड़ दिया।
1: जामताड़ा जिले में साइबर अपराध पर विराम लगाने को लेकर जामताड़ा पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान पुलिस को सफलता भी मिल रही है। इस क्रम में पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने कहा कि
5: मेरे द्वारा एक टीम का गठन किया गया था, इस टीम के द्वारा कल छापेमारी की गई नारायणपुर थाना अंतर्गत दखनी डी के पास जहां से 3 संदिग्धों को पाया गया, कुल 8 मोबाइल जब्त हुआ है। जब उसका सत्यापन किया गया तो ये पाया गया कि उसमें ये लोग इनके द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में फोन करके साइबर ठगी की कार्रवाई की जा रही है।
1: जनगणना 2027 को लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संगठनों के द्वारा भी आवश्यक पहल की जा रही है। लोगों को जनगणना

0: गणना के महत्व के प्रति जागरूक एवं पंजीकृत कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा।
1: अभी आप सुन रहे थे जामताड़ा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

आकाशवाणी रांची का प्रसारण अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं बांग्ला कार्यक्रम।

बांग्ला कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर।

प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।

0: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
1: ज्ञान विज्ञान
2: इतिहास के पन्नों से,
1: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
0: मौसम का मिजाज,
1: अपने शहर की खबरें,
2: बातों मुलाकातों के साथ
0: सुरीला मनोरंजन
1: और भी बहुत कुछ।
0: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में
2: दिन के 11:05 से 12 बजे तक
1: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
3: नमस्कार जमशेदपुर।
4: हेलो डॉक्टर,
0: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
4: हेलो डॉक्टर।
0: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
4: हेलो डॉक्टर।
5: FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप हैं आकाशवाणी जमशेदपुर के साथ। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है संस्कृत कार्यक्रम देव भारती।
6: श्रोतारा, वयम काव्ये अस्माकं मनसा भावा अभिव्यञ्जयामः, अतेव काव्ये अपि परिवेष्ट वस्तुनां प्रकृते परिवेशस्य च प्रभाव दृश्यते। कवि स्वस्य अनुभवान् अनुभूति अपेक्षां च काव्ये प्रकटयति। अतः आगच्छन्तु वयम् अद्य देवभारती कार्यक्रमे अश्विनी कुमार मिश्रस्य काव्यानि श्रृणुमः।
7: पृष्ठः शस्य प्रसूता धराति शुष्का कच्चित् धरित्री जलमग्न भूता अस्मिन् सुमध्ये बहुरंग कीटः श्रमस्वेद कृष्कस्य भुवि भार भूता। गोवंश क्षीण कृषिकर्म ध्वस्त अधुना मशीने कृषिकर्म दृष्ट गोवंश पालन कृषिकर्म धारण परस्परावलंबित नहीं अत्र दृष्ट। जठराग्नि पीड़ित कृषकस्य पादा भ्रमन्ति नगरे अन्यापि कार्ये वृद्धोपि बालः ग्रामे वसन्ति यौवन विहीनः ग्रामः अकार्यः यौवन विहीनः ग्रामः अकार्यः। प्राचीन तरुवर अस्तित्वहीनः उद्यान कुञ्जोपि अस्तित्वहीनः वारिद भ्रमन्ति कच्चित् आकाशे वृष्टिः विहीना सर्वारिहीना। नाना प्रकारेण पेट्रोपदार्थाः पर्यावरेण ध्वस्तः करोति विषधूम वेष्टित वातप्रमण्डल रोगानि नाना मनुजानि हन्ति रोगानि नाना मनुजानि हन्ति। महंगाई महंगाई अधुना भार स्वयं परिवार व्यवस्था निज कर्म स्वयं ओदन व्यंजन असन असने काले पात्र द्विदलह विलीन स्वयं मुद्रा समतुल व्यंजन अस्ति वणिक कनिष्ठ शुष्क रोदति व्यापार लाभ धनवान करस्थे रिक्त हस्त निर्धनजन रोदति रिक्त हस्त निर्धनजन रोदति। मृदुल

ताम्र रसचित्त लिच्छवि द्राक्षा संकुल कदली शोहति सर्वेषाम् इति दृश्य मनोहर मनसा क्लेशः मंगाये दास्यति। चतुर चालाक ज्वारी हस्ते लक्ष्मी क्रीडति नाना वर्तनी सज्जन शांत सुशील जनाया देवी दरिद्रा धारय कुंडली, देवी दरिद्रा धारय कुंडली। अल्प असन बाल रुदन जीर्ण वसन अर्धांगिरुदन तात मात गृहे रुग्ण वित्तहीन सुत मूक रुदन धनहीन गेहे अन्नापिरिक्त धनहीन गेहे जलापि शून्य धनहीन गेहे रोगानि नाना धनहीन गेहे नवजात मृत्यु धनहीन गेहे शिक्षा सुदूरा धनहीन गेहे प्रचुर कुशिक्षा धनहीन गेहे उद्रश्य पूजन इति मात्र मंत्र अस्मिन् कुशिक्षा धनहीन गेहे अस्मिन् कुशिक्षा धनहीन गेहे। नित्य नर्तन निर्धन जनाया नगरे भवन्ति सृष्टि कराया श्रमस्वेद मूल्य निर्धन जनानाम निर्धारयति सृष्टि कराया। कन्या सुशीला यदि धनहीन गेहे दृष्टि कुकर्मी धनहीन गेहे निसर्ग यौवन नहीं प्रस्फुटंती वृद्धत्व याति धनहीन गेहे वृद्धत्व याति धनहीन गेहे। ग्रीष्म ऋतु ग्रीष्मे काले तड़ाग खननम ग्रीष्मे काले तलाग खननम अतिताप दग्धे नलकूप खननम जठराग्नि दग्ध निर्धन मनुष्या सर्वत्र कुर्वन यमलोक गमनम सर्वत्र कुर्वन यमलोक गमनम। रविरश्मि अधिना नहि प्राण पोषक यमराज तात रवि प्राण शोषक कृशानुगोल रविरश्मान कृशानुगोल रविरश्मान निर्धन जनाया रवि प्राण शोषक निर्धन जनाया रवि प्राण शोषक। यावत् तड़ागे परिपूर्ण वारे सरसिज खिलंती रविरश्मि दृष्ट्वा अति ग्रीष्म काले सर्वारिहीनः चिरसुप्त पद्म रविरश्मि दृष्ट्वा भास्कर कृपाया लोकाचरंती जलान उदरे परिपूर्ण यावत् रिक्तोदरा जना भवंती मार्तन रिक्षा रहती जना क्षणांशे मार्तन रिक्षा रहती जना क्षणांशे। बालारुणोषी लोक प्रसूत रक्षकोश भूतान लोके कृपयेत आने जलधार वारिज प्राण प्रदास्योषी इमृत लोके प्राण प्रदास्योषी इमृत लोके। आगच्छ पावस ग्रीष्मावसाने आगच्छ पावस अति शुष्क कंठ द्रवयेति पावस वैशाख ज्येष्ठे विदीर्ण धरणी प्लावे धरातम क्षिप्रम हि पावस अधुना धरित्री शस्यापि शून्यः

सर्वत्र क्षेत्रे शुष्का भवन्ति सर्वत्र क्षेत्रे अर्धान्तमासे आषाढकाले मनसून आने क्षिप्रोति पावस जलधार वृष्टे वातापि संगे लोकार्तनाशे तम शीघ्र पावस कंठाति शुष्क मनुजस्य संगे पशुपक्षि दीन विनयेति पावस कृषिकर्म हेतु आगच्छ शीघ्र नद्या

0: कृपावश जननी जन्मभूमि स्वर्गोच्च मही मई जन्मभूमि स्वर्गोच्च मही मई जन्मभूमि मृत्तिकार चित मम देहोयम वारि सुधा पोषित देहोयम गिरिकानन रंजित देहोयम नंदन कानन मई जन्मभूमि स्वर्गोच्च मही मई जन्मभूमि सरसिज सज्जित अत्र सरोवर बक पंक्ति निमज्जय अति सुंदर पारा पंडुक कूजन सुंदर सुधा सलिल सिंचित जन्मभूमि स्वर्गोच्च मही मई जन्मभूमि सुख पिक गायन तान मनोहर हरित कृष्ण काया अति सुंदर किंसुक चंचु भजन मनोहर गुंजित कुकर साल वन भूमि स्वर्गोच्च मही मई जन्मभूमि स्वर्गोच्च मही मई जन्मभूमि।
1: अधुना भवन्तः अश्विनी कुमार मिश्रस्य काव्यानि शृण्वन्ति स्म। अनेन सह अद्यतन देव भारती कार्यक्रम अत्रैव सम्पन्न जातः। शिखाम् अनुमन्यताम् नमस्कारः।

0: संस्कृत कार्यक्रम देव भारती अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी जमशेदपुर है FM 102.4 MHz पर।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी जमशेदपुर है। श्रोताओं, आपको बता दें, अब से थोड़ी देर बाद यानी ठीक 8 बजे से आप सुनेंगे फिल्म संगीत, और ये कार्यक्रम चलेगा 8:45 तक। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे News@9 के तहत। स्पॉटलाइट ये कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 9:15 से। पब्लिक स्पीक ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात्रि 9:30 से। श्रोताओं, एक बार फिर से आप फिल्मी गीतों का आनंद उठा सकेंगे रात्रि 10 बजे कार्यक्रम फिल्म संगीत के तहत। रात्रि 10:30 पर होगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे

आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। FM 102.4 MHz पर श्रोताओं आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

सुनने वालों को हमारा नमस्कार। सुनिए कार्यक्रम का पहला गाना।

अलबेला फिल्म का ये अलबेला गाना आप सुन रहे थे श्रोताओं लता मंगेशकर, सी रामचंद्र और साथियों की आवाजों में। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण, संगीत दिया था सी रामचंद्र ने। ऐसा ही एक और अलबेला गाना सुनते हैं श्रोताओं।

आशा भोंसले और किशोर कुमार की आवाजों में ये गाना था श्रोताओं, कमर चलालाबादी का लिखा हुआ। म्यूजिक था ओपी नैयर का, फिल्म थी रागिनी।

जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हो।

0: शिकारी इस फिल्म का ये गाना था। श्रोताओं, लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजें थी, बोल थे फारूक कैसर के और संगीत था जीएस कोहली का।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: आकाशवाणी जमशेदपुर से श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।
2: स्कूल में क्या पढ़ोगे हो राम, दिल की किताब।

आनंद बख्शी का लिखा ये गाना था श्रोताओं, म्यूजिक था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और आवाज थी किशोर कुमार की, फिल्म थी दिलदार।

मोहम्मद रफी की आवाज में राजा और रंक इस फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे श्रोताओं। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

हसरत जयपुरी ने लिखा था इस गाने को। म्यूजिक था शंकर जयकिशन का, आवाज मोहम्मद रफी की थी और फिल्म थी प्रिंस। आकाशवाणी जमशेदपुर से श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: फर्ज इस फिल्म का ये गाना था। श्रोताओं, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी। गीतकार थे आनंद बख्शी, म्यूजिक था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: अच्छा, तो हम चलते हैं।

आन मिलो सजना। इस फिल्म का यह गाना था श्रोताओं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें थी। बोल थे आनंद बख्शी के, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। अच्छा तो अब हम भी चलते हैं श्रोताओं, फिर मिलेंगे हम कहाँ, यहीं FM 102.4 MHz पर। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।

फिल्म संगीत। ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 MHz पर। 8:45 होने ही वाले हैं श्रोताओं, थोड़ी ही देर में समाचार संध्या का प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्व भर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और 20 तारीख को इटली में होंगे। यह दौरा 5 देशों की यात्रा का अंतिम चरण है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत

0: महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं, उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमरीकी उद्योग प्रतिनिधि मंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे में अमरीकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमरीका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमरीका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
3: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
1: इस बीच सरकार ने यूट्यूब के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इन दिनों अगर आपके घर में जनगणना कर्मी आकर आपके मकान के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका सहयोग करें और पूरी जानकारी उन तक पहुंचाएं, क्योंकि देशव्यापी जनगणना 2027 के पहले चरण का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जा रही है। इस बार जनगणना कार्यों में पहली बार शुरू की गई है स्वगणना सुविधा, जिसे जनता से काफी उत्साहजनक रिस्पांस भी मिल रहा है। काफी राज्यों में स्वगणना का जो विकल्प है वो समाप्त हो चुका है और कुछ राज्य अभी बचे हैं। ये पहल जनगणना कार्यों के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और इसे कैसे भरना होगा, किस तरह के सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो तुरंत हमें कॉल कीजिए, क्योंकि आज के कार्यक्रम में हम मकान सूचीकरण और आवास गणना पर परिचर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपके साथ फरहत नाज, और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमने आमंत्रित किया है गृह मंत्रालय के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप महापंजीयक

0: रुशाली वराडे जी को। नमस्कार रुशाली जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार और धन्यवाद।
0: श्रोताओं, हमारी फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, आप हमारे विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112317148 0112317148 0112317148 पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9289094044 पर आप सवाल भेजते रहिए। सोशल मीडिया एक्स पर #AskAIR का इस्तेमाल करके भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और रुशाली जी, सबसे पहला प्रश्न हमारा आपसे ही है कि पहले चरण का काम तेजी से शुरू हो गया है, मकान सूचीकरण और मकानों की गणना किस तरह की जा रही है इसमें, और किस तरह के सवाल इसमें जनता के लिए चुने गए हैं?
1: जी, जैसे अभी आपने कहा कि इस बार पहली बार हम स्वगणना की उपलब्ध फैसिलिटी उपलब्ध है पब्लिक के लिए, तो काफ़ी राज्यों में स्वगणना का पीरियड ख़त्म हो चुका है, जो कि हमने 15 दिन के लिए रखा था, और 1 महीने का समय है जो कि प्रगणक घर घर जाके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। तो कुछ 7 या 8 स्टेट में हमारी स्वगणना कंप्लीट हो चुकी है और HLO का काम भी कंप्लीट हो चुका है। कुछ राज्यों में स्वगणना अभी चल रही है। तो क्वेश्चन के बारे में अगर हम कहें तो जैसे नाम है इस फेज का मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना, तो इसमें हम सिर्फ मकानों की गणना करेंगे और मकान के हालत कैसी है, घर कैसा है और घर में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे पीने का पानी कहाँ से आता है, पीने का पानी कैसे है, टॉयलेट की सुविधा है या नहीं, बाथरूम की सुविधा है या नहीं, घर में कितने लोग रहते हैं, कितने कपल्स रहते हैं, रूम्स कितने हैं घर पे, और घर में एसेट्स क्या है, जैसे जैसे कि रेडियो है या नहीं, टेलीविजन है या नहीं, 2-व्हीलर 4-व्हीलर है या नहीं, तो इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे।
0: जी रुशाली जी, और सबसे पहले हमारे लिसनर हमसे जुड़ गए हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। जी धर्मवीर जी।
2: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार।
2: हाँ, एक्सपर्ट को भी नमस्कार। मैं धर्मवीर गाने का दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरे सवाल में मैं ये पूछना चाहूँगा कि घर घर जाके आप इसके लिए

0: एक महिला भी होगी साथ, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, जो अगर कोई दिव्यांग है, दिव्यांग का मतलब ये है कि वो अगर उसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो कैसे अपने, जो पहले आपने कहा था कि उसमें खुद भी ये दर्ज कर सकता है, और इसके लिए हमें क्या क्या, अब मैं कित, अगर कोई फ्रॉड आ जाता है इंक्वायरी करने के लिए, तो ऐसे में हम क्या पहचान करें कि ये आदमी फ्रॉड है कि ये सरकार के भेजा गया आपका वर्कर है। धन्यवाद।
1: धर्मवीर जी ने तीन सवाल पूछे हैं रुशाली जी। सबसे पहला सवाल उनका ये है कि अगर महिलाएं घर में मौजूद हैं तो क्या कोई महिला कर्मी भी जनगणना कर्मी के साथ मौजूद रहेंगी?
2: तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, महिला अलग से तो नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो प्रगणक होंगे वो जनरली होते हैं जो स्कूल के टीचर्स होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। हम लोग इंस्ट्रक्शन जरूर देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसमें अपॉइंट करें, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन एक फेथफुली अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। बट ये कंपलसरी नहीं है और हर घर में एक ही आदमी जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें पूरे इंडिया के लिए 31 लाख प्रगणकों की ज़रूरत है। तो इतने सारे लोगों के साथ मतलब और एक महिला जाना इट्स मतलब संभव नहीं है। लेकिन जो तीसरा सवाल है मैं इसी के साथ जोड़ देती हूँ, जो फ्रॉड वाली बात इन्होंने पूछी है धर्मवीर जी ने, तो फ्रॉड की कोई ये नहीं है, क्योंकि प्रगणक के पास अपना आई कार्ड होगा, उसके पास चार्ज ऑफिसर का सिग्नेचर होगा, उस पर स्टैम्प होगा, प्लस क्यूआर कोड होगा आई कार्ड पे, और अपॉइंटमेंट लेटर पे भी क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड स्कैन होने के बाद हमारी वेबसाइट उस पर आ जाएगी और वेबसाइट पे उसकी डिटेल्स आपको दिख जाएंगे। तो फ्रॉड की बिल्कुल दिक्कत नहीं है, हालांकि हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप अपने चार्ज ऑफिसर को या लोकल ऑफिसर से बात कर सकते हैं।
1: और दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है कि दिव्यांग व्यक्ति फॉर्म कैसे भर सकते हैं?
2: जी, तो दिव्यांग व्यक्ति के लिए जैसे पहले ही बताया मैंने, स्वगणना एक अतिरिक्त फैसिलिटी हम दे रहे हैं, ये कंपलसरी नहीं है। प्रगणक हर घर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, अगर आपने स्वगणना की है तो भी प्रगणक घर घर जाके फिर से वो वेरीफाई करेगा। तो अगर दिव्यांग कोई है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, प्रगणक वहाँ पे जरूर जाएगा और इन्फॉर्मेशन लेके आएगा।
1: और अब हमारे दूसरे लिसनर हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र जी। जी राजेंद्र जी
3: नमस्कार। जी जागृति जी को और विशेषज्ञ जी को नमस्कार।
1: नमस्कार, मैं फरहत नाज बात कर रही हूँ राजेंद्र जी,
3: सॉरी जी।
1: लेकिन मैं आपका नमस्कार जागृति जी को भी पहुँचा दूंगी।
3: जी जी, और मैं ये जानना चाहता है अगर कोई गलत जानकारी देता है या तो कोई उस पे कोई कार्रवाई होगी, या जैसे कोई नोटिस दिया जाएगा जनगणना के बारे में, मकान के बारे में, उस पे क्या कार्रवाई हो सकती है? और जो 33 सवाल पूछे जाते हैं उसमें कुछ ही मेरे से कुछ 2-3 ही सवाल पूछे गए थे, और मुझसे ये पूछा गया था कि आप टीवी देखते हो, तो मैंने उनसे मेरे को ये पूछ लिया था कि आप रेडियो सुनते हो, तो मैंने कहा रेडियो, मैं पहला ऐसा शख्स कह रहे मिला है इसके बारे में भी।
1: तो इनका सवाल था कि रेडियो सुनते हैं कि नहीं, इस तरह के जो सवाल हैं वो पूछे गए।
2: जी, एक तो पहला मुझे लगता है इनका सवाल था गलत जानकारी के बारे में। तो पहले मैं बता दूं कि गलत जानकारी अगर कोई देता तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है कि उसे कोई पनिशमेंट मिलती है। बट उससे ऊपर जो इम्पोर्टेंट बात है कि सेंसस की इन्फॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, सेंसस एक्ट में ये मेंशन है कि उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन गोपनीय रखी जाएगी। तो जनरली लोग सही जानकारी देते हैं, और सेंसस एक्ट में ये भी प्रोविजन है कि लोग अपने बिलीफ से, अपने नॉलेज से सही जानकारी दे। जो डेटा रिलीज होता है वो एक एग्रीगेट लेवल पे रिलीज होता है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होने की कोई भी संभावना नहीं है। तीसरा जो है, जो हमारे 33 सवाल है वो नोटिफाई हो चुके हैं, गवर्नमेंट के गैजेट में नोटिफाई हो चुके हैं, तो उसमें जो भी सवाल है वो सारे उतने ही एनुमरेटर को पूछने हैं और उनका ही जवाब रिस्पोंडेंट को देना है। ये बिल्कुल सही कहा कि टीवी का सवाल उसमें है, रेडियो का सवाल उसमें है, रेडियो आप किस पे सुनते हैं ये भी उसमें पूछा गया है कि आप मोबाइल पे सुनते हैं या आपके पास रेडियो सेट है या फिर आप कार में सुनते हो। उसी तरह टीवी का भी अलग अलग आप कैसे देखते हो, मतलब दूरदर्शन है आपके पास, फ्री डिश या डीटीएच है या फायर स्टिक है, केबल कनेक्शन है, तो अलग अलग सवाल उसमें है।
1: और अगर किसी भी तरह की हमारे श्रोता दिक्कत उठा रहे हैं तो आप मकान सूचीकरण और मकान गणना अनुसूची के लिए वेबसाइट जो पोर्टल दिया हुआ है sec.census.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं, और आप सारे सवाल जो है वो इसमें आपको शो हो जाएंगे किस तरीके के सवाल जो है जनगणना कर्मी पूछ रहे हैं, ताकि आपको आसानी होगी उस समय

0: सवालों का जवाब देने में। और रोशाली जी, एक और प्रश्न हमारे पास आया है कि क्या जनगणना में सभी के लिए शामिल होना आवश्यक है?
1: बिल्कुल, जैसे जनगणना का पहला ही जो मोटो है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं या किसी को दोबारा गिनती करेंगे नहीं, तो हर एक को इंक्लूड होना है जनगणना में। और जो बार बार मैं जिक्र कर रही हूँ, जनगणना अधिनियम के सेंसस एक्ट 1948, उसके हिसाब से हर एक व्यक्ति को या हर एक परिवार के मुखिया को ये कंपलसरी है कि सही सही जानकारी प्रगणक को दे। और ये प्रगणक की भी जिम्मेदारी है कि जितने सवाल गैजेट में पब्लिश हुए हैं उतने ही सवाल पूछे, उसके बिना और कोई भी सवाल ना पूछे, और जो भी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा है वो उसको गोपनीय रखे।
0: जी अच्छा, अगर कोई व्यक्ति मतलब जॉब की वजह से यहाँ पर रह रहा है, दिल्ली शहर में रह रहा है, लेकिन वो बिलोंग करता है किसी दूसरे राज्य से, तो वो क्या दोनों जगह का जो है उसके लिए भरना जरूरी होगा सेल्फ एनुमरेशन?
1: बिल्कुल नहीं, जैसे मैंने कहा सबको जैसे हम इंक्लूड करते हैं तो डुप्लीकेट भी नहीं करते हैं। तो जहाँ पे जनगणना की ये कंसेप्ट है, जो जहाँ पे नॉर्मली रिसाइड करता है, यानी जहाँ पे मैक्सिमम टाइम रहता है, अगर काम के सिलसिले में वो दिल्ली में रहता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दिल्ली में कलेक्ट होगी। उसके अदर फैमिली मेंबर्स अगर गांव में रहते हैं तो अदर फैमिली मेंबर्स की गिनती गांव में होगी, लेकिन जो जहाँ पे रहता है वहीं पे उसका काउंटिंग होता है।
0: जी, और अब दिल्ली से ब्रह्मदत्त जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी ब्रह्मदत्त जी।
2: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार।
2: हमारे विषय विशेषज्ञ जी को प्रणाम।
1: नमस्ते। प्रणाम।
2: मैम, मेरे दो जिज्ञासाएं हैं। पहली है कि जो हमारे दस्तावेज हैं दूसरे शहर के बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के, और हम दिल्ली में निवास कर रहे हैं, तो क्या हम दिल्ली की जनगणना में सम्मिलित हो सकते हैं? प्रथम प्रश्न। दूसरी है मैडम, ये है कि अगर हम घर पर नहीं मिलते हैं तो क्या जनगणना स्टाफ को हम अपने समय के हिसाब से बुला सकते हैं? भाई छुट्टी वाले दिन आ जाना आप, तो क्या ऐसा संभव है? एक अन्य प्रश्न है, जो लोग जनगणना में शामिल नहीं होना चाहते, क्या उन लोगों के लिए कोई दंडात्मक कार्यवाही का भी प्रावधान है? धन्यवाद मैडम जी।
1: धन्यवाद ब्रह्मदत्त जी। तो तीनों सवाल आपके बड़े ही अच्छे थे। पहला तो ये है कि जनगणना में कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, आप जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो प्रगणक को नोट डाउन करनी है। इसीलिए हालांकि हम लोग सबसे अपील करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन सही है वही इन्फॉर्मेशन दे दे, और आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गोपनीय रहेगी, किसी के साथ वो साझा नहीं की जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताती हूँ कि RTI में भी हम इन्फॉर्मेशन देते नहीं हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कोई कोर्ट में अगर सबूत के तौर पर देने के लिए मांगता है तो उसको भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती एज पर सेंसस एक्ट। दूसरा जो सवाल था आपका, अगर आप घर पर नहीं मिलेंगे तो इसके लिए भी हमारे प्रगणक को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अगर घर लॉक मिलता है तो 2 या 3 बार वहाँ पे जाए, छुट्टी के दिन जाए या सुबह जल्दी जाए या शाम को देर से जाए, ताकि घर पे कोई ना कोई मिलेगा। तीसरा जो आपका सवाल था दंडात्मक कार्रवाई का, तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है सेक्शन 11 में कि अगर कोई गलत जानकारी देता है तो उसको पनिशमेंट दी जा सकती है।
0: तो यानी कि पूरा सहयोग आपको जनगणना कर्मी के साथ करना है और सही सही और सटीक जानकारी उन तक उपलब्ध करवानी है। और अब त्रिपुरा से अविनाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अविनाश जी।
3: जी नमस्कार।
0: नमस्कार
3: जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश जी बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल है कि जब जनगणना टाइम पे सरकारी कर्मचारी हमारे घर पे आते हैं तो हम अपना जानकारी उनको प्रदान करेंगे, तो लेकिन हम उनको पहचानेंगे कैसे कि वो सही व्यक्ति आए हैं मेरे घर पे? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ठगी व्यक्ति भी आ सकते हैं हमारे डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो हम उनको पहचानेंगे कैसे?
1: जी धन्यवाद अविनाश जी। और उसको पहचानेंगे कैसे, तो उनके पास आई कार्ड होगा और अपॉइंटमेंट लेटर होगा, जो कि लोकल चार्ज ऑफिसर, हमारे जो चार्ज ऑफिसर होते हैं वो तहसीलदार या मामलतदार होता है आपके एरिया का, या कोई BDO होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये इनका स्टैम्प और सिग्नेचर के साथ प्रगणक के पास एक आई कार्ड होगा, अपॉइंटमेंट लेटर होगा, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके ऊपर QR कोड होगा, QR कोड स्कैन करके आप देख सकते हैं, उसमें आपको हमारी वेबसाइट से सारी डिटेल मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कोई फ्रॉड हो रहा है तो आप अपने चार्ज ऑफिसर से या एरिया के कोई भी ऑफिसर से उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं।
0: रोशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास आया है कि खाली मकान, बंद मकान या फिर निर्माणाधीन मकान की गिनती किस श्रेणी में होगी और इन्हें कैसे चिन्हित किया जाता है?
1: जी तो हमारे जो मैंने कहा हर एक क्वेश्चन के अलग अलग कोड है, तो जो हमारा जनगणना मकान के कोड है उसमें कुछ कोड है वैकेंट के लिए, कुछ कोड है अंडर

0: कंस्ट्रक्शन के लिए कोड तो नहीं है, बट अगर अंडर कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग है उसका छत डाला हुआ है तो उसको हम मानते हैं, क्योंकि मेन जो हमारा है सेकंड फेज जो फरवरी 2027 में होगा, तो हो सकता है अभी जो घर आपका अंडर कंस्ट्रक्शन हो फरवरी 27 तक वहाँ पे कोई रहने के लिए आ जाए, तो ऐसे इसीलिए उसको हम गिनती अभी कर लेते हैं, उसको नंबर देते हैं और उसको इन्फॉर्मेशन एज अ वैकेंट कर देते हैं और एक रिमार्क डाल देते हैं कि इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, और जो खाली है उसको एक वैकेंट हम मानते ही है। कुछ ऐसे घर भी मिलते हैं कि घर लिया हुआ है लेकिन लॉक है, रहते कहीं और है, तो उसको भी लॉक के कैटेगरी में हम इंक्लूड करते हैं ताकि सेकंड फेज में वो छूटे नहीं। जी,
1: अच्छा, इसमें जनगणना मकान नंबर कौन देता है और दीवार पर लिखने का क्या नियम है?
0: ये प्रगणक देता है और नियम है कि एक प्रगणक को एक जो एरिया देते हैं एनुमरेशन ब्लॉक हम जिसको कहते, छोटा सा एरिया होता है 700 से 800 पॉपुलेशन या 150 घरों का, तो वो पूरे अपने एरिया में सीरियली जनगणना मकान नंबर देता है, एक से लेकर जो भी लास्ट उसके एरिया में होगा तो वो खुद लिखता है। उसके लिए हमने कुछ स्टेशनरी उसको प्रोवाइड की है, मार्कर पेंस वगैरह दिए।
1: ठीक है, और अब शिमला से हमारे साथ राकेश जी जुड़ गए हैं। जी राकेश जी।
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
2: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो घर में रहते उनकी तो होती है, जो किराए के मकान पे रहते हैं क्या वो भी जनगणना में आता है? उनको क्या जनगणना करानी पड़ती है जो किराए पे रहते हैं?
0: जी बिल्कुल, जैसे फिर से मैं कह रही हूँ कि जनगणना में किसी को छोड़ा नहीं जाता, किसी को दोबारा गिना नहीं जाता, तो अगर आप किराए के भी घर में रह रहे हैं तो जनगणना का पहला जो रूल है कि जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसकी गिनती होती है, तो आपका घर खुद का हो, किराए का हो या और किसी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जहाँ पे रह रहे वहीं पे आपकी गिनती होगी। आपका घर किराए का है या खुद का है ये जानने के लिए हमारा क्वेश्चन है कि घर आपका खुद का है या किराए का है। किराए का है तो उसके लिए भी आपका कोड है कि आपका घर किराए का है, लेकिन आपका खुद का घर कहीं और है तो उससे हमारे पास ये एक नंबर्स आ जाएंगे कि कितने मतलब पूरे कंट्री में या पूरे देश में कितने लोगों के पास खुद के घर है या कितने लोग किराए पे रह रहे हैं।
1: और अब रवि जी जुड़ गए हैं हमारे साथ हरिद्वार से। जी रवि जी।
3: हाँ जी नमस्कार मैम जी, मेरा ज्वालिया गढ़ मीरपुर हरिद्वार से हूँ जी।
1: जी नमस्कार।
3: हाँ जी माँ जी, विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार जी।
0: नमस्ते
3: जी मैम, मैं जानना चाहता हूँ जी जो जनगणना है हमें सहयोग करेंगे अपनी जानकारी देंगे वो कितनी गोपनीय रखी जाएगी मैम?
0: जी बिल्कुल, ये पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और कितनी रखी जाएगी इसके लिए मैं एक ही जवाब दे सकती हूँ कि आप भी मांगेंगे बाद में तो आपको भी नहीं दी जाएगी, इतनी गोपनीय रखी जाएगी, क्योंकि पूरी जानकारी एज पर सेंसस एक्ट या सेंसस अधिनियम जो है उसके हिसाब से किसी को दी नहीं जाती, आरटीए में भी दी नहीं जाती, कोर्ट में भी दी नहीं जाती और इंडिविजुअल भी को भी दी नहीं जाती। एक बार फिल होने के बाद वो कॉन्फिडेंशियल रह जाती है और हम सिर्फ एग्रीगेट लेवल पे डेटा रिलीज करते हैं।
1: और अब एक और लिस्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से, महेंद्र जी। जी महेंद्र जी।
4: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
4: मैम, मेरा सवाल ये है कि अगर पुत्र या पुत्र वधू अगर माता पिता के साथ जीवन यापन करते और उनका भोजन एक ही रसोई में तैयार होता है तो वो अलग परिवार माना जाएगा या उसी में जॉइंटर किया जाएगा?
0: जी देखिए, जनगणना के लिए एक ही कंसेप्ट है अगर एक परिवार मानने के लिए कि वो एक ही चूल्हे पे खाना पकाते हैं या नहीं या एक ही किचन में खाना पकाते हैं या नहीं, तो इसमें कोई भी हो अगर वो एक ही किचन से खाना खा रहे हो, खाना पका रहे हो, तो उसको एक ही परिवार माना जाएगा, चाहे वो अनरिलेटेड हो, उनका कोई आपस में रिलेशन भी ना हो। जैसे आजकल हम देखते हैं 3-4 दोस्त मिलके एक छोटा सा फ्लैट लेके रहते हैं और अपना अपना खाना बनाते हैं या मेड को रख के खाना बनाते हैं, तो ऐसे में भी उनको हम एक ही परिवार मानते हैं।
1: अच्छा, इसी से जुड़ा एक और प्रश्न मेरे पास आया था कि अगर मेरी बेटी की शादी हो गई और वो किराए पर रहती है तो क्या वो अपने घर में उसको सदस्य के रूप में शामिल कर सकते हैं?
0: नहीं बिल्कुल नहीं, वो जहाँ पे रहती है वहाँ पे उसका उसको गिना जाएगा।
1: अच्छा, और अब गुरुग्राम से सुभाष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुभाष जी।
5: नमस्ते मैम।
1: जी नमस्कार।
5: आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय आपको नमस्कार।
0: जी नमस्ते।
5: मेरा सवाल ये है मैम कि जो स्वगणना का जो भूमिका है, जैसे व्यक्ति अगर स्वगणना आपने जिक्र किया था अभी, तो उस स्वगणना में उसकी कैसी भूमिका को सत्यापन के रूप में जाना जाएगा, उसको मतलब कौन

0: ऐसा प्रमुख बिंदु रहेगा जो उसके व्यक्ति के प्रमुख कार्यों को बताकर वह सुकृष्ट से स्वीकारा जाए, उसका सत्यापन करने के क्या तरीके हैं, यही मैं पूछना चाहता था। धन्यवाद जी।
1: जी, तो जैसे मैंने कहा, स्वगणना इस बार पहली बार हम लोग ये फैसिलिटी दे रहे हैं। 2011 तक ये फैसिलिटी नहीं थी। ये इस बार इसलिए इंट्रोड्यूस की कि काफ़ी लिटरेसी भी बढ़ी है, प्लस आजकल बड़े बड़े शहरों में ये देखा जाता है कि घर के सारे सदस्य कहीं ना कहीं काम पे जाते हैं, सुबह से लेकर रात तक वो बाहर आते हैं रहते हैं, तो प्रगण को देने के लिए उतना टाइम उनके पास नहीं होता। लेकिन उसकी वो जो इन्फॉर्मेशन भरेगा वो सत्यापित करनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ हमारे कंसेप्ट्स है जैसे पानी कहाँ से मिलता है या घर में टॉयलेट की फैसिलिटी क्या है, इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है कभी कभी रिस्पोंडेंट को खुद पता ना चले, क्योंकि प्रगणक को काफ़ी अच्छे से हम ट्रेन करते हैं। 3-4 दिन का उसका ट्रेनिंग होता है, उसको वीडियोज़ दिए जाते हैं, ट्रेनिंग मटेरियल दिया जाता है। तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन अगर कभी रिस्पोंडेंट या जो खुद भर रहा है स्वगणना की इन्फॉर्मेशन कुछ गलत अगर करे, तो वो प्रगणक एक बार देख के उसको बता के उसको सही करके सत्यापित कर सकता है।
2: अच्छा, एक और प्रश्न हमारे पास आया है रुशाली जी की, स्लम और जे कलस्टर बेघर आबादी की गिनती मकान जनगणना में कैसे सुनिश्चित की जाती है?
1: जी, स्लम के एरिया के लिए तो हम जैसे मैंने कहा, एक प्रगणक के लिए छोटा सा एक एरिया होता है, तो स्लम के हम अलग से एरिया बनाते हैं, उसको अलग से कोडिंग करते हैं ताकि हमारे पास स्लम का डेटा भी आ जाए, क्योंकि उनके घर होते हैं कच्चे हो चाहे पक्के हो, घर होते हैं उसकी गणना की जाती है, घर नंबर भी दिया जाता है
2: जी।
1: जो बेघर होते हैं, बेघरों की गणना पहले फेज में नहीं होती, उनको सेकंड फेज में गिना जाता है, जो कि सेकंड फेज हमारा कंप्लीट होने के बाद लास्ट डेट में जो 28 फरवरी का दिन होता है उसको रात को हम उनकी गणना करते हैं, क्योंकि जनरली ये लोग रात को ही मिलते हैं अपने किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे या किसी ब्रिज के नीचे या इस तरह के जगह पे, तो बेघरों को सिर्फ सेकंड फेज में गिना जाता है
2: जी। तो श्रोताओं, अब आपके सवाल जो हैं वो कुछ कम हो रहे हैं, तो हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं कॉल का। आप परिचर्चा सुन रहे हैं और मकान सूचीकरण आवास गणना पर विषय आज हमने रखा है, क्योंकि जनगणना 2027 जारी है और बहुत तेज़ी से ये काम चल रहा है। जनगणना कर्मी जो है दिन भर लगे हुए हैं, आपके सवाल का जवाब जो है आप दे रहे हैं, और इसी पर आप कॉल कर सकते हैं 0112331 0481 पर, और प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। किसी भी तरह का डाउट अगर आपके मन में है और आप इससे रिलेटेड कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 0112371717 पर। हम कर रहे हैं आपके कॉल का इंतजार। रुशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास है कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधता वाले राज्यों में प्रश्नावली को समझाने की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है?
1: सबसे बड़ी चुनौती तो है उनको अपनी भाषा में समझाना, उनको अपनी भाषा में सारा मटेरियल उपलब्ध कराना, और प्रश्न भी उनके भाषा में होने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा एक ट्रेडिशन है जनगणना का कि जनगणना के सारे मटेरियल 16 भाषाओं में उपलब्ध है, जो सारे हमारे मोबाइल ऐप है या पोर्टल है या स्वगणना का वेब पोर्टल है, ये भी 16 भाषा में उपलब्ध है। जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स है ये तो 19 भाषा में उपलब्ध है, क्योंकि हर एक स्टेट की या हर एक रीजन की अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो उन सारे लैंग्वेज में ये सारा अवेलेबल है
2: जी। अच्छा, 2011 में जो है अगर बात की जाए तो डेटा की एंट्रिंग, स्कैनिंग और वेरिफिकेशन में लगभग बताया जा रहा है कि 2 साल लग गए थे, लेकिन 2026 में रियल टाइम डेटा अपलोड से रिजल्ट कितने जल्दी आने की उम्मीद है?
1: बहुत अच्छा सवाल है। जैसे 2011 में पहला हमारा पब्लिकेशन आने में 2 साल लगे
2: जी,
1: लेकिन आप देख सकते बहुत सारे क्वेश्चन पे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं जो सेकंड फेज में आती है, तो एक एक सीरीज या एक एक पैरामीटर पे डेटा रिलीज करने में 6 से 8 साल लगे थे। जो हमारा लास्ट टेबल रिलीज हुआ था माइग्रेशन पे, वो हमारा 2019 में रिलीज हुआ था, क्योंकि हमारे जो पेपर पे होता था तो देश के हर कोने से पेपर कलेक्ट करना, मतलब इन्फॉर्मेशन भरने के बाद वो कलेक्ट करना, वो स्कैन करना, इसी में हमारे पूरे 2 साल निकल जाते थे। अब हालांकि हमारा डिजिटल हो रहा है, रियल टाइम डेटा आ रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट पहला जो हमारा पब्लिकेशन है वो 8 से 9 महीने में रिलीज़ हो जाए, और बाकी सारी डेटा 2 से 3 साल के अंदर अंदर डेटा पब्लिश हो जाए
2: जी। बिल्कुल, क्योंकि जनगणना केवल जनसंख्या की गिनती नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है, तो मुझे लगता है कि इसमें अगर

0: मिलकर भागीदार बनेंगे तो देश प्रगति की राह पर बढ़ेगा। और अब दिल्ली से विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विकास जी।
1: हाँ जी, हमारे दो मकान है, एक तो गांव में है राजस्थान में और एक दिल्ली में है। तो हमारी जनगणना कहाँ होगी?
2: जहाँ पे आप रहते हैं हमेशा के लिए या ज्यादा वक्त जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आपकी जनगणना होगी। और यहाँ पे बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि अगर आपकी जनगणना यहाँ पे होगी तो गांव के मकान का क्या होगा। जनगणना का उससे कोई भी संबंध नहीं है, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आपकी गणना होगी।
0: हाँ अनुशा, ये प्रश्न वैसे देखा जाए तो बहुत लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है रोजगार के लिए बाहर आते हैं और गांव का जो घर है उनका या तो खाली पड़ा होता है, लेकिन वो होता है, वो कहीं ना कहीं जाकर जो है उनसे जुड़ा हुआ होता है। तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पर हम लोग वो भर देते हैं, जैसे दिल्ली में अगर रह रहे हैं तो दिल्ली का अगर भर जाता है तो क्या गाँव का भरना जरूरी होगा, और अगर छूट जाता है तो क्या होगा?
2: बिल्कुल बिल्कुल, तो जनरली जनगणना की यही कंसेप्ट है कि जो आदमी जहाँ पे रहता है, क्योंकि देखिए अगर वो शहर में रहता है तो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक मतलब शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मजबूत बनाना है, इसलिए जनगणना का जो कंसेप्ट है जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसकी गिनती होगी। हालांकि मैंने फिर एक बार कहती हूँ कि इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपका गांव में भी घर है, गांव में दो घर है, यहाँ पे एक घर है, तो इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अब जहाँ पे रहते वहाँ पे आपकी गिनती होगी।
0: जी, और अब एक और प्रश्न हमारे साथ जुड़ गए हैं, एमपी से राजेश नीमा जी ने प्रश्न ले रहे हैं उनका। जी राजेश जी।
3: जी मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नीमा बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल ये है कि यदि एक घर में एक मकान आधा मकान कच्चा है और एक कमरा पक्का है तो वो जनगणना की कौन सी श्रेणी में आएगा?
2: जी, तो जनगणना में अगर सारे सवालों के बारे में एक जिस्ट में बताऊं तो प्रीडोमिनेंटली यानी मुख्यतः जो यूज होता है उसका इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर सोर्स की अगर मैं बात करूं कि आपके पास कुआं भी है और नल से भी पानी आ रहा है, लेकिन आप नल का पानी ज़्यादा यूज करते हैं तो नल आपको लिखना है। उसी तरह आपका अगर आधा मकान कच्चा है आधा पक्का है, या ज़्यादा मकान पक्का है और थोड़ा सा मकान कच्चा है तो पक्का लिखना है। तो ये डिपेंड है आपका कितना पोर्शन पक्का है कितना पोर्शन कच्चा है।
0: और अब एक और लिस्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से, पप्पू सिंह जी। जी पप्पू जी।
4: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार
4: सर। जैसे मकान के अलावा जैसे हमारा प्लॉट है और उसमें हमारे पशु बनते हैं और ईंधन ठंडा रखे रहता है और वहाँ पे कुछ भी बना नहीं है, वैसे ही है, उसमें पेड़ वगैरह खड़े हैं, तो उसकी गणना भी होगी क्या?
2: जी नहीं, जैसे हमारे इस फेज का नाम है मकान सूचीकरण, तो वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए, खाली प्लॉट को गिनते नहीं है। लेकिन वहाँ पे अगर कोई कच्चा सा शेड भी है जिसमें पशु रखे हुए हैं तो उसको एक नंबर दिया जाएगा और उसको नॉन रेसिडेंशियल करके उसको गिना जाएगा।
0: तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न था एक तरीके से, क्योंकि अक्सर लोग गांव में जो होता है पशु वगैरह बांध देते हैं और पूरा एक शेड प्रॉपर ताकि बारिश से उनको बचाया जा सके वो रखते हैं। अच्छा रुशाली जी, एक और ये सवाल है कि 2011 में बैंकिंग सेवा का उपयोग नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार जो है जनधन डीबीटी के बाद इसे जोड़ने का क्या मकसद है?
2: मकसद यही है क्योंकि एक स्कीम शुरू की गवर्नमेंट ने जनधन योजना, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कितने लोगों के पास या कितने परिवारों के पास बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है, ये देखने के लिए ये प्रश्न नए से जोड़ा गया है।
0: जी, और अंत में चलते चलते हम रुशाली जी आपसे चाहेंगे कि जनता से क्या अपील हम करना चाहेंगे ताकि वो इसमें सहयोग दे सकें पूरी तरीके से।
2: जी, जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि पूरा कोऑपरेट करें इस जनगणना के लिए, क्योंकि जनगणना से जो भी आंकड़े आते हैं, फिर से एक बार दोहराती हूँ मैं, पूरी तरह से गोपनीय रखे जाते हैं। इससे कोई भी आपके ऊपर ना कोई टैक्स लगेगा, लेकिन जो भी आंकड़े आप सही आंकड़े देंगे उससे सरकार की नीतियाँ बनेगी, पॉलिसीज बनेगी, जैसे किस गांव में स्कूल बनाने हैं या किस गांव में पानी की सुविधा देनी है, अच्छे पानी देनी है या टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो इस तरह की जो भी वेलफेयर स्कीम्स सरकार बनाती है उसके लिए सही सही जानकारी देना बिल्कुल ज़रूरी है। तो यही एक अपील है कि सही जानकारी दे और कोऑपरेट करे, और जो प्रगणक है हमारे वो अपना काम संभाल के पूरा एक्स्ट्रा काम ये कर रहे हैं, तो उनको अच्छे से कोऑपरेट तो करे ही, प्लस अच्छे से उनके साथ बिहेव करे, अच्छे से बात करे।

0: जी बिल्कुल वैशाली जी, क्योंकि 10 साल में एक बार ये मौका आता है कि जब आपके घर की गिनती, आपके सपनों की गिनती जो है वो की जाती है। जनगणना कोई डर की बात नहीं है, ये आपके हक की बात है और आपका मकान न गिना जाएगा तभी मकान तक सुविधा पहुंचेगी। भारत की पहली डिजिटल जनगणना में भागीदार बनिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली जी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आज आप हमारे समक्ष मौजूद रहीं और हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का आपने जवाब दिया।
1: धन्यवाद,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं मुझे दीजिए इजाजत कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का प्रसारण अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के ठीक 10 बज रहे हैं श्रोता। प्रस्तुत है कार्यक्रम

शब्द रचना की थी मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत तैयार किया राहुल देव बर्मन ने, आवाज किशोर कुमार की थी और फिल्म थी कुदरत।

संगीतकार थे रवि, गीतकार साहिर लुधियानवी, आवाज आशा भोसले की थी और फिल्म थी वक्त। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं श्रोताओं और सुनते हैं ये गीत।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं, राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ, धुन बनाई थी रवि ने और फिल्म थी नई रोशनी।

रूप तेरा मस्ताना, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं। स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार के थे, शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आकाशवाणी जमशेदपुर से श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

साधना सरगम और मनहर उदास की आवाजों में घुंघरू फिल्म का ये गीत था श्रोताओं। गीत लिखा था अनजान ने और इसकी धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अनुमति दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, आपको बता दें कल प्रातः 6:10 पर खेती की बातें इस कार्यक्रम में सुनिएगा। वार्ता विषय होगा गर्मी में फूल गोभी की खेती। बताएंगे राजेश कुमार।

सुबह 7:50 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी। भेंट वार्ता का विषय होगा सिकल सेल एनीमिया। भेंट वार्ताकार होंगी डॉक्टर स्तुति केडिया।

ये आकाशवाणी जमशेदपुर है FM 102.4 MHz पर। श्रोताओं, रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज के इस कार्यक्रम में सुनिए वायलिन वादन। राग है श्याम कल्याण। कलाकार हैं पंडित VG जोग। तो आइए सुनते हैं राग श्याम कल्याण में पंडित VG जोग का वायलिन वादन।

0: शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राग श्याम कल्याण में पंडित वी जी जोग का वायलिन वादन। इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी जमशेदपुर है। अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा। समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
2: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
1: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल

अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।